मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक

0: कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

बना। तब हमारी दृष्टि एकमात्र अपने प्रभु की ओर लग जाती है, उन्हीं को पुकारने लगती है, उन्हीं की ओर निहारती है।

जब मन दुखों से घबरा जाता है तो व्यक्ति केवल एक ओर ही देखता है और वो होते हैं प्रभु। क्योंकि जब हम विपत्ति में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई आघात लगता है, तो उस समय हमारे ये संबंधी जो लौकिक जगत के हैं वो काम नहीं आते, ना वो हमें शांति दे पाते हैं, ना तो सांत्वना।

एक बार जब भक्त को अपने ईश्वर का पता मिल जाता है, अर्थात जब संतों की कृपा उस पर हो जाती है, जब संत उसके जीवन में आ जाते हैं, तो समझिए वो सोया हुआ मनुष्य, वो सोया हुआ भक्त जग जाता है। और जब एक बार जग गया तो फिर सोने की आवश्यकता ही क्या है। मतलब ये कि जब एक बार आपके जीवन में संत भगवंत इनका प्रवेश हो जाता है ईश्वर की अहेतु की कृपा से, फिर क्या, फिर तो हमें वो अमूल्य मार्ग पता चल जाता है जिस पर चलने के बाद जीव को फिर इस लौकिक जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

जब कृष्ण की मुरली बजती है तब जमुना का पानी अपनी उत्ताल तरंगों से स्पर्श करने को आतुर हो जाता है। जब उनकी मुरली बजती है तो जगत का हर चर अचर जीव अपना सब कुछ भूल करके उसी में लग जाता है, उसमें रम जाता है।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजा राममोहन राय के विचार।
1: राजा राममोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं। उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफ़ेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने 2 तरह के अभियान चलाए। एक

0: अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा राम मोहन राय के विचार। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं मिट्टी में जिप्सम व पायराइट का प्रयोग विषय पर प्रदीप कुमार सिंह से की गई राम प्रकाश सिंह की बातचीत।
1: भैया, खेती किसानी में किसान बदे माटी का बहुत बड़ा महत्व होता है, और माटी अगर उपजाऊ है, अच्छी अवस्था में हो, तो किसान के फसल के उत्पादन में एकर आगे बहुत बड़ा फायदा मिलत है। तो भैया, ये देखे में आवत है कि कब कब माटी में कौनो तत्व का अधिकता हो जाते या कमी हो जाते, तो माटी अपन स्वभाव के बदले लगत है, या ओमे कहा जाता है कि भाई जैसे कि कुछ तत्व कम हो जाते हैं तो माटी ऊसर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो भैया, ये सब समस्या जो भी माटी से जुड़ा है, तो एक सुधारे बदे कभी कभी किसान भाई जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करत हुए। तो भैया, माटी में जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किसान भाई करत हुए, तो इससे जुड़ल जितना भी बात हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करे बदे अपने स्टूडियो में हम आमंत्रित किए हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी के। आप राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र काला कांकर प्रतापगढ़ से हुए। सिंह साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत हो। तो हम आपसे जानना चाहब कि ये जौन जिप्सम और पायराइट किसान भाई प्रयोग करत हुए, तो एकरे का वजह होते माटी में का ऐसा बदलाव हो जाता है कि एकर जरूरत पड़त है?
2: देखें कि जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है उन्हें क्षारीय मिट्टी कहते हैं
1: जी,
2: और उसमें सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती। लेकिन अगर जिनका पीएच मान 9.5 से अधिक होता है उसमें किसी भी दशा में कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, उसमें कोई भी फसल नहीं ली जाती। तो पीएच मान को कम करने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा जो है इसका पीएच मान कम किया, इसमें कुछ यांत्रिक एवं कुछ रासायनिक विधियां हैं जिससे पीएच मान कम किया जाता है।
1: अच्छा, तो भैया ये बताएं कि जैसे क्षारीय मिट्टी के सुधारे बदे पहले रासायनिक विधि का हम बात करब आपसे, कि रासायनिक विधि का होता
2: है? जी, देखें इस विधि से सुधार करने के लिए किसान भाई को जिप्सम या पायराइट की आवश्यकता पड़ती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा भी क्षारी मिट्टी का सुधार किया जा सकता है।
1: अच्छा।
2: लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अधिक कीमती होता है जिससे किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आमतौर पे जिप्सम एवं पायराइट का ही प्रयोग से जो है किसान भाई क्षारी मिट्टी का सुधार करते हैं।
1: जी,
2: लेकिन जिप्सम का जो मिट्टी में कार्य है वो जा करके सुधार करते समय क्या कार्य करता है मिट्टी में, तो जिप्सम रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है।
1: अच्छा।
2: जिसमें 23.2% कैल्शियम, 18.2% सल्फर तथा 20.9% जो है पानी पाया जाता है।
1: अच्छा।
2: जिप्सम को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तब मृदा में उपस्थित जो अघुलनशील लवण होते हैं

0: वो जिप्सम की रासायनिक क्रिया करके घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं,
1: अच्छा
0: और जिसको जल के द्वारा अंदर लीच करा दिया जाता है, या जो है पानी उसको बाहर निकाल करके, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे वह घुलनशील अम्ल जो रहे वो बाहर निकल
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी
1: तो हम कहा कि जिप्सम का जब प्रयोग करे के बात आवत है तो
0: जी
1: माटी में जिप्सम का मात्रा और उसका तरीका
0: जी
1: यानी
0: जी
1: विधि
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: महत्व का होता है। तो आप एक बतावा सिंह साहब कि जिप्सम कितना मात्रा में कौन हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें माटी के सुधारे
0: जी
1: बदले।
0: जी देखें, यह बहुत ही आवश्यक है कि किसान पहले यह जान ले कि उसको जिप्सम कितनी आवश्यकता पड़ेगी खेत सुधार के लिए। तो इसके लिए उसको अपनी मिट्टी के पीएच की जांच करानी आवश्यक है।
1: अच्छा
0: जी, अगर वो किसी कारणवश या असुविधा के कारण जो है पीएच की जांच नहीं करा पाता है, तो अगर पीएच की जांच होता है तो उसके अनुसार जो है निर्धारित जो मात्रा रहती है उस अनुसार जो है वो
1: बिल्कुल
0: जिप्सम का
1: बिल्कुल
0: प्रयोग करें।
1: जी
0: अगर
1: जी
0: जांच नहीं करा पाता है तो ऐसी दशा में सामान्यतः जिप्सम को 5 से 6 टन प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाया जाता है।
1: एक एकड़ बदे 5-6 टन।
0: पाँच से छः टन सामान्यतः,
1: अच्छा
0: अगर जांच करा लिया है किसान तो जो रिकमेंडेड होगा उसको किसान भाई जो है अपना करें, जो मिट्टी की जांच के बाद। तो उसको प्रयोग करने की विधि देखें, जिस खेत में जिप्सम का प्रयोग करना है किसान भाई पहले उसके जो है 1 एकड़ खेत को 8 बराबर भागों में बांट लें।
1: अच्छा
0: जी, 7 से 8 बराबर भागों में बांट लें, बहुत बड़ा टुकड़ा न रहे। और मार्च के महीने में इन खेतों के चारों तरफ कम से कम 30 सेंटीमीटर ऊंची मेड़बंदी कर दें,
1: अच्छा
0: और प्रत्येक टुकड़े जो 8 टुकड़े हैं उनकी जुताई करके खेत को पूरी तरह समतल कर दें। और खेत को समतल करने के बाद जो है एक जल निकास नाली किनारे से जो है निकाल दें, जिससे पानी जो लीच करके बाहर निकाला जाएगा वो पानी निकल जाए। और नंबर पांचवा, कि मई के महीने में खेत की जुताई करके जिप्सम की संस्तुत मात्रा खेत में बराबर डालकर पुनः खेत की जुताई करके उसको अच्छे से मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी, फिर इसके बाद पुनः किसान भाई जो है खेत में 15 से 20 सेंटीमीटर तक पानी भर दें, उसको खड़ा रखें पानी जो है, और पानी जो है खेत में 6 से 7 दिन तक भरा रहने दें।
1: अच्छा
0: 6 से 7 दिन तक भरा रहे और उसके बाद इस पानी को जल निकास नाली द्वारा बाहर निकाल कर पुनः पानी भर दें। और इस प्रक्रिया को किसान भाई कम से कम 3 से 4 बार करें कि पानी भरें और
1: और
0: छः
1: निकाल
0: सात
1: दें।
0: जी 6-7 दिन तक पानी भरा रहे, उसके बाद वो जो नमक है वो ऊपर आ जाएगा और वो उसको बाहर निकाल दें।
1: जी
0: फिर इसके बाद किसान भाई जो है उसमें खेत में ढैंचा की बुआई किसान को कर देनी चाहिए। और ढैंचा की बुआई करने के बाद 35 से 40 दिन बाद जो है जब ढैंचा की फसल तैयार हो जाए तो उसको उसी में पलट करके फिर जुताई कर दें,
1: अच्छा
0: लेकिन खेत को फिर खाली न रखें। उसके लिए किसान भाई जो ऊसर की जो है रिकमेंडेड जो प्रजातियां हैं, जो ऊसर अवरोधी प्रजातियां धान की हैं,
1: जी।
0: उनके उनकी 35 से 40 दिन की पौध जो है तैयार करा करके उसमें जो है
1: लगाओ।
0: रोपाई कर देना चाहिए किसान भाइयों को। जी, ये प्रक्रिया किसान भाइयों को करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: जी
1: अभी या इधर जिप्सम का बात रहा कि जिप्सम का कैसे किसान भाई प्रयोग करें अपने खेत के सुधारे बदे।
0: जी
1: अब
0: जी
1: साथ ही साथ हम पाइराइट का भी अब आपसे पूछब कि पाइराइट का कितना मात्रा में किसान भाई कैसे प्रयोग
0: जी
1: करें।
0: जी देखें, पायराइड तो आयरन एवं सल्फर युक्त तो खनिज है। इसमें अधिक धात्विक खनिज के सल्फाइड होते हैं,
1: अच्छा
0: और यह एक ज्वलनशील पदार्थ भी है जो पानी एवं हवा से क्रिया करके तुरंत ही सल्फ्यूरिक अम्ल एवं आयरन सल्फेट बनाता है, जो ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रभावी होता है। प्रयोग करने के लिए किसान भाई पायराइड का प्रयोग करने से पहले किसान को फिर वही प्रक्रिया की मृदा की जो है पीएच की जांच
1: जांच
0: करानी है,
1: करावा।
0: जिससे कि वो क्या किस मात्रा में पायराइड का प्रयोग खेत में करें। अगर नहीं जांच हो पाती है तो सामान्यतः किसान भाई जो पीएच 9 वाली मृदाएं हैं उसको उसमें 2 टन प्रति एकड़ जो है पायराइड की आवश्यकता पड़ती है,
1: 2 टन।
0: 2 टन प्रति एकड़ सामान्यतः।
1: अच्छा
0: और पायराइड को मृदा में मिलाने से पहले किसान भाई पुनः खेत की जुताई करें जो है, और खेत की जुताई करने के बाद उसमें पायराइड को उचित मात्रा में बिखेर करके
1: अच्छा
0: उसको पूरी तरह जो है उसको मिला दें मिट्टी में जो है, और मिलाने के बाद खेत सूखने के बाद जो है खेत में पानी लगा दें। और खेत में पानी लगाने के बाद या किसान भाई एक फिर सूख जाए खेत तो फिर पानी लगावें, ये 1 सप्ताह तक प्रक्रिया किसान भाई करते रहें।
1: अच्छा
0: जी, और उसके बाद जो है 7 से 10 दिन में मिट्टी में पायराइट अपनी क्रिया को कर देता है, और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया जैसे कि खेत को खाली न रखें, ढैंचा की बुआई करें, और ढैंचा की बुआई के बाद जब ढैंचा तैयार हो जाए तो उसको उसी में पलट करके जो है मिला दें, और मिलाने के बाद जो है

0: की ऊसर अवरोधी प्रजाति को किसान भाई उस खेत में लगावें, और अगर धान कट जाए तो उस पुआल को भी किसान भाई उसी खेत में फैला दें, क्योंकि किसी भी दशा में खेत को खाली न रखें। जो
1: अच्छा
0: खेत खाली रहने पे नमक जो है आपका ऊपर आ जाएगा, इस नाते उसको लीच करावे, जो है हमेशा उसको ढके रखें जो है। जी
1: बहुत अच्छी। आप जौन है माटी के सुधारे बदे जिप्सम और पायराइट के प्रयोग के बारे में अच्छी अच्छी बात बतौलें। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में अलें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मिट्टी में जिप्सम व पायराइट का प्रयोग विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे प्रदीप कुमार सिंह से राम प्रकाश सिंह की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता, सियाटिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथिक द्वारा उपचार।
1: पैरों में दर्द एक आम समस्या है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति कभी न कभी महसूस करते हैं। पैरों में दर्द के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव या जिसे हम मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं, नसों की क्षति जो डायबिटीज़ के रोगियों में सामान्यतः देखी जाती है और जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन डी या अन्य पोषक तत्व तो जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी, खराब रक्त संचार, गठिया DVT जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसमें कि रक्त वाहिनियों में थ्रोम्बस या रक्त के थक्के जमने लगते हैं। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनसे पैरों में दर्द हो सकता है। शियाटिका बीमारी में भी दर्द पीठ से निचले हिस्से से शुरू होकर के नितंबों और पैरों तक महसूस होता है। इसमें दर्द के साथ सुन्नपन, झुंझुनी या कमजोरी महसूस होती है। दर्द यदि लगातार बना रहे या बार बार होने लगे तो चिकित्सक से सलाह लेना और आवश्यक परीक्षण करा लेना जरूरी है। होम्योपैथिक में शियाटिका रोग से संबंधित विशेष रोग निवारक दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पैरों में होने वाले अन्य प्रकार के दर्द का भी लक्षण के आधार पर उचित और रोग की जड़ से निदान संभव है। कुछ प्रभावी और सामान्य होम्योपैथिक औषधियाँ जो रोग के लक्षणों के आधार पर दिए जाने पर बहुत लाभदायक होती है, उनमें से कुछ का विवरण मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। आर्निका मोंटाना, ये चोट लगने पर या अत्यधिक परिश्रम से होने वाले दर्द जिसमें रोगी दर्द वाले स्थान को छूने से परहेज करे, ऐसा दर्द हो जैसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया हो या त्वचा पर नीला रंग या ब्रूजिंग हो, वहाँ पर प्रभावी होती है। रूटा ग्रेव्यूलेंस, ये मूंछ और मांसपेशियों खास तौर पर जोड़ों में होने वाले दर्द, लिगामेंट इंजरीज की अच्छी दवा है। ब्रायनिया, जिन व्यक्तियों में दर्द के साथ जोड़ों में सूजन या लाली हो, मरीज के जरा से हिलने डुलने में दर्द बढ़ने लगे, उसके लिए इस दवा का इस्तेमाल लाभदायक है। एक अन्य दवा है कोलोसिंथ, जिसमें पैरों में खासतौर पर शियाटिका का दर्द जो मरोड़ के साथ हो, दर्द में दबाव से राहत हो और मरीज दर्द वाली तरफ लेटना पसंद करे जिससे एक दबाव बने और उसे राहत हो, मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो और जो दबाने पर राहत दे। एक और दवा है निफेलियम, जो झुंझुनी के साथ होने वाले शियाटिका के तेज दर्द, पैर की पिंडलियों में होने वाली मरोड़, सुन्नपन, झुंझुनी, इन सब तकलीफों के लिए एक उपयोगी दवा है। रेस्टॉक्स, जो बहुत कॉमन दवा है, पैर की मांसपेशियों की जकड़न और जोड़ों में होने वाले दर्द जिनमें चलने फिरने के बाद रोगी राहत महसूस करे और नम ठंडे मौसम में दर्द का बढ़ना मिलता हो, उसमें रेस्टॉक्स के इस्तेमाल से राहत मिल सकती है।

0: हाइपेरिकम एक नर्व रिलेटेड पेन की अच्छी दवा है जिसमें नसों में होने वाले दर्द में रोगी को चुभने वाले दर्द के साथ जलन और सुन्नपन भी महसूस होता है। शाइटिका में इस दवा के लक्षण मिलने पर यह दवा बहुत प्रभावी होती है।
1: सियाटिका एवं पैर दर्द का होम्योपैथिक द्वारा उपचार विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की ये वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है और रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित विद्याधर मिश्र का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन सुनिएगा, और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी आस्था सिंह।

सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का आप सुनेंगे पहला भाग। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर घनश्याम और साथी, सविता सागर और साथी और राधेश्याम निषाद और साथियों के गाये लोकगीत सुनवाए जाएंगे। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00। दिन में 12:30 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। शाम 5:15 पर युवाणी में युवा श्रोता जीवेश नंदन की वार्ता सुनेंगे समाज सेवा का बदलता स्वरूप। और शाम 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे किस्सा गोई में

कहानीकार कृष्णचंद्र की कहानी ताई इसरी का दूसरा भाग। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पौढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

अभी आप मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको जॉनी मेरा नाम फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है इंदिवर की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें लता मंगेशकर और

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन अब समाप्त हुआ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: से प्रादेशिक समाचार, नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होगा 10वां दीपोत्सव, जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयार की कार्ययोजना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सोमवार की देर रात तमकुही राज में नारायणी नदी के एपी तटबंध का कुछ हिस्सा टूटने के बाद जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिलाया कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2-2 टीमें तथा पीएसी की 4 यूनिट तैनात की गई है। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
2: सरकार ने यह भी तय किया है कि हर पीड़ित परिवार को सहायता भी देंगे। अगर कहीं जनहानि हुई है आपदा की श्रेणी में, उसको लेकर के उस परिवार को भी तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, अगर किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया है, तो ये प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए मैंने आदेश दिया कि तत्काल उस परिवार को एक नया आवास उपलब्ध करवाएं।
1: मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ से प्रभावित सड़कों और तटबंध की मरम्मत कराने को भी कहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज 3रा दिन है। वह आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के प्रतिष्ठित साधु संत और धर्माचार्य हिस्सा ले रहे हैं। श्री योगी ने कल गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ के महान संतों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की योजनाएं और कार्य भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों और विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 तथा खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर जबकि विधान परिषद के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

0: से प्रमोद कुमार मिश्र को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं प्रयागराज झांसी से अशोक कुमार राठौर, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी और गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क और औद्योगिक विकास में हुए बदलावों ने उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों, कारीगरों, प्रदर्शकों और देश विदेश के खरीदारों को एक मंच पर लाने का काम किया है।
1: किसी मेले में 10 लाख 15 लाख लोग आते हो 5 दिन में, ये अभूतपूर्व सफलता बताएगा। लगभग 20,000 करोड़ का B2B हुआ और आज एक्सपोर्ट 2 लाख से ऊपर करोड़ का चला गया उत्तर प्रदेश का, ये भी इस ट्रेड की सफलता है।
0: रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। खुर्जा मेरठ सिटी मेमू ट्रेन खुर्जा से दोपहर 1:15 पर चलेगी और शाम 5:20 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। वहीं सहारनपुर मेरठ सिटी मेमू ट्रेन सहारनपुर से सुबह 5:50 पर चलेगी और 8:10 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
3: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
2: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 3 दिवसीय 10वें दीपोत्सव की शुरुआत 6 नवम्बर को होगी। वहां के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य दीपोत्सव 7 नवंबर को मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दीपोत्सव के संबंध में सभी विभागों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की गई है।
4: दीपोत्सव इस बार 7 नवंबर को होना है, दिवाली के एक दिन पहले हर साल होता है। बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस पर्यटन महोदय द्वारा इसका असली भ्रमण और समीक्षा की गई थी, मेरे द्वारा और कमिश्नर सर के द्वारा भी इसका एक बार रिव्यू किया गया है और लगातार हमारी जो टीम है वो असली भ्रमण कर रही है, सभी डिपार्टमेंट से संवाद कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल का प्रोग्राम है जिसमें जनपद के सभी विभागों के साथ साथ शासन और डायरेक्टरेट लेवल के सभी विभाग इसमें लगते हैं। तमाम सारे टेंडर की प्रक्रियाएं होती है जिसके माध्यम से यहाँ पर साथ साथ जाके कार्य होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, वो सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और वो फाइनल रूप देने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से दीपोत्सव इस वर्ष

0: बनाया जाए।
1: झांसी के मऊ रानी क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा में सुखनई नदी में डूबने से कल एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को जल तर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होगा 10वां दीपोत्सव, जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयार की कार्ययोजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। रचना विलंबित और द्रुत ताल में निबद्ध है। विलंबित रचना के बोल हैं ए जोगी आया और द्रुत के बोल हैं दधि बेचन को जात। तबले पर आपके साथ संगत की पूरन कुमार मिश्र ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान ने। आइए सुने पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की पूरन कुमार मिश्र ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। समाचार प्रभात के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर

0: चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गाँव तक पहुँचाया गया। वही ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों

0: के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध।

0: आएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुगरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का

0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरक रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीक की है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाजों की तैयारी का इको निजाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निजाम की अहमियत का एतराफ करते हुए भारत के बहरी निगरानी निजाम में खातिर का अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमोदरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियां तजजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बहरिया की जदीदकारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नजरिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगा। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज्यादा से ज्यादा इंदिराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदिराज के लिए खसूसी कैंपों का अहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के बारे में मालूमात हासिल करने और इंतखाबी फॉर्म हासिल करने या दाखिल करने के लिए इन कैंपों में पहुंचे। कैंप आज भी जारी रहेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इन कैंपों में मौजूद BLOs तलबा के फॉर्म भरे हुए फॉर्म हासिल करने और SIR से मुतालिक सवालात के हल के लिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कैंपों का एक और मरहला अगले महीने की 7 और 8 तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तमाम जुमरों के वोटर्स के इंदराज के लिए अगले माह की 4 और 11 तारीख को तमाम पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। कमीशन ने कहा कि रवां साल 1 अक्टूबर को या इससे पहले 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए दरख्वास्त दहिंदगान को वोटर फहरिस्त में अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में दरख्वास्त देनी चाहिए। इसी ने वाजे किया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा समातें की जा चुकी हैं। चुनाव कमीशन ने यह भी कहा है कि जिन वोटर्स को अनमैप्ड या मंतकी एतबार से फर्क के लिए नोटिस मौसूल हुए हैं उनकी मदद BLOs करेंगे जो दस्तावेजात जमा करने के लिए उनके घरों का दौरा करेंगे। इसी ने दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी के शेड्यूल में तरमीम की है। दावे और एतराजात दायर करने की मुद्दत अगले माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी जबकि हतमी वोटर फहरिस्त रवां साल 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کل شام

सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक चोटी का दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त कमांडर फौजी मूसा के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज की चिनार कौर ने कहा कि यह कार्रवाई बडगाम में यूसमर्ग के नजदीक कोराग में फौज पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। मूसा जम्मू और कश्मीर में कई हमलों में मुलविस होने की वजह से मतलूब था। 5 सितंबर को यूसमर्ग में हुई मुठभेड़ में वो बच निकला था, लेकिन इसका करीबी माविन यासिर हलाक हो गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उगाए गए लिलियम के फूलों की पहली कमर्शियल कार्गो परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सक्सेना ने बताया कि कमर्शियल कार्गो लद्दाख की जरई तारीख में नए बाब का आगाज है। जनाब सक्सेना ने कहा कि बागबानी फूलों के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और लद्दाख के मवाफिक आबो हवा और दर्जा हरारत के सबब आला मेयार के साथ हौसला अफजा कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जहां वो जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर दाखला इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये यात्राएं, जिनका आगाज बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने इस महीने की 18 तारीख को पठानकोट से किया था, 13 दिनों में सभी 117 असेंबली हलकों में 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी हैं। इन यात्राओं का मकसद पंजाब में मुनशियात के खिलाफ लड़ाई को अवामी तहरीक बनाना है। ये यात्राएं फिलहाल पंजाब को दरपेश 3 अहम मसाइल, मुनशियात की बढ़ती लत, अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी पर मरकूज हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्ज हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के तई अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक आला सतही मुकम्मल इजलास के दौरान भारत का मौकिफ पेश किया। जनाब जॉर्ज ने कल नस्ल परस्ती, नस्ली इम्तियाज, गैर मुल्कियों से नफरत और अदम रवादारी से निमटने के मामले में भारत के गैर मुतजलजल अज़्म को दोहराया। जनाब जॉर्ज ने डर्बन एलामिए और प्रोग्राम ऑफ एक्शन DDPA को अपनाए जाने की 25वीं सालगिरह के मौके पर अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली की आला सतही मीटिंग के दौरान ये बात कही। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे और अमरीकी सनती रहनुमाओं, सरमायाकारों, स्टार्टअप्स और भारतीय बिरादरी के अफराद से तबादले ख्याल करेंगे। जनाब गोयल अमरीकी तजारती नुमाइंदों USTR की दावत पर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग G20 रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत को यकजा करेगी, जहां आलमी तिजारत और कसीर जहती तिजारती निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉमर्स और सनअतों की वजारत के मुताबिक भारत सभी G20 अराकीन के साथ तामीरी तौर पर मशगूल रहेगा और जवाबित पर मबनी खुले, शमूलियाती, शफाफ, मसावी और तफरीक से पाक कसीर जहती तिजारती निज़ाम की तश्कील की जानिब काम करेगा। इस दौरान तरक्की पजीर ममालिक के लिए पॉलिसी साजी में गुंजाइश पैदा करने पर आलमी तिजारती तंजीम WTO के साथ बातचीत मरकूज रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल कतर के दोहा में AIIB सालाना मीटिंग के तनाजुर में अपने कतरी हम मनसब अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पूरे कतर में भारत की UPI अदायगी निज़ाम को वसत देने और दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान कतर की जानिब से भारत में $10 अरब की सरमायाकारी के वादे, सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे के कौमी फंड और दो तरफा सरमायाकारी माहदे को हतमी शक्ल देने पर बातचीत मरकूज रही। दोनों रहनुमाओं ने दोहरे टैक्स से बचने से मुतालिक माहदे पर भी तबादला ख्याल किया, ताकि तिजारत और सरमायाकारी और टैक्सेशन पर

0: मूप दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम और शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है। और कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम घर बैठे इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया घूम लेते हैं, वहाँ की भाषा संस्कृति सब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेट पर गूगल ट्रांसलेट के जरिए वहाँ की सारी जानकारी अपनी भाषा में मिल जाती है। पर क्या हमने ये सोचा कि इस अनुवाद के पीछे कौन है? नहीं ना, इसके पीछे होते हैं हमारे अनुवादक, दुभाषीय भाषा विशेषज्ञ। सोचिए, अगर ये ना होते तो आज हम विश्व के बड़े साहित्यकारों की रचना से, वैज्ञानिकों की खोज से अनजान होते। हमारे अपने सदग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता, उपनिषद आदि का अगर अन्य भाषाओं में अनुवाद ना होता तो उन्हें हमारे देश के जीवन दर्शन विधि निषेध की जानकारी कैसे होती? विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और साहित्यकारों ने हमारे अनुदित सदग्रंथों को पढ़कर उनसे ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को उन्नति पर पहुँचाया है। आज इतनी बातें जो अनुवाद को केंद्र में रखकर हो रही हैं, वो इसलिए कि हर साल 30 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन संत जेरोम की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष का थीम है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स, द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, यानी भाषाई विविधता और भाषा का अधिकार, समझे जाने की शक्ति। सरल शब्दों में कहें तो ये दुभाषीय हमारे शब्दों को ही नहीं भावनाओं को ठीक तरह से पहुंचाते हैं, तभी तो हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इनका होना अनिवार्य होता है। ये दो देशों के बीच भाषाई पुल बनाते हैं, एक दूसरे तक सही ढंग से बात पहुँचाते हैं, जिससे एक दूसरे का सहयोग, समस्या का निराकरण ठीक प्रकार से हो सके। सोचिए ना, अगर हम अपने ही देश में किसी दूसरी जगह जाएं, जहाँ की भाषा और बोली से हम बिल्कुल अनभिज्ञ हों, तो आप बताइए कि हम उन्हें और वो हमें अपनी बात कैसे समझा पाएंगे? ये तभी संभव है जब ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ हो जो हमारी और उनकी दोनों भाषा, दोनों बोलियों को जानता या समझता हो, तभी तो ये संभव हो पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये दुभाषीय, ये भाषाविद,

श्रोताओं, हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में अनुवादक का सहयोग ले लेते हैं। डिजिटल माध्यमों से हमें उनकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन भावनाओं की गहराई समझने के लिए, संवेदना को व्यक्त करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में इसकी प्रासंगिकता और महत्ता तो और भी बढ़ जाती है, जहाँ अनेकों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। छोटे छोटे गांवों, कस्बों में जहाँ आज भी आधुनिक शिक्षा की पहुँच नहीं हो पाई है, या अपनी सामाजिक स्थिति के कारण जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, जो गरीब हैं, उनकी हर प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य की, कानून की, शिक्षा, रोजगार आदि की समस्या को ठीक ढंग से समझकर सक्षम अधिकारी तक ये भाषा विशेषज्ञ ही पहुँचाते हैं। यही दुभाषी, यही अनुवादक, जिन्हें फौरी तौर पर न तो कोई जानता है न पहचानता है, ये चुपचाप अपना काम करते हैं। ऐसे ही भाषाई पेशेवरों को सम्मान देने के लिए हम आज का ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। हमें अपने युवाओं को इसे करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही कई भाषाओं की जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विविध भाषाओं को सीखने से कई बार हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, या कभी हमें आवश्यकता है तो अपनी बात समझा सकते हैं। 30 सितंबर को हम ऐसे सभी दुभाषियों को, भाषा विशेषज्ञों को सलाम करते हैं जो दो देशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, या दो ऐसे व्यक्तियों के बीच दो जो एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से बिल्कुल ही अनजान हैं, भाषा के पुल का निर्माण करते हैं। ऐसे सभी अनुवादकों को हम हृदय से नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और ये पहला गाना हम आपको दूरियां फिल्म से सुनवा रहे हैं। जयदेव के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं सुदर्शन फाकिर ने, और आवाजें हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा पौडवाल की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: फिल्म अजनबी

तर्ज बनाई है अनु मलिक ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अमरोहा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को अमरोहा में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके उपरांत सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षा मंत्री द्वारा दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गयी। उन्होंने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल और चेक वितरित किए। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत अमरोहा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 5,65,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि देश ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मना रहा है जिसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि
2: हमारे देश के सबसे वीर प्रतापी दृढ़ संकल्पशील जिनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दृढ़ निश्चय होकर देश के हित में कार्य करते रहे और 13 तरीके के कार्यक्रम दिए गए हैं। 1 महीने कार्यक्रम चलेंगे और जो कार्यक्रम है ये हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ और प्रसन्न।
1: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा अमरोहा में 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में नवीनीकृत आधुनिक पेंशनर कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के वरिष्ठ एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन संबंधी कार्यों के लिए कोषागार आने पर सुगम, आरामदायक एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कक्ष को आधुनिक एवं मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें दिव्यांग एवं अशक्त पेंशनरों के सुगम आवागमन के लिए रैंप तथा चलने में असमर्थ वृद्ध पेंशनरों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के पास एक बेहतर अनुभव है जो कि नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने में अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है।
3: इस जिले के लगभग 6,000 पेंशनर्स के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार ने उन्हें ये सौगात दी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। मैं सभी अपने पेंशनर्स भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनसे ही अपेक्षा करता हूं कि उनके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी को होगा और अपने युवाओं के साथ मिलकर देश को, प्रदेश की एक बड़ी प्रगति को आगे ले जाएं।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में हर वर्ष लगने वाले राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं के लिए शासन द्वारा 5.5 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। इसी क्रम में तैयारियों के मद्देनजर 19 सितंबर को मुरादाबाद मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मेले के आयोजन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा तैयारियों को समयबद्ध ढंग से शुरू करने के निर्देश दिए।
4: धार्मिक मेला है, इसको जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा हम लोग करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लोग आके एक तरह से कल्पवास टाइप का करते हैं तो उनको क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, कैसे सफाई मेंटेन कर सकते हैं, कैसे प्लास्टिक फ्री जोन इसको रख सकते हैं, कैसे लोगों को सुविधा हो सकती है, इन सब का ध्यान रखते हुए कुछ मैंने निर्देश दिए डीएम साहब को।
1: मंडल आयुक्त ने आगामी मेले के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध ढंग से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने मेला क्षेत्र में पहली बार बनने वाले पोन्टून पुल के बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि पोन्टून पुल के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर को प्रेषित किया जा चुका है। अमरोहा में ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि के इस्तेमाल में अनियमितता के मामले में डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ ने 7 ग्राम पंचायत प्रशासकों को पद से हटा दिया है। अब संबंधित ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। जोया ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों में 27 मई के बाद बिजली फिटिंग, बेसहारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन व सफाई के नाम पर 23 लाख रुपए निकाल लिए गए। ई स्वराज पोर्टल पर भुगतान और निकासी की जानकारी से मामला सामने आया। डीपीआर ने एडीओ पंचायत जोया और अमरोहा से जांच कराई जिसमें दर्शाए गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

0: डीएम ने 9 प्रशासकों को नोटिस देकर 15 दिन में स्पष्टीकरण और भुगतान के साक्ष्य मांगे थे। 2 ने जवाब दिया जबकि 7 प्रशासकों ने पक्ष नहीं रखा।
1: तो जहां से ये शिकायत मिली है उन 78 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नोटिस दिए गए हैं जिनमें से 7 को निष्कासित किया गया और बाकी सबका अभी जवाब अवेटेड है। इसमें ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं कि शासन आदेश के विरुद्ध ग्राम नदी का ट्रोल न किया जाए।
0: इसके बाद रजबपुर, शकरपुर, समसपुर, शहबाजपुर कला, गफ्फारपुर, अटेरना, सूदनपुर और मंगूपुरा के प्रशासकों को हटा दिया गया है। संबंधित सचिव मोनू कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अमरोहा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारी, प्राविधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
3: ललितपुर में अक्टूबर माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ सिंह चौहान की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डेंगू, मलेरिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर विभागवार तैयारियों की चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को माइक्रो प्लान तैयार कर आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गांवों और वार्डों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया। जल भराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और एंटी लार्वा दवा के छिड़काव पर विशेष जोर दिया गया। कार्यों से कहा गया कि अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि फील्ड में गतिविधियां प्रभावी रूप से दिखाई दें। पिछले अभियानों में सामने आई कमियों को दूर करने और फील्ड गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक अशोक कुमार यादव ने की। बैठक में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। एडीएम ने निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर को निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया जाए। इसके बाद महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। दोनों महापुरुषों के जीवन, विचारों और सिद्धांतों पर चर्चा भी आयोजित की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी, रैली, वाद विवाद, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल वितरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भूमि चकबंदी, पैमाइश, फसल बीमा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, जल जीवन मिशन और राशन कार्ड सहित कई मामलों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। तालबेट के ग्राम टोरी निवासी भान सिंह ने शिकायत की कि उनकी भूमि भूलेख में दर्ज नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने फोन पर ही SDM तालबेट से बात की और भूमि को भूलेख में दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कई अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। भूमि और चकबंदी से जुड़े मामलों के साथ पैमाइश, फसल बीमा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत, जल जीवन मिशन और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें भी सामने आई। जिलाधिकारी ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर ही कार्रवाई कराई। वहीं जन शिकायतों के तत्काल निस्तारण की स्थिति नहीं थी। उनमें अधिकारियों को समय सीमा तय कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निस्तारण की आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया। कुल मिलाकर ललितपुर में इन दिनों प्रशासन का फोकस सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए चेकिंग और कार्रवाई

0: बढ़ाने, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए फील्ड अभियान तेज करने, गांधी जयंती के कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए समूह स्वरों में देश गान।

अभी आप समोसरों में देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: खुदा के नाम से हम बज़्म का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से हम बज़्म का आगाज करते हैं, वही मालिक है हम उसके करम पर नाज करते हैं। सामीन बज़्म अदब रामपुर रेडियो मरकज से आपके प्रोग्राम की मेजबान रबाब अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। समीन, हमारे मुल्क में पिछले 17 सितंबर से आने वाले 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के उन्मान से एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि साफ हिंदुस्तान और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। समीन, इस मुहिम का मकसद है सफाई को एक तहरीक की शक्ल में फैलाना, जिसमें सबका तआवुन हो और शहरियों में माहौल की सफाई और तहफ्फुज़ के तहत बेदारी पैदा हो। इस मुहिम के 5 मखसूस सुतून कायम किए गए हैं। पहला है कुछ मखसूस अवामी इलाकों की निशानदेही करके वहां बहाली और तज़ीनकारी और आराइश का सामान करना। दूसरा है सफाई के लिए बेदारी मुहिम, जिसमें नौजवानों की शमूलियत भी हो। तीसरा, सफाई रखने और इस मुहिम में हिस्सा लेने वालों के लिए एजाजी प्रोग्राम। चौथा है सफाई के लिए अवामी तआवुन, और पांचवा है सफाई से खुशहाली। तो समीन, आइए हम भी आज बात करते हैं इसी अहम मुद्दे पर, जिसका नाम है सफाई, और जो इंसानी जिंदगी की बका और तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समाप्त कीजिए आज का ये खसूसी ओबी बेस्ड प्रोग्राम, स्वच्छता का पैगाम हिंदुस्तान के नाम। सफाई कल्ब की मलजूम है बशर के लिए, सफाई कल्ब की मलजूम है बशर के लिए, खुदा नुमा यही आईना है नजर के लिए। जी हां, इंसान फितरी तौर पर सफाई, सुथराई, तहारत और पाकीजगी और खूबसूरती को पसंद करता है, और यही लाजमी है हिफ्जान सेहत और सेहतमंद माहौल के कयाम के लिए। सफाई है एक मुजर्रद कैफियत, जिसकी अलामत है साफ रहना। तिब्बी नुक्ते नजर से भी तहकीक और जस्तजू के बाद ये साबित है कि गंदगी से वायरस और जरासीम पैदा होते हैं, जो सबब बनते हैं कई तरह की जानलेवा बीमारियों के। 70% के करीब इंसानी और हैवानी बीमारियों का सबब भी गंदगी है। गंदा माहौल, गंदा पानी, गंदी आबोहवा वजह बनते हैं इमराज की, क्योंकि इस गंदगी की बिना पर ही पैदा होते हैं जरासीम, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और इसी सबके पेशे नजर खास अहमियत है तमाम मजाहिब में सफाई की, यहां तक कि मजहब इस्लाम में तो इसे निस्फ ईमान यानी आधा ईमान का दर्जा दिया गया है कि जहां सफाई और पाकीजगी नहीं वहां ईमान नहीं। यूं तो हम सबके जहन दिल में कहीं ना कहीं सफाई का एहसास छिपा है, बल्कि कभी कभी हम अपनी मजहबी, अखलाकी और माश

0: एक सरकारी तंजीम से जुड़ी हुई हैं, तो आपको सरकार की तमाम पॉलिसियों के बारे में बेहतर जानकारी है। सफाई से मुतालिक जो सरकारी पॉलिसियां हैं वो आपकी नजर में कितनी कारगर हैं और लोग उसको कितना मान रहे हैं और उसके जरिए कितना फायदा उठा रहे हैं?
1: देखिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले कई सालों में साफ सफाई को लेकर बहुत सारे अभियान और बहुत सारे मिशन चलाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो और सबसे खास मिशन था वो स्वच्छ भारत मिशन था, जो कि साल 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसमें कई सारे फेजेस भी आए थे, फेज वन फेज टू, जिसमें ODF की बात की गई थी और इसके तहत सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों के घरों में टॉयलेट्स वगैरह भी बनवाए गए थे। उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण करके भी एक सरकार की तरफ से एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसमें स्पेशली जो फोकस है वो शहरों की साफ सफाई को लेकर है और शहरों को कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं। और इसमें एक रैंकिंग सर्वे होता है सरकार की तरफ से, जिसमें शहरों को रेटिंग दी जाती है उनकी साफ सफाई को लेकर। उसके अलावा जल जीवन मिशन करके एक अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसमें साफ पानी पर लोग साफ पानी का इस्तेमाल करें, पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें, इस पर जोर दिया जाता है। और वेस्ट टू वेल्थ मिशन के नाम से भी एक अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें वेस्ट को आप किस तरीके से चेंज करके, रिसाइकल करके एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, बायोगैस में चेंज कर सकते हैं, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार की तरफ से तो इतने सारे मिशन चल रहे हैं, लेकिन लोग, एक आम आदमी जो है वो किस तरीके से इन चीजों का फायदा उठा रहा है या उसके जरिए कितना सपोर्ट किया जा रहा है इन सारे मिशन्स को, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करने की जरूरत है। नो डाउट के लोगों में अभी पिछले कई सालों में अवेयरनेस बढ़ी है और आप देखते होंगे जैसे वो एक नीला कचरादान और एक हरा कचरादान, वो सूखे कचरे के लिए नीला वाला डस्टबिन यूज करना है और गीले कचरे के लिए ग्रीन वाला, तो अभी लोगों में ये थोड़ी चीजें बदलाव हुआ है, लेकिन उस हद तक बदलाव नहीं हुआ है मैं समझती हूँ जिस हद तक एक सरकार को की मंशा थी।
0: समीर साहिबा, क्या आप समझती हैं कि सफाई जैसी चीज जो हमारी जिंदगी की अहम जरूरत है और हमारी सेहत के लिए जरूरी है, क्या उसको बनाए रखने के लिए भी आज हमारे समाज और मुआशरे में जो एक लापरवाही है, क्या उसके लिए कोई कानून बनाना जरूरी है? क्या कानून के जरिए से हम इस अहम मुहिम में कामयाब हो सकते हैं?
1: देखिए, हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी बहुत सारे कानून और एक्ट बने हुए हैं जो साफ सफाई से रिलेटेड हैं और साफ सफाई को बनाए रखने के लिए ही उन कानूनों को बनाया गया था। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, उसके अलावा वाटर एंड एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है, तो ये सारे कानून तो पहले ही बने हुए हैं। तो बात दरअसल ये नहीं है कि नए कानून बनाए जाए और उनको लागू किया जाए, बात दरअसल ये है कि जो कानून पहले से ही बने हुए हैं उनका इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है और उनकी तरफ लोगों की क्या अवेयरनेस है। अब यहाँ बात आती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लोकल बॉडीज होती हैं, वो अपनी जगहों पर किस किस तरीके से इन कानूनों का पालन करवा सकती हैं या लोगों के दिलों में इन कानूनों का पालन करने के लिए कितना डर है। ठीक है, कमी कानूनों में तो नहीं है, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, कमी जो आती है उनके इम्प्लीमेंट पर आती है कि लोगों तक उन कानूनों को पहुंचाना और लोगों में उन कानूनों के लिए अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में उन कानूनों के लिए डर पैदा करना, क्योंकि कोई भी चीज आप देखिए या तो शौक से होती है या खौफ से होती है, तो शौक से नहीं कर रहा है तो भाई खौफ से ही करें, कुछ ऐसी सजा या कुछ ऐसा फाइन, लेकिन अवेयरनेस कितनी है, लोगों तक इन कानूनों की पहुंच कितनी है, कितना लोग इन चीजों को जानते हैं कि हाँ अगर मैं भाई चलते चलते बीच सड़क पर थूकूंगा या कहीं पर भी कोई भी कचरा डाल दूंगा तो इसका मेरे पर भी कुछ गलत असर पड़ सकता है। मतलब मोरली देखा जाए तो आपकी सेहत तो उससे असरअंदाज होगी, लेकिन तो लोगों में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये कानूनी तौर से भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसका मेरे पर भी कोई फाइन पड़ सकता है, मुझे भी इसकी सजा हो सकती है। उसमें हमें हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, जो हमारा प्रशासन है, उसको काम करने की जरूरत है।

0: صاف ستھرے معاشرے اور صاف ستھرے صحت مند ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ سمین، ابھی آپ رامپور ریڈیو مرکز پر تیار ہمارا آج کا یہ خصوصی او بی پر مبنی پروگرام سماعت کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا سوچھتا کا پیغام ہندوستان کے نام۔ اور اب اپنی میزبان رباب انجم کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں۔ الوداع۔
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
5: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आस्था सिंह के गाए भजन। सबसे पहले हम आपको आस्था सिंह के स्वर में कबीर दास जी की रचना सुनवा रहे हैं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आस्था सिंह के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओ योंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने ओ योंग वोइन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम जो पूरी तरह से बेस्ड है युवाओं के ऊपर, यूथ के ऊपर, हमारे युवा साथियों के ऊपर। और ये जो सितंबर का महीना चल रहा है, ये पूरे संसार में वर्ल्ड न्यूट्रिशन मंथ यानी कि विश्व पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। आज का जो हमारी बातचीत का विषय है, जो टॉपिक है, वो भी यही है, न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन, कैसे होता है न्यूट्रिशन, और एक जो न्यूट्रिशनल फूड की अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है, वो क्या होती है। क्या हर व्यक्ति जो हम आज अपनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में खाना खा रहे हैं, उसमें पैकेज्ड फूड भी है, ताज़ा खाना भी हो सकता है, अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो क्या वो पोषण हम ले पा रहे हैं। और इसी के साथ बात हम करेंगे जिमिंग की। क्या जिमिंग ज़रूरी है, सही तरीका क्या है, और इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है प्रयागराज की प्रख्यात न्यूट्रिशनिस्ट को, डॉक्टर छाया मिश्रा। जी हाँ, डॉक्टर छाया मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, यूथ के ऊपर। डॉक्टर छाया मिश्रा, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि पेट भरो, पेट भर के खाना खाओ, पेट भर जाने का मतलब न्यूट्रिशनल फूड हमने उतना ले लिया, ये होता है।
2: द वर्ड न्यूट्रिशन इट्सेल्फ इज सो पावरफुल।
1: पोषण,
2: पोषण, पोषण कहाँ से शुरू होती है? इनफैक्ट इवन बिफोर बर्थ।
1: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि जब मदर कंसीव करती हैं, उससे पहले का भी हम ये देखा थे, देर आर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन। मतलब जब मदरहुड के लिए तैयार हो रही होती हैं, उससे पहले होने वाली मदर की न्यूट्रिशन कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ से शुरू होती है। इट्स इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। दैट इज़ वाई जो गर्ल चाइल्ड के बारे में बताते हैं ना कि एक लेडी की हेल्थ न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है, बिकॉज प्रोजेनी कहाँ से आ रही है, हु गिव्स बर्थ, अ वुमन, राइट? इसलिए अ वुमन्स न्यूट्रिशन इवन बिफोर कंसेप्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: अच्छा, यही कारण था कि पुराने समय में जो दादियाँ नानियाँ हुआ करती थी, वो अलग अलग तरीके की चीजें इस समय पर, चाहे लड्डू हो,
2: ध्यान रखा जाता था फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी,
1: जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन।
2: यस, न्यूट्रिशन एंड आपके आपकी स्पीशीज को आगे लेके जाने वाली कौन है? द वुमन। इसलिए वुमन हेल्थ, वुमन न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होगा, बॉय और गर्ल, इफ दे हैव टू बी हेल्दी, द मदर हु इज बेयरिंग द चाइल्ड शुड बी हेल्दी बिफोर कंसेप्शन।
1: डॉक्टर छाया मिश्रा, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फूड की, तो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसको देखते हुए एक आइडियल, एक आदर्श न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस थाली क्या हो सकती है एक हमारा जो यूथ है उसके हिसाब से?
2: जी देखिए, यूथ में एक कॉमन बिलीफ है, इनफैक्ट आज जो भी सुन रहे होंगे, द मोमेंट दे थिंक ऑफ न्यूट्रिशन या डाइट, सबसे पहले दिमाग में लोगों को आता है वेट लॉस, है ना? दूसरी चीज़ आती है, अच्छा कोई बीमारी हुई तो क्या, है ना? दो ही जगह पे लोग उस पे ध्यान देते हैं। जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब दवा तो दे दिया, क्या खाए क्या ना खाए बताइए। सो कैन यू सी द इम्पॉर्टेंस कम्स वेन यू आर इन क्राइसिस। मैं बोलती हूँ क्राइसिस में नहीं, जब आप अच्छे से रहते हो तभी आप इस पे ध्यान देंगे, तो आपको अब बीमारी नहीं होगी, बीमार कम पड़ेंगे आप। इतना इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। एंड जैसे हमने बताया कि लोग वेट लॉस को लेकर न्यूट्रिशन को जोड़ते हैं, नहीं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट इम्यूनिटी, इट्स अबाउट योर ओवरऑल जनरल वेलबींग, है ना? अब जैसे कि WHO का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, इट्स जस्ट नॉट कि बीमार ना होना, है ना? इट्स अ फिजिकल

0: फिजिकल, सोशल, इमोशनल,
1: मेंटल,
0: मेंटल वेलबींग, ये सारे चार एंगल्स को लेते हुए सब अगर सेटिस्फाइड है तो एक पर्सन को हेल्दी बोला जाता है. एंड ऑल ऑफ दिस इज रूल्ड बाय न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग योर मेंटल हेल्थ.
1: कभी कभी ऐसा लगता है डॉक्टर छाया मिश्रा कि भारत जैसे देश में जिस तरह की दीवानगी है खाने को लेकर के, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अगली जो जातियां बनेंगी वो खाने के आधार पर बनेंगी. ये नॉन वेजिटेरियन है, इनकी अलग जाति हो गई, इनका अलग धर्म हो गया. वेज और

0: हैं, सोर्सेज हैं प्रोटीन के या न्यूट्रिशन के, या इसका अगर हम उल्टा कहें जो मांसाहारी हैं उनके पास जो एक सहज प्राप्त प्रोटीन होता है वो उनको अपने डाइट से मिल जाता है। अगर मैं शाकाहार की बात करूं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको कम्पीट कर सकती हैं या उस स्तर का प्रोटीन या उस स्तर का पोषण दे सकती हैं। अब आजकल तो वीगन भी हो रहे हैं लोग।
1: जी, देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ कल्चरली भी डिफरेंशिएटेड है, जस्ट नॉट बाय चॉइस, है ना। बाय चॉइस भी लोग वेजिटेरियन होते हैं, बाय चॉइस लोग नॉन वेज भी खाते हैं।
0: बिल्कुल
1: सो कहीं पे हम कल्चरली देखा जाए, अगर लोगों को ये लगता है कि वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन, अमंग द वेजिटेरियन, दैट्स पार्टली ट्रू, हाउएवर नॉट कम्प्लीटली ट्रू। क्योंकि जितना हम वैरायटीज ऑफ, जैसे कि वेजिटेरियन में क्या है आपका, दूध दही, देन यू
0: दाल
1: हैव
0: चावल
1: पल्सेस,
0: सब्जी
1: दाल पल्सेस,
0: रोटी
1: हाँ सब्जी रोटी में, मतलब ग्रेन्स में उतना नहीं,
0: जी
1: पर बेसिकली जो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो है वो
0: दूध दही
1: है,
0: दालें
1: उसमें वैरायटी आपको कई कई चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपके डाइट में। क्योंकि एक बायोलॉजिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है नॉन वेज प्रोटीन में है, बट इन वेजिटेरियन सोर्स देर आर डिफरेंट सोर्सेस, लाइक जैसे दूध दही पल्सेस हमने बताया,
0: सोया
1: ये मेजर, हाँ पल्स में ही, सोया भी पल्स
0: जी
1: में ही आ जाता है। तो कभी किसी को, जैसे समझ लीजिए दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ तो एलिमिनेट हो ही गया, देन बचता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। बट देन बाय एंड लार्ज व्हेन वी प्लान इन अ वे, वी कैन मेक श्योर दैट समबडी इज़ गेटिंग एडिक्वेट प्रोटीन डे टू डे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज़ पॉसिबल। बट वेन देर इज़ एन एक्स्ट्रा नीड फॉर प्रोटीन, देर विल ऑल्सो बी इंक्रीज इन कैलोरी, वहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होती है।
0: मैं इसमें जिम को लाना चाहूँगा क्योंकि आज एक बहुत खासकर कोविड के बाद से जो एक एरा हमने जिया उस समय बहुत भयावह था, ईश्वर ना करे दोबारा वो आए, उसके बाद से जिम करने का या एक्सरसाइज करने का या योग करने का प्राणायाम करने का एक अच्छी बात भी है। लोगों के
1: हाँ
0: अंदर एक जज्बा आया, एक अंदर से इच्छा आई कि हमको भी ये करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, जिमिंग भी इसी में आ गया। ऐसे में जब हम जिमिंग की बात करते हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो क्या जो जिम कर रहा है व्यक्ति, लड़का लड़की कोई भी, उसका जो डाइट होता है या जो जिम नहीं कर रहा है उसका डाइट होता है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है या होना चाहिए?
1: बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए, है ना। पहली बात तो ये देखना है, व्हेन वी से जिमिंग, तो इट्स जो हमारे दिमाग में आता है वो इट्स एन एरिया वेयर एवरीबडी इज़ गोइंग इन जिमिंग। सो अल्टीमेटली इट इज़ लाइक आप एक्सरसाइज थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज के तारीख में एवरीबडी हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब, या बीट स्टूडेंट्स बीट एनीबडी, यू नो हमारे आपके, यू नो जनरल पॉपुलेशन एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रही है। उसमें 1 घंटे आप अगर निकालेंगे फॉर यू टू गिव वर्क टू ऑल द मसल्स इन योर बॉडी, अदरवाइज सब तो यूज़ नहीं हो रहा है ना पूरे दिन में।
0: ऑब्वियसली
1: सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉट यू डू नॉट यूज़ यू लूज़, हमारे एक मेंटर बोलते थे। सो लाइक वाइज बॉडी हेड टू टो आपको स्वस्थ रहने के लिए इंक्लूड ऑल द मसल्स ऑफ योर बॉडी दैट इट इज़ फंक्शनिंग एवरी डे। सो जिमिंग को इस तरह लिया जाए, इट्स नॉट अ टास्क, दिस इज़ समथिंग वी शुड बी डूइंग एवरी डे।
0: मतलब सबको कुश्ती नहीं लड़नी है तो
1: कुश्ती
0: केवल
1: नहीं
0: फिट
1: लड़नी,
0: रहना है।
1: हाँ कीप ऑल द मसल्स इन योर बॉडी एक्टिव।
0: डॉक्टर छाया, पुराने समय में फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे, दादी बाबा चाचा चाची, कोई ना कोई मॉनिटर करता रहता था चीज़ों को। अब आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई शिफ्ट्स में काम कर रहा है, किसी के वर्किंग आवर्स इस तरह के हैं कि वो अपना एक जो रेगुलर भारत जैसे देश की दिनचर्या होती है कि सुबह उठ के नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर इस तरह से वो कहीं ना कहीं टूटा है। ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता जिसको हम कहते हैं, जो एक हमारे यहाँ की अवधारणा थी कि वो अच्छे से होना चाहिए, एक कहावत भी है कि नाश्ता आप राजा की तरह कीजिए, फिर दिन का खाना कर्मचारी की तरह खाइए और रात का
1: हाँ
0: खाना एक भिखारी की तरह खाइए।
1: जी,
0: ऐसे में ब्रेकफास्ट आप जिम भी कर रहे हैं, आप मैं सप्लीमेंट्स पर भी आऊँगा।

0: आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं लेकिन आप ब्रेकफास्ट कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये ठीक है?
1: इसमें देखिए ब्रेकफास्ट का टाइमिंग भी है ना
0: बिल्कुल
1: फर्क
0: बेटर
1: पड़ता है.
0: रहता है।
1: सो आइडियली जिसको हम क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करते हैं, जो टाइमिंग है आपका सुबह दोपहर शाम
0: जी
1: रात के टाइमिंग के हिसाब से, देर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बॉडी में. देर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी में भी सुबह दोपहर शाम और रात होती है. व्हेन आई से दैट सर्टन हार्मोन्स इन द बॉडी आर एक्टिव एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम.
0: मतलब जो पहर वाला कंसेप्ट था वो ठीक था हमारा,
1: जी जी
0: रात्रि
1: जी
0: का पहला पहर, दिन का दूसरा पहर, वो
1: हाँ
0: सही
1: ये
0: बात थी।
1: ट्रेडिशनली ये सही है. हावेवर जैसे हम सब का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, जैसे
0: जी
1: आपने बताया शिफ्ट ड्यूटी है, जिसको एक्चुअली नाइट ड्यूटी है वो तो दिन में तो सो ही रहा है, उसके लिए रात ही दिन की बात हो
0: सही
1: गई.
0: बात।
1: सो वहाँ पर थिंग्स चेंज एंड दैट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन. सही तरीके से मॉडिफाई करेंगे ताकि उनके जो ऑब्वियसली बॉडी को तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना, नाइट ड्यूटी आपको करनी है, पर बॉडी
0: बिल्कुल।
1: तो नेचुरली वो रात को ही रेस्ट करने के लिए बना हुआ है नेचर
0: बॉडी
1: वाइज,
0: क्लॉक अलग
1: बॉडी
0: है।
1: क्लॉक
0: यस
1: है ना. सो जब ये चेंज होता है तब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर ऑब्वियसली चेंज होगी है ना. अदरवाइज जैसे एक्टिविटी जहाँ पे कॉर्टिसोल हाई रहता है विच इज़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे,
0: यस
1: आइडियली 10 से पहले पहले इट इज़ गुड टू हैव अ सम्पच्युअस मील, प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील सुबह खा लेना ज़रूरी है. पर जिनके लिए नहीं है इट इज़ ओके, बट देन दे कैन शिफ्ट इट. लॉट ऑफ पीपल प्रिफर हैविंग ब्रंच,
0: ब्रंच
1: दैट्स ऑल्सो ओके. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज थ्रू आउट द डे आपका जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, और जिस समय का आपका एक्टिविटी कम रहता है उसके हिसाब से आपका डिक्रीज कैलोरी हो रही है कि नहीं. फिर भी वो जो भी थाली आप खा रहे हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए थ्रू
0: मतलब
1: आउट द
0: आप
1: डे.
0: ये कह रही हैं कि अगर आप कुछ आपने कुछ वर्कआउट किया तो उसके बाद तुरंत आपको कुछ खाना है।
1: जी व्हाट आई अंडरस्टैंड आप जो रेफर कर रहे हैं वो है जो वर्कआउट कर रहे हैं टू बिल्ड से मसल मास है ना, टू इम्प्रूव देयर स्टेमिना, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. या वर्कआउट के दौरान प्रोटीन लेना ज़रूरी है, वर्कआउट के तुरंत बाद ज़रूरी है. डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एक्टिविटी गोल इज़, कि कोई कंपटीशन की, कोई एथलेटिक्स की तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, या कोई सिर्फ अपना मसल बिल्ड कर रहा है, कोई अपने बोन के लिए वर्क कर रहे होंगे. यू नो इन टुडेज सिनेरियो इफ़ यू आस्क हु नीड्स टू बी एक्सरसाइजिंग, एवरीबॉडी.
0: डॉक्टर छाया, बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक चाहेंगे। आप
1: जी
0: हमारे दोस्तों के लिए कुछ, अगर कोई गीत उनको सुनवाना चाहें, कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का।
1: 1942 अ लव
0: क्या
1: स्टोरी
0: बात
1: का,
0: है।
1: ये रिम जिम
0: रिम झिम भीगी भीगी
1: जी.
0: रुत में। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत गीत था। हम बात कर रहे थे जिमिंग की और न्यूट्रिशन की। इसके बीच में एक और कड़ी आती है जिसका कि आजकल बाजार बहुत बड़ा हो गया है। लोग इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे कोई डेली यूज़ की जाने वाली चीज़ें हों। हम बात कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, और ज़्यादातर ये वो लोग लेते हैं जो रेगुलर जिम कर रहे होते हैं।
1: जी
0: क्या किसी भी तरह से बिना किसी से कंसल्ट किए ये अपने से लेना ठीक है?
1: आइडियली नॉट, क्योंकि आप अपने बॉडी को एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं बनाना है. टॉक टू अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर एंड कंसिडर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट वर्सेस आप क्या प्लान कर रहे हैं जिमिंग के दौरान, राइट? तो इसका तालमेल सही बैठेगा तो एब्सोल्यूटली इट कैन बी टेकन, इट शुड बी टेकन, विच विल हेल्प एनहैंस मसल मास.
0: इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो स्टेरॉयड के तौर पे प्रयोग की जाती हों या जा रही हों, खतरा
1: हो
0: है?
1: रही को तो बहुत चीज़ें हो रही हैं बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. हम तो यही बोलते हैं सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, वहाँ से पूरा नहीं हो रहा है देन द सप्लीमेंट कम्स. सप्लीमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर फूड.
0: मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर
1: हाँ,
0: कोई
1: वो
0: सप्लीमेंट
1: रिप्लेसमेंट
0: ले।
1: नहीं है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए है. वो हटा के आप सिर्फ ये लीजिए तब बॉडी को नुकसान होगा.

0: बहुत सारे ऐसे भी हम आजकल रील देखते हैं सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पर जो एकदम से आपको एक तरह से प्रभावित करती हैं, उसके बाद आप खरीदे ना खरीदे मगर वो सर्च जरूर करते हैं। और एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप बार बार अगर कोई चीज़ करते हैं तो फिर वो आप कर जाते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहली बात तो ये कि जिम जब आप जा रहे हैं तो क्या केवल जिम ही एक विकल्प है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है? अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो क्या आप अपने घर में, जैसे योग आजकल एक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला, क्या जिम जाना ही ज़रूरी है? दूसरा, अगर आप जिम जा रहे हैं तो, जिसका जवाब आपने दिया अभी, मैं फिर से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कई तरह की चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी सबको पता भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट्स देख करके प्रभावित हो रहे हैं।
1: देखिए, जिम क्यों जाते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? वही एक्सरसाइज आप, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट एंड क्या आप उस समय, जैसे लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ टाइम, जिम आना जाना फिर वहाँ पर एक्सरसाइज करना. नाउ लेट्स से दैट इफ दैट टेक्स 1 आवर, आना जाना आधा घंटा लग जाता है, फिर आपके पास बचता है 30 मिनट्स. अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, यू कैन एक्चुअली डू इट एट होम एज वेल, बट यू हैव टू डेडिकेट दैट टाइम. वॉक करना ज़रूरी है, मिनिमम ऑफ, जैसे आप बोले ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते, ताकि हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस से या जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी या हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों को दूर रखने के लिए अ मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी सिंगल डे, 6 डेज अ वीक आप करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनाफ टू स्टार्ट विथ. उसके अलावा 15 to 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विच कुड बी इन द हाउस, बेसिक डम्बल्स के साथ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ कर सकते हैं, बट इज़ इम्पॉर्टेंट. इतना भी करेंगे तो काफ़ी है. ऑफकोर्स इफ समबडी इज़ डूइंग योगा, इट एड्स टू इट, दे शुड बी डूइंग. सो सी वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ डूएबल फॉर यू, बट कुछ चीज़ें जो है नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही करना है, ताकि आपका नेक्स्ट 20-25 ईयर्स हेल्दी रहे. लॉन्जिविटी इज़ जस्ट नॉट अबाउट कितनी लंबी उम्र, कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वॉट मैटर्स.
0: एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है कि आप कितना लंबा जीते हैं, आपका जीवन कितना बड़ा होता है, इससे फर्क पड़ता है।
2: वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का पहला भाग. प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की. ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम.

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब प्रस्तुत है लोकगीत। आज कलाकार हैं घनश्याम और साथी, सविता सागर और साथी, और राधेश्याम निषाद और साथी। सबसे पहले हम आपको घनश्याम और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

घनश्याम और साथियों के गाए इस कहरवा के बाद अब हम आपको सविता सागर और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

और अब अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राधेश्याम निषाद और साथियों के स्वर में ये दादरा।

इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और अब प्रसिद्ध कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जब भी हम 90 के दशक के इंडी पॉप या 2000 के दशक के बॉलीवुड संगीत को याद करते हैं

तो एक ऐसी आवाज हमारे जहन में गूंजती है जिसमें ताजगी है, सुकून है और सबसे बढ़कर एक बिना शर्त बिखरी हुई मुस्कान है। एक ऐसी आवाज जिसने हर उम्र के दिल को छुआ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मेलोडी किंग शान यानी शांतनु मुखर्जी। आज उनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, शान सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक एहसास है। उन्होंने जब भी गाया ऐसा लगा जैसे दिल की बात सीधे दिल तक पहुंच गई हो। तो आइए शुरू करते हैं सुरों का ये सुहाना सफर।

श्रोताओं, शांतनु मुखर्जी से शान बनने तक का ये सफर बेहद दिलचस्प रहा है। अपनी बहन सागरिका के साथ नौशाद और डिस्को डांसर जैसे रीमिक्स एल्बम से शुरुआत करने वाले शान ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो रोमांटिक गानों की एक नई परिभाषा गढ़ दी। फिल्म प्यार में कभी कभी का गाना मुसुमुसु हासी हो, ये दिल चाहता है का वो लड़की कहाँ, उनकी आवाज़ में जो मस्ती और बेफिक्री थी उसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया।

क्या बात है, इस गाने को सुनकर पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। लेकिन श्रोताओं, शान की खासियत सिर्फ चुलबुले या मस्ती भरे गानों तक सीमित नहीं रही। जब बात आई संजीदा मोहब्बत की, जब बात आई आंखों ही आंखों में इकरार की, तब भी शान की मखमली आवाज ही इंतखाब बनी। फिल्म फना का चांद सिफारिश याद कीजिए, या फिर सांवरिया का जब से तेरे नैना। जब शान गाते हैं जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तो ऐसा लगता है मानो मोहब्बत खुद अपना सफर तय कर रही हो। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। उनकी गायकी में एक ऐसी रवानगी है जो सीधे रूह में उतर जाती है। चलिए खो जाते हैं प्यार के उसी हसीन एहसास में और सुनते हैं फिल्म सांवरिया का ये गाना।

श्रोताओं, दिल को छू लेने वाली मेलोडी के बाद अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं। शान ने बार बार ये साबित किया कि वो हर मूड के गाने गाते हैं, चाहे डॉन का टाइटल ट्रैक मौर्या रे में गणेश उत्सव की भक्ति और ऊर्जा हो, ओम शांति ओम का दीवानगी दीवानगी हो, या फिर थ्री इडियट्स का बहती हवा सा था वो। उन्होंने हर तरह के जज्बात को अपनी आवाज से जीवंत किया है। शान की आवाज में एक सकारात्मकता है। जब आप उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की सारी परेशानियां थोड़ी देर के लिए किनारे हो गई हैं। आइए अब सुनते हैं दोस्ती और जिंदगी को नए नजरिए से देखने वाला ये खूबसूरत गीत फिल्म थ्री इडियट्स का।

श्रोताओं, शान अपने गीतों, अपनी सदाबहार मुस्कान और अपने विनम्र स्वभाव से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। संगीत के प्रति उनका समर्पण

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप शान के गाए गीत सुन रहे थे और इसी के साथ वंदना श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

लगे रहो मुन्ना भाई। कार्यक्रम का अगला गीत इसी फिल्म से है, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। गीत स्वानंद किरकिरे का और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: और अब सुनिए जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी को, फिल्म का नाम है डियर जिंदगी।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं। और अब अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में सुनिए जयदीप साहनी की रचना। फिल्म का नाम है अंधाधुन और गायक कलाकार अमित त्रिवेदी।

अभी आप जुबिन नौटियाल और असीस कौर को सुन रहे थे फिल्म शेरशाह में। और अब मोहित चौहान का सुनिए, फिल्म का नाम है जब वी मेट। गीत इरशाद कौमिल के हैं और संगीत प्रीतम का।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचौ एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमरीका

0: की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है? गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात में 9:30 पर, और 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलक आप सुनेंगे रात 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें गीतों भरी कहानी सुनेंगी और निखार के अंतर्गत जानेंगी चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जरूरी व्यायाम। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर जीवेश नंदन की वार्ता सुनेंगे समाज सेवा का बदलता स्वरूप और युवा। शाम 7:31 का समय होगा प्रोग्राम किस्सा गोई।

का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात में 8:30 पर कलाकार होंगी आस्था सिंह। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। पंधारी लाल पटेल सूचित करते हैं कि काजल पटेल दिनांक 13 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। काजल पटेल की आयु 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है।

के संबंध में सूचनाएं सुनिए। पंधारी लाल पटेल सूचित करते हैं कि काजल पटेल दिनांक 13 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। काजल पटेल की आयु 22 वर्ष कद 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। वो आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए हैं। काजल पटेल के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। पंधारी लाल पटेल पुत्र स्वर्गीय रामपति पटेल, कमनापुर, सराय ममरेज। मोबाइल नंबर है 9702511621। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9702511621। एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। सुनील गुप्ता सूचित करते हैं कि आदित्य दिनांक 22 नवंबर सन 2022 से लापता है। आदित्य की आयु लगभग 17 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, इकहरा बदन और रंग गोरा है। वो नीले रंग का ट्रैक सूट पहने हुए हैं। आदित्य के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। सुनील गुप्ता, नीमी बाजार, थाना 12, प्रयागराज। पता एक बार फिर सुन लीजिए, सुनील गुप्ता, नीमी बाजार, थाना 12, प्रयागराज। अभी आप खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित भीमसेन जोशी से राग आसावरी में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र राठौर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित भीमसेन जोशी से राग असावरी में ख्याल सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शशिकांत मूले। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलराहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, बाबा भूषणनाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम
0: जी। प्रभाकर जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी, फिल्म का नाम है सुहाग
0: जी।
1: गीत के बोल हैं, तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
0: जी जी जी, तो भैया आपने जिस गीत को पसंद किया है सुहाग फिल्म से,
1: हाँ,
0: हम आपको सुनवाएं।
1: मैडम जी, एक नाम ले लें मैडम जी?
0: अरे दो नाम ले लीजिए, बताइए।
1: रायचंद्रपुर भट्टी बाजार कौराडाड़ के गुड्डू पंडित हैं
0: जी,
1: और गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ के राजेंद्र कुमार।
0: राजेंद्र कुमार जी, चलिए तो ठीक है, आप उनको याद करते रहिए, वो भी अपनी जब भी कॉल लगाते हैं आपका नाम भी जरूर लेते हैं।
1: हाँ हाँ मैडम जी।
0: तो अब सुनवाते हैं सुहाग फिल्म का ये गाना।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का है ये प्रयागराज केंद्र। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गांव भुकेम और डिहरा जिला प्रतापगढ़ से। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी जी, अपना हालचाल बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
1: मैम सैनिक फिल्म का गाना सुनना है। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा।

0: भाई आपने जिस गीत को पसंद किया है उसे सुनवाने से पहले आप पहले नाम भी ले लीजिए, वरना आप कहेंगे मेरे नाम तो रह ही गए।
1: जी मैम, सबसे पहले हमारी प्यारी सी मैम प्रयागराज से मधु मैम,
0: जी,
1: और अपने गीतों के साथ शामिल करते हैं हमें, हालिया प्रयागराज से हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो प्रेमचंद यादव जी हैं,
0: अच्छा जी, हाँ,
1: और मथुरा से हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी, दादनपुर प्रयागराज से हैं विकास जी हैं, और विंध्या सर से हैं मौसम वर्मा जी, हालिया प्रयागराज से रेखा यादव जी हैं, और हमारे छोटे भाई बहन है सूरज कुमार है, संदीप कुमार है, मंदीप कुमार है, सुशांत कुमार है, छोटी बहन है पूजा, और प्रभाकर तिवारी जी हैं, और राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी हैं कुटनी गुंडा से।
0: चलिए तो अब आपको सुनवाते हैं सैनिक फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: नमस्ते।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: मौसम बोल रहे हैं, गाँव का नाम दिन चल गीता मिल गया।
0: जी जी मौसम जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है धर्मेंद्रवल
0: जी,
1: धारने के लिए दहली की क्लास के नरीन वाली। हाँ मैम
0: लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं प्रयागराज से काजल सरोज बोल रही हूं,
0: नमस्ते मैम। नमस्कार काजल जी, कैसी है आप?
1: आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी ठीक हूँ काजल जी। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम हम हो गए आपके,
0: हम हो गए आपके, इस फिल्म का कौन सा गाना है?
1: पहली बार बेकरार हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो आपकी इस पसंद के गाने को तो हम सुनवाएंगे, आपको किसी के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: नाम लेना चाहते हैं मैं।
0: जी बोलिए।
1: मैम नीलम, रश्मि मौर्या और रीना और गुड़िया है।
0: अच्छा जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोसर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: नमस्कार गुलाब जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हम फिल्म सच्चा झूठा से सुनना चाहते हैं, मेरी प्यारी बहनी है बने
0: जी। राजेश खन्ना के ऊपर फिल्म आया हुआ ये गाना बहुत ही पॉपुलर था अपने समय में
1: जी।
0: तो गुलाब जी, आपको किसी के नाम लेने हैं?
1: हाँ लेना है
0: जी। जी बताइए।
1: अजीत कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, छोटू टिंकू और राजन यादव, सुशील और संतोष पटेल और बलस्टर मुन्ना मिश्रा।
0: तो सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक

0: में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रियासती वजीर ज़रात सूर्य प्रताप शाही ने रबी अभियान 2026 के तहत नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में मुनक्किद दो रोज़ा कौमी ज़रात कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि आइंदा रबी सीज़न में रियासत में तकरीबन 140 लाख हेक्टेयर रकबे पर मुख्तलिफ फसलों

0: स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रियासती वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने रबी अभियान 2026 के तहत नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में मुनक्किद दो रोज़ा कौमी ज़राअत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि आइंदा रबी सीज़न में रियासत में तकरीबन 140 लाख हेक्टेयर रकबे पर मुख्तलिफ फसलों की बुआई का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके तहत तकरीबन 100 लाख हेक्टेयर में गंदम, तकरीबन 20 लाख हेक्टेयर में दालें और तकरीबन 20 लाख हेक्टेयर में तेल के बीज बोए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत ने बड़ी फसलों की पैदावारी सलाहियत को कौमी औसत पर लाने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। रेलवे की वजारत ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली दो मेमू ट्रेन खिदमत के आगाज़ को मंजूरी दी है। खुर्जा मेरठ सिटी मेमू ट्रेन खुर्जा से दोपहर 1:15 पर रवाना होगी और 5:20 पर मेरठ शहर पहुंचेगी। सहारनपुर मेरठ सिटी मेमू ट्रेन सहारनपुर से सुबह 5:50 पर रवाना होगी और सुबह 8:10 मेरठ शहर पहुंचेगी। अयोध्या में 3 रोज़ा 10वां दीपोत्सव 6 नवंबर से शुरू होगा। ज़िला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मरकज़ी दीपोत्सव 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दीपोत्सव के सिलसिले में तमाम महकमों के साथ एक एक्शन प्लान बनाने के लिए मीटिंग की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है ना। हम अक्सर बहारों का इंतजार करते रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि कभी कभी पतझड़ की गिरती हुई पत्तियां भी मुस्कुराना सिखा देती हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है, दिन ढलते रहते हैं और हम बस अपनी ही धुन में चलते चले जाते हैं।
1: लेकिन फिर घड़ी की सुइयां जब मध्यम रफ्तार से दोपहर के इस मखमली मोड़ पर आकर ठहरती है तो अचानक चारों ओर एक सुकून सा छा जाता है, एक मखमली सी खामोशी छा जाती है। धूप को सुनहरी आभा जब हमारे घर आंगन को हमारी दहलीज को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ने चुपके से आकर हमारे कानों में कह दिया हो, चलो अब बहुत दूर आ गए, अब जरा मुस्कुरा कर देखो।
0: दोपहर वक्त का वो खास तोहफा है जो हमें खुद से मिलने का, खुद से रूबरू होने का मौका देता है। तो इसे ठहरे हुए बेहद खूबसूरत लम्हों में, आपकी दोपहर में सुरों के नए रंग घोलने, आपके फुर्सत के इन पलों को चाहत की एक मीठी सी धुन से सजाने लेकर आए हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गृहलक्ष्मी। तो स्वीकार करें अपनी रेडियो हमसफर निकहत
1: और संगीता का नमस्कार। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में वक्त हो चला है उस जादुई गलियारे में चलने का जहां शब्द कहानी बनते हैं और संगीत उसका हम सफर। जी हाँ, हमारा आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट गीतों भरी कहानी।
0: श्रोताओं, कहानियां तो हवा की उन झोंकों की तरह होती हैं जो बंद कमरों में भी यादों की ताजगी भर देती हैं। दरअसल कहानियां तो हमारे भीतर छिपे उन जज्बातों की तस्वीर होती हैं जिन्हें हम कभी कह नहीं पाते, और जब इन अनकहे जज्बातों की उंगली थामने के लिए संगीत के जादुई सुर आ जाते हैं ना, तो वो सीधे हमारी जिंदगी का आईना बन जाती हैं। संगीत में वो ताकत है जो अनकही बातों को भी आवाज देता है। तो आज हमारी इस कहानी के पन्ने जैसे जैसे पलटेंगे, संगीत के सुर आपके भीतर छिपे जज्बात

को धीरे से सहलाएंगे। यहाँ हर मोड़ पर एक एहसास होगा, हर मोड़ पर एक धड़कन होगी। गीत ऐसे जो आज की हमारी कहानी के किरदारों की मुस्कुराहटों को भी चमकाएंगे और उनके भीतर के सन्नाटों को भी दूर करेंगे। तो तैयार हो जाइए लफ्जों और सुरों के इस बेहद खूबसूरत संगम में डूबने के लिए। और सुनिए गीतों भरी कहानी निकहत और संगीता की जुबानी। कहानी का शीर्षक है दूसरी पारी।

0: कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान के हाथ से काम की फाइल तो छूट जाती है, लेकिन मन में सवालों की एक पूरी किताब खुल जाती है। अब सुबह किस जल्दी में उठूंगा? अब मेरी जरूरत किसे होगी? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरी नौकरी तक थी? आखिरी रिटायरमेंट क्या है? क्या ये उस घड़ी का नाम है जब नौकरी खत्म हो जाती है, या फिर ये उस दरवाजे का नाम है जिसके दूसरी तरफ जिंदगी का एक नया अध्याय हमारा इंतजार कर रहा होता है? आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी के 38 साल नौकरी के दिए थे। सुबह समय हर रोज ऑफिस जाना, जिम्मेदारियां निभाना और शाम को घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी।
1: फिर एक दिन ऑफिस में उनके सम्मान में विदाई समारोह हुए। तालियां बजी, फूल मिले, शॉल उड़ाई गई और साथियों ने कहा, सर अब आप आराम कीजिए, आपने बहुत काम कर लिया है। वो मुस्कुराए, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, क्या सचमुच अब आराम ही करना है? तभी उनके साथी ने आवाज़ दी, विनोद जी घर नहीं जाना। अचानक विनोद जी की आंखें खुली, ओह ये तो सपना था। तब तक शाम हो चुकी थी। शाम को जब वो ऑफिस की सीढ़ियों से आखिरी बार नीचे उतरे तो उन्होंने पीछे मुड़कर उस इमारत को देखा और धीरे से बुदबुदाए, वही कमरा, वही मेज, वही कुर्सी, बस कल से उस कुर्सी पर कोई और बैठेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और घर की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि अगले दिन सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनकर इंतजार कर रहा होगा। जब नौकरी की पहली पारी खत्म हो जाए तो क्या जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की जा सकती है? और श्रोताओं, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी।

0: विनोद शर्मा जी की उम्र 60 वर्ष थी। 3 दशक से भी ज्यादा का समय उन्होंने एक सरकारी कार्यालय में बिताया था। उनकी मेज पर हमेशा फाइलों का ढेर रहता। सुबह की चाय के साथ अखबार, फिर काम और शाम को घर लौटने की जल्दी। लेकिन आज सब कुछ अलग था। ऑफिस में उनके विदाई समारोह रखा गया था। सहकर्मी एक करके उनके पास आ रहे थे। उनमें से एक थे राकेश जी। वो पास आकर बोले, सर, आपने हमें सिर्फ काम करना नहीं सिखाया बल्कि ईमानदारी से भी काम करना सिखाया है। विनोद जी बोले, अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है, और मुस्कुराए। राकेश जी बोले, आपने बहुत कुछ किया है सर, बस शायद आपको खुद कभी एहसास नहीं हुआ। तभी तालियां बजने लगी। मंच पर विनोद जी को बुलाया गया। विनोद जी ने मंच पर खड़े होकर सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है, लेकिन मैं इसे अंत नहीं मानता। जिंदगी ने मुझे 38 साल काम करने का मौका दिया। अब शायद वो मुझे कुछ और करने का मौका दे रही है। ये कहते कहते उनकी आवाज़ थोड़ा भर्राई, आंखें छलक आई। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कुछ और क्या होगा।
1: विदाई समारोह खत्म हुआ और विनोद जी को उनके घर छोड़ने उनके कुछ खास दोस्त भी गए। विनोद जी जब घर पहुंचे तो पत्नी आरती की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों और पत्नी ने मिलकर उनका स्वागत किया। उस दिन घर में पत्नी ने सबकी पसंद का खाना बनाया था। रात में सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया, हंसी मजाक हुआ और भोजन कर सभी सोने चले गए। अगले दिन सुबह 6 बजे उनकी आंख खुल गई। आदतन उन्होंने घड़ी देखी, फिर कुछ पल तक छत को देखते रहे। आज ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने पत्नी सुनीता को आवाज दी, सुनीता, चाय मिलेगी? सुनीता जी रसोई से मुस्कुराते हुए बोली, आज तो आराम से मिलेगी, अब आपको ऑफिस के लिए जाना थोड़े ही है। विनोद जी चुप रहे। चाय आई, उन्होंने अखबार खोला, एक पन्ना पढ़ा, फिर दूसरा, फिर अखबार मोड़कर रख दिया। सुनीता जी ये सब देख रही थी। उन्होंने विनोद जी से पूछा, क्या हुआ? विनोद जी बोले, कुछ तो नहीं। इस पर सुनीता जी बोली, आप खुश नहीं हैं? विनोद जी बोले, खुश तो हूँ। सुनीता जी बोली, फिर उतने चुप क्यों रहते हो? विनोद जी कुछ देर बाद बोले, सुनीता, कल तक मेरे पास समय नहीं था और आज समय ही समय है। समझ नहीं आ रहा इसका करूँगा क्या। तब सुनीता ने कहा, शायद यही समय तो आपको इतने सालों से चाहिए था। विनोद जी हल्का

0: से मुस्कुराए, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। दिन लंबे होने लगे। पहले सप्ताह तो रिश्तेदार आए, कोई बधाई देने आया, कोई मिठाई लेकर आया, कोई कहता अब तो खूब आराम करिए।
1: लेकिन कुछ दिनों बाद घर सामान्य हो गया। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता, बहू अपने काम में व्यस्त रहती, पोता स्कूल चला जाता और विनोद जी उनके पास पूरा दिन होता। अब उन्होंने घर के पौधों में पानी देना शुरू किया, पुरानी किताबें निकाली, आलमारी साफ की, टीवी देखा, लेकिन शाम होते होते उन्हें फिर वही खालीपन महसूस होने लगता। एक दिन उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? बेटे ने लैपटॉप से नज़र हटाए बिना कहा, हाँ पापा सब ठीक है। कुछ देर की चुप्पी के बाद विनोद जी कमरे से बाहर चले गए। उन्हें लगा जैसे घर में रहते हुए भी वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वो गलत थे। उन्हें अभी भी अपनी दूसरी पारी का इंतज़ार था
0: और ये इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला था। अगली सुबह विनोद जी ने अपने पुराने जूते निकाले जिस पर धूल जमी थी, उसे झाड़ा, फिर पौधों में पानी देने के बाद वो घर से बाहर पार्क की तरफ निकल गए। आज न कोई ऑफिस की जल्दी थी, न कोई फाइल का टेंशन, बस पार्क में बच्चों की हंसी थी, सुबह की हवा थी और एक नई शुरुआत थी। आज उन्हें अपना खाली समय खाली नहीं लगा, आज उन्हें लगा जैसे वो जिंदगी से ये कह रहे हों,

0: कभी कभी जिंदगी हमें खालीपन इसलिए नहीं देती कि हम रुक जाएं, बल्कि इसलिए देती है कि हम खाली जगह में कुछ नया भर सकें।
1: एक शाम विनोद जी पार्क में बैठे थे। वहां उनकी मुलाकात उनके पुराने मित्र रघुवीर से हुई। रघुवीर भी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। विनोद जी ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रघुवीर हंस पड़े और बोले, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट को छुट्टी नहीं दूसरी शुरुआत माना है। विनोद जी बोले, क्या करते हो अब? रघुवीर जी बोले, सुबह पार्क में घूमता हूँ, दोपहर को अपनी पत्नी के साथ समय बिताता हूँ और शाम को बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को? विनोद जी बोले। रघुवीर बोले, हाँ, हमारे मोहल्ले के कई बच्चे पढ़ाई में पीछे थे। मैंने सोचा, जो ज्ञान मैंने जिंदगी भर कमाया है उसे अलमारी में बंद करके क्यों रखूं? विनोद जी चुप हो गए। रघुवीर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विनोद जी ने हंसने की कोशिश की, मैं रिटायर हूँ। रघुवीर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नौकरी से रिटायर हुए हो विनोद, जिंदगी से नहीं। ये बात विनोद जी के मन में उतर गई।
0: उस रात विनोद जी ने देर तक सो नहीं पाए। उन्होंने अपनी पुरानी आलमारी खोली। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटते पलटते एक जगह लिखा मिला, जब कभी समय मिले गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है। उन्होंने तारीख देखी, करीब 25 साल पुरानी थी। विनोद जी की आंखों के सामने जैसे पूरी ही जिंदगी घूम गई। जब वो बच्चे थे उन्होंने सोचा था बड़े होकर ये करेंगे। जब वो बड़े हुए तो माता पिता की बीमारी के बाद उन्होंने सोचा ये बाद में करेंगे। जब नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ी उन्होंने सोचा रिटायरमेंट के बाद करेंगे, और अब रिटायरमेंट हो चुके थे। उन्होंने डायरी बंद की और कहा, शायद मेरा इंतज़ार इसी दिन का था।
1: अगली सुबह उन्होंने पार्क में एक छोटा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा, शाम 5 बजे से बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन कक्षा। पहले दिन केवल 2 बच्चे आए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अमन था, लड़की का नाम पूजा। विनोद जी ने पूछा, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा परेशानी किस विषय में होती है? अमन बोला, गणित में। पूजा ने कहा, मुझे अंग्रेजी मुश्किल लगती है। विनोद जी मुस्कुराए और बोले, तो आज से मुश्किल विषय आसान करेंगे। अगले दिन 5 बजे बच्चे आए, फिर 8 आ गए, फिर 12। कुछ दिनों के बाद पार्क में बैठने की जगह कम पड़ने लगी। विनोद जी के घर में रखी जो पुरानी किताबें थीं वो बच्चों के काम आने लगी। सुनीता ने भी कहा, मेरी कुछ पुरानी किताबें हैं वो भी बच्चों को दे देते हैं। विनोद जी मुस्कुराए और बोले, देखो सुनीता, मेरी दूसरी पारी में भी तुम मेरी साथी बन गई। विनोद जी ने ये भी कहा कि सुनीता, यूं ही हर मोड़ पर मेरा साथ तुम देना, अगर कभी मुझसे कोई बात बिगड़ जाए तो तुम संभाल लेना।

0: एक दिन एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आया। कपड़े साधारण पहने थे, चेहरे पर झिझक थी। उसने कहा, साहब मैं ज्यादा फीस नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। विनोद जी ने बच्ची की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्ची ने कहा, आराध्या। विनोद जी ने बोला, क्या बनना चाहती हो? आराध्या ने धीरे से कहा, मैडम। विनोद जी ने कहा, तो फिर पढ़ाई शुरू करो। लेकिन फीस? दबे स्वर में आराध्या के पिता ने कहा, यहाँ फीस नहीं लगती। विनोद जी बोले। आराध्या के पिता की आंखों में राहत थी। उस दिन से आराध्या रोज आने लगी। वो बहुत मेहनती थी। विनोद जी उसे केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि आत्मविश्वासी बनना भी सिखाते थे। वो कहते, अच्छे अंक जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है तुम हार मानना कभी मत सीखो।
1: समय गुजरता रहा। आराध्या ने आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर एक दिन वो विनोद जी के सामने आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो बोली, गुरुजी मेरी नौकरी लग गई। विनोद जी की आंखें चमक उठी। वो बोले, कहाँ? आराध्या ने कहा, स्कूल में। आराध्या ने विनोद जी की पैर छुए और कहा, गुरुजी आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। विनोद जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, चली तो तुम खुद ही हो उस रास्ते पर। कुछ देर बाद विनोद जी का आशीर्वाद लेकर आराध्या घर चली गई। उस दिन घर लौटते हुए विनोद जी के जो उनके कदम थे, उसमें वो वही ऊर्जा थी जो कभी उनकी नौकरी के पहले दिन थी।
0: अब घर का माहौल भी बदलने लगा। पोता आरव शाम को उनके पास बैठता। एक दिन उसने पूछा, दादाजी आप रोज बच्चे को पढ़ाने क्यों जाते हैं? इस पर विनोद जी बोले, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आरव ने पूछा, आपको ऑफिस की याद नहीं आती? विनोद जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ऑफिस में जो सीखा वो दूसरों के काम आ रहा है। आरव ने कहा, तो आप अभी भी काम करते हैं? विनोद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बस अब मेरी तनख्वाह पैसे नहीं, बच्चों की मुस्कान है, और बच्चे जितना सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, और यही मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे अपने सपनों के पंख खोल आसमान में उड़ें।

0: एक दिन सुनीता जी ने कहा, आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कब करेंगे? विनोद जी ने कहा, अपने लिए? हाँ, आपकी भी तो कुछ इच्छाएं थीं, सुनीता जी बोली। विनोद जी सोचने लगे। उन्हें याद आया कि उन्हें हमेशा यात्रा करने का शौक था, लेकिन नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारियों के कारण वो कभी ज्यादा घूम नहीं पाए। सुनीता जी ने कहा, अब समय है अपनी जिंदगी जीने का। तब दोनों ने एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाई। पहली बार कई वर्षों के बाद दोनों बिना किसी जल्दी के निकले। रास्ते में विनोद जी ने महसूस किया कि रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ समाज की सेवा करना ही नहीं है, अपने लिए जीना भी जरूरी है। दोनों ने साथ में यात्रा की और वापस आने के बाद उन्होंने पुराने मित्रों से मिलना शुरू किया। संगीत सुना, पौधे लगाए, पत्नी के साथ सुबह की सैर शुरू की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया।
1: लेकिन जिंदगी की दूसरी पारी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन विनोद जी की कक्षा में बच्चों की संख्या कम हो गई। कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए, कुछ के परिवार दूसरे शहर चले गए। विनोद जी निराश हो गए। उन्होंने सोचा, शायद अब ये सब बंद कर देना चाहिए। उसी शाम आराध्या उनके घर आई। वो खुद एक शिक्षिका थी। उसने कहा, गुरुजी, आप हार कैसे मान सकते हैं? विनोद जी बोले, अब पहले जैसी जरूरत नहीं रही। आराध्या ने कहा, आपको पता है आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है? विनोद जी चुप रहे। आराध्या बोली, आपने केवल बच्चों को किताबें नहीं पढ़ाई, आपने उन्हें ये विश्वास दिया कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। विनोद जी की आंखें नम हो गई। आराध्या ने कहा, आपने मेरी जिंदगी की दिशा बदली थी, अब मेरी बारी है आपकी दूसरी पारी को आगे बढ़ाने की। अगले सप्ताह आराध्या ने दूसरे शिक्षकों को बुलाया। कुछ कॉलेज के विद्यार्थी भी जुट गए। विनोद जी की छोटी सी कक्षा अब एक बड़े सामुदायिक अध्ययन केंद्र में बदलने लगी थी। कुछ वर्षों बाद नगर में एक समारोह आयोजित किया गया। विनोद जी को विशेष सम्मान के लिए बुलाया गया। मंच पर उनका परिचय दिया गया। विनोद जी ने 38 वर्ष सरकारी सेवा में योगदान और रिटायरमेंट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य किया। तभी तालियां बजने लगी। विनोद जी को मंच पर बुलाया गया। वो मंच पर पहुंचे तो उनसे पूछा गया, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, पहली पारी में मैंने नौकरी की, जिम्मेदारी निभाई, परिवार के लिए कमाया, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन दूसरी पारी में मुझे सिखाया, इंसान की असली कमाई उसके बैंक खाते में नहीं, उन लोगों के जीवन में दिखाई देती है जिनके काम वो आया। पूरा सभागार शांत था। उन्होंने आगे कहा, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चुनौती खाली समय नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती ये समझना है कि अब उस समय का अर्थ क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव को अगली पीढ़ी के साथ बांट दे, किसी बच्चे को पढ़ा दे, किसी बड़े का साथ दे दे, किसी पौधे को बड़ा कर दे, किसी अकेले व्यक्ति का हाथ पकड़ ले, अपने परिवार के साथ समय बिताए या अपने पुराने सपने को पूरा करे, तो समझिए उसकी दूसरी पारी शुरू हो चुकी है।
0: उस रात विनोद जी घर लौटे। आरो अब बड़ा हो चुका था। उसने दादाजी से कहा, आपको पता है आज स्कूल में मैंने

0: आपके बारे में बताया। क्या बताया? विनोद जी ने पूछा। आरव ने कहा कि मेरे दादाजी रिटायर हैं। बस इतना ही, विनोद जी बोले। आरव ने कहा, नहीं, मैंने कहा कि मेरे दादाजी नौकरी से रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी को दोबारा शुरू किया। विनोद जी ने आरव को गले लगाया और उसे अपनाया। अपना पहला रिटायरमेंट वाला दिन उन्हें याद आ गया, वो खालीपन, वो सवाल, अब मैं क्या करूँगा। आज उसी सवाल का जवाब उनके पास था, वो अब बहुत खुश थे।
1: रिटायरमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये आराम का समय है, किसी के लिए परिवार के साथ रहने का, किसी के लिए यात्रा का, किसी के लिए समाज सेवा करना, और किसी के लिए वर्षों से अधूरे पड़े सपनों को पूरा करने का। लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, वो ये कि रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये जीवन की गति बढ़ाने का भी नाम है। पहली पारी में शायद हम घड़ी के हिसाब से जीते हैं, लेकिन वहीं दूसरी पारी में हम अपनी पसंद के हिसाब से जी सकते हैं। पहली पारी में हम पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, वहीं हम दूसरी पारी में पूछते हैं कि हम मैं क्या करना चाहता हूँ।
0: कुछ साल बाद विनोद जी फिर उसी पार्क में बैठे थे। उनके सामने कई बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चा उनसे पूछता है, गुरुजी, आप इतने साल से हमें पढ़ा रहे हैं, आप थकते नहीं? विनोद जी मुस्कुराए और बोले, थकता हूँ बेटा। बच्चा बोलने लगा, फिर आते क्यों हैं? विनोद जी ने सामने खड़े छोटे से पौधे की ओर देखा और कहा, जब मैंने इसे लगाया था ना, तब ये बहुत छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया है। इस पर बच्चे ने पूछा, लेकिन इसका आपकी पढ़ाई से क्या संबंध है? विनोद जी बोले, बहुत गहरा संबंध है। पौधा हो या बच्चा, दोनों को थोड़ा समय, थोड़ा प्यार और सही दिशा चाहिए, पर वो खुद आसमान की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप रहे। विनोद जी ने आसमान की ओर देखा, सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर सुबह जैसी चमक थी। उन्हें अब समझ आ चुका था कि सूरज ढलना दिन का अंत नहीं होता, वो अगले जीवन की, अगले सवेरे की तैयारी भी होता है। ठीक वैसे ही रिटायरमेंट जिंदगी की शाम नहीं, जिंदगी की दूसरी सुबह हो सकती है।

और श्रोताओं, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि आपके साथ बिताए इन खूबसूरत पलों को अब हम यहीं पर समेटते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया है पूरा। तो अगली मुलाकात के वादे के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी मैंने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुन रही थी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: the LA 2028 Olympics quota place for India. Indian boxer Priya Ghangas has also clinched a bronze medal in the 60-kilogram category, showcasing the nation's growing prowess in boxing. In the trap mixed team event, Niru, Danda and Kinan Chennai produced a remarkable turnaround under pressure to clinch the gold medal. India moved up to the 7th in the medals tally with 10 gold, 21 silver and 28 bronze. Overall medal tally reaches 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा

0: अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से पहली अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह के कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र।

0: तंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
2: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
3: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
2: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
4: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
2: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1

0: विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी, 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी।
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा।

0: लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे।
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
0: जी
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
0: जी
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
0: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल। साथियों, उसने अपनी कक्षा में यह भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
0: जी
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
0: जी
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
0: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
0: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
0: जी
1: था, बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
0: जी
1: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
0: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहां मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहां आ पहुंची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
0: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
0: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
0: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
0: जी
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
0: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
0: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
0: जी
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
0: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमलेश जी। एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
0: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जानें।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा, फ्लाइंग ऑफिसर

0: निर्मल जीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
0: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने

0: अली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
2: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
3: निर्मल सर, आप यहाँ?
2: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
3: सर, ये तो हमारा काम है।
2: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
3: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
2: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
0: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
2: एक मिनट मानसिंह, तो मैंने फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
1: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
1: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल

0: पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं।
4: दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया, ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं, अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।

0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
2: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? विमान तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
2: कंट्रोल रूम, दिस इज शेखों, शेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर शेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम

0: का समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में अर्थ फिल्म से। संगीत दिया है जगजीत सिंह ने, शब्द रचना कैफी आजमी की।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में घराना फिल्म से ये गाना। संगीत है रवि का, शब्द रचना शकील बदायूनी की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म से। संगीत है जगजीत सिंह का, शब्द रचना इंतीवर की।

0: दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी

0: विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना

0: पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युव वाणी।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमारा आज का युववाणी का विषय है वॉलेंटियर से लीडर तक, समाज सेवा से सीख तक। दोस्तों, कहते हैं नेतृत्व कुर्सी से नहीं, जिम्मेदारी उठाने से पैदा होती है, और समाज सेवा इस जिम्मेदारी को समझने की सबसे खूबसूरत पाठशाला है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के काम आता है, किसी जरूरतमंद का हाथ थामता है, किसी अभियान में अपना समय देता है, या समाज की किसी समस्या के समाधान में अपना योगदान देता है, तभी वह एक वॉलेंटियर यानी स्वयं सेवक बनता है। लेकिन यही छोटा सा कदम आगे चलकर उसे एक लीडर बनने की राह दिखा सकता है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि आखिर एक वॉलेंटियर के भीतर नेतृत्व का बीज कैसे पनपता है, समाज सेवा हमें क्या सिखाती है, और क्यों एक अच्छा नेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान और एक अच्छा स्वयं सेवक बनना जरूरी है। दोस्तों, वॉलेंटियर वो व्यक्ति होता है जो अपनी इच्छा से किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपना समय, श्रम, कौशल या अनुभव देता है। उसे हमेशा पैसे या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं होती। कभी कोई रक्तदान शिविर में व्यवस्था संभालता है, कभी कोई बच्चों को पढ़ाता है, कभी कोई बाढ़ या आपदा में राहत सामग्री पहुंचाता है, कभी कोई स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेता है, तो कभी कोई बुजुर्ग के लिए कुछ घंटे निकालकर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। ये सभी समाज सेवा के अलग अलग रूप हैं। समाज सेवा हमें किताबों से अलग तरह का ज्ञान देती है। ये हमें लोगों को समझना सिखाती है, लोगों को जानना सिखाती है। जब हम अलग अलग वर्गों, उम्र, आर्थिक परिस्थितियों और विचारों वाले लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। हमें समझ आता है कि हर व्यक्ति की समस्या अलग है, और हर समस्या का समाधान भी एक जैसा नहीं हो सकता। यही अनुभव आगे चलकर नेतृत्व की नींव बनता है, क्योंकि नेता हो या कोई व्यक्ति हो, केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता। सच्चा नेतृत्व है लोगों को समझना, उनकी बात सुनना और उनके साथ मिलकर समाधान खोजना।

दोस्तों, समाज सेवा का पहला बड़ा सबक है जिम्मेदारी। एक स्वयं सेवक जब किसी काम की जिम्मेदारी लेता है तो उसे समय पर पहुंचना, काम को पूरा करना और टीम के साथ तालमेल बनाना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे उसमें ये विश्वास पैदा होता है, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा भी मैं ही करूँगा। यही भावना नेतृत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ केवल ये कहना नहीं है कि आप ये काम कीजिए, बल्कि ये कहने की क्षमता है, आइए हम मिलकर ये काम करते हैं। समाज सेवा कभी अकेले नहीं चलती। एक अभियान में कोई योजना बनाता है, कई लोगों से संपर्क करता है, कोई व्यवस्था संभालता है, कोई सोशल मीडिया या प्रचार का काम करता है और कोई मैदान में जाकर लोगों की मदद करता है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। यही है वॉलेंटियर की सीख। यहीं से वॉलेंटियर सीखता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन केवल मैं ही महत्वपूर्ण नहीं हूँ। ये समझ एक अच्छे नेता के लिए, एक अच्छे वॉलेंटियर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा नेता टीम के हर सदस्य की क्षमता पहचानता है और उसे आगे बढ़ने का अवसर देता है। हम अक्सर नेतृत्व को बोलने की कला से जोड़ते हैं, लेकिन समाज सेवा सिखाती है कि अच्छा नेता पहले अच्छा श्रोता होता है। किसी ज़रूरतमंद की समस्या सुनना, किसी बुजुर्ग की बात धैर्य से सुनना, किसी बच्चे की परेशानी समझना, किसी साथी वॉलेंटियर की राय को महत्व देना, ये सभी नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की आवाज़ सुन सकता है, वही उनकी आवाज़ बन सकता है।

है। दोस्तों, समाज सेवा हमेशा आसान नहीं होती। कभी संसाधन कम होते हैं, कभी समय कम होता है, कभी लोगों का सहयोग नहीं मिलता और कभी अचानक से कोई समस्या सामने आ जाती है। ऐसे समय में वॉलंटियर को निर्णय लेना पड़ता है। यही परिस्थितियां उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती हैं। वह सीखता है कि हर समस्या का एक रास्ता हो सकता है, बस शांत रहकर रास्ता तलाशना जरूरी है। हमारे समाज में नेतृत्व एक बहुत ही सुंदर अवधारणा रही है। सेवा ही नेतृत्व का आधार है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए आगे आता है, वो लोगों का विश्वास अर्जित करता है और नेतृत्व का सबसे मजबूत आधार है विश्वास। लोग उस व्यक्ति के साथ चलना पसंद करते हैं जो केवल बातें नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा भी होता है। इसलिए कहा जाता है, लीडर वो नहीं जो सबसे आगे दिखाई दे, लीडर वो है जो जरूरत के समय सबसे आगे खड़ा मिले। आज के युवा केवल भविष्य का नेता नहीं है, वो आज भी समाज में बदलाव का माध्यम बन सकता है। दोस्तों, हम युवा पीढ़ी सच में समाज में बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। युवा अपनी ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान और नए विचारों का उपयोग समाज सेवा में कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जागरूकता तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर सड़क सुरक्षा तक, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां युवाओं की भागीदारी समाज को नई दिशा दे सकती है। जरूरत है तो केवल शुरुआत करने की। वॉलंटियर बनने के लिए हमेशा बड़ी संस्था या बड़ा पद जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी ज़रूरतमंद को जानकारी देना, प्लास्टिक कम करने का अभियान चलाना, रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, बुजुर्गों के साथ समय बिताना, ये छोटे कदम हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज सेवा शुरू करने के लिए कभी नहीं, आज सबसे अच्छा समय है। मतलब समाज सेवा की शुरुआत करने के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम कल से करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दोस्तों, हम आज से ही अगर समाज सेवा की शुरुआत करें तो सच में हम एक बेहतरीन भारत विकसित कर सकते हैं, बेहतरीन भारत बना सकते हैं।

0: दोस्तों आइए अब सुनते हैं जीवेश नंदन की वार्ता, समाज सेवा का बदलता स्वरूप और युवा।
1: जरा ठहरिए और अपने आप से पूछिए, समाज सेवा सुनते ही आपके मन में क्या आता है? किसी जरूरतमंद की मदद, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता, पर्यावरण की रक्षा या किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना। दरअसल समाज सेवा का अर्थ केवल बड़ी संस्था, बड़ा अभियान या बड़ी आर्थिक सहायता नहीं है। समाज सेवा का मूल है संवेदना, जिम्मेदारी और योगदान की भावना। कभी कभी किसी को सही जानकारी देना भी सेवा है। किसी बुजुर्ग को डिजिटल भुगतान समझाना भी सेवा है। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी सेवा है। हमारी परंपरा में सेवा की भावना बहुत पुरानी है। सर्वे भवन्तु सुखिना जैसी भावना हमें याद दिलाती है कि समाज की भलाई केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन समय बदला है, आज समाज सेवा के साधन भी बदल गए हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने किसी अच्छी पहल को बहुत दूर तक पहुंचाने की क्षमता की है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी भी है, हर सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचें, मदद के नाम पर भ्रम ना फैलाएं। डिजिटल माध्यम सेवा का साधन बने, अफवाह का माध्यम नहीं। युवा केवल भविष्य नहीं, युवा वर्तमान भी है। आपके पास समय का थोड़ा सा हिस्सा है, दीजिए। आपका कोई विषय अच्छी तरह आता है, किसी और को सिखाइए। आपके पास डिजिटल जानकारी है, किसी ज़रूरतमंद को समझाइए। समाज को हमेशा ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो यह कहे, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही प्रश्न एक युवा को दर्शक से सहभागी बनाता है। आइए आज एक छोटा सा संकल्प सोचें, एक युवा एक सेवा। कोई युवा एक बच्चे को पढ़ाए, कोई एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, कोई बुजुर्ग को मोबाइल चलाना सिखाए, कोई सरकारी योजना की सही जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाए, कोई अपने मोहल्ले की स्वच्छता के लिए पहल करे। काम छोटा हो सकता है लेकिन उसका प्रभाव छोटा होना ज़रूरी नहीं। समाज सेवा के सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक है शिक्षा, क्योंकि जब हम किसी को केवल सहायता नहीं देते बल्कि ज्ञान देते हैं तो हम उसे आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। एक युवा यदि किसी बच्चे को पढ़ने में मदद करता है तो वह केवल आज की समस्या नहीं सुलझाता, वह उस बच्चे के आने वाले कल को मजबूत करने में योगदान देता है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सेवा करने के लिए बहुत पैसा होना ज़रूरी है? नहीं, हमारे पास समय हो सकता है, श्रम हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, सही जानकारी हो सकती है और सबसे बढ़कर संवेदनशीलता हो सकती है। कभी किसी को अस्पताल तक पहुंचा देना, किसी विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देना या किसी परेशान व्यक्ति को ध्यान से सुन लेना भी समाज के लिए मूल्यवान योगदान है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से बहुत जुड़ी हुई है, यह समाज सेवा के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सेवा का उद्देश्य किसी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। ज़रूरतमंद की मदद करें लेकिन उसकी निजता और सम्मान का भी ध्यान रखें। सेवा दिखाई जाए या नहीं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सेवा सही भावना और सही तरीके से हो। एक पौधा लगाना आसान है।

0: उसकी देखभाल करना जिम्मेदारी है। पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, आसपास स्वच्छता रखना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये सभी समाज सेवा के ही रूप हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में गांव और शहर दोनों की अपनी आवश्यकताएं हैं। युवा दोनों के बीच एक मजबूत सेतु बन सकते हैं। डिजिटल जानकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, कौशल और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी, इन क्षेत्रों में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जहां जानकारी की कमी है वहां जानकारी पहुंचाइए, जहां अवसर की कमी है वहां मार्गदर्शन दीजिए। शायद हम पूछें सेवा की शुरुआत कहां से करें, जवाब बहुत सरल है, अपने आप से। समय की पाबंदी, ईमानदारी, अनुशासन, स्वच्छता, कानून और नियमों का सम्मान, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ, ये भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदार नागरिक ही एक जिम्मेदार समाज की नींव बनता है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे वास्तव में ज़रूरत थी? क्या आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जिसे आप किसी और के साथ बांट सकते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा साझा कर सकते हैं जिससे किसी को सकारात्मक प्रेरणा मिले? क्या आपके मोहल्ले, गांव या शहर की कोई ऐसी समस्या है जिसके समाधान में आप छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आप इस उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं जिसकी आप समाज से अपेक्षा करते हैं? आने वाला समय तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समय है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीकें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन तकनीक साधन है, संवेदना उसका उद्देश्य होना चाहिए। एक मशीन जानकारी दे सकती है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के दर्द को समझने और उसके सम्मान का ध्यान रखने के लिए मानवीय संवेदना ज़रूरी है। इसलिए भविष्य का युवा केवल तकनीक समर्थक नहीं बल्कि संवेदनशील भी होना चाहिए। तो दोस्तों, समाज सेवा हमसे हमेशा किसी बड़े मंच से शुरू नहीं होती। कभी कभी यह हमारे घर, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे विद्यालय, हमारे कार्यस्थल और हमारे अपने व्यवहार से शुरू होती है। आज अगर हम एक व्यक्ति की मदद करते हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं, एक पौधे की रक्षा करते हैं, किसी बुजुर्ग का हाथ थामते हैं, सही जानकारी साझा करते हैं या अपने आसपास जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, तो हम समाज को थोड़ा बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। याद रखिए, एक युवा, एक संकल्प, एक सेवा, और एक सेवा, एक बेहतर समाज। इसी उम्मीद, इसी ऊर्जा और इसी विश्वास के साथ नमस्कार, धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जीवेश नंदन की वार्ता, समाज सेवा का बदलता स्वरूप और युवा।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700।

0: 800-4242 पर
1: 800-4242।
2: दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के फिर से इस कार्यक्रम युववाणी में। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम सबक। प्रतिभागी हैं नेहा गुप्ता, दिव्या द्विवेदी, आयुष उपाध्याय और जुगेश गुप्ता।
3: दोस्तों, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोन अप हो रहे होते हैं, हम ये कहें कि युवा हो रहे होते हैं, तो बड़े सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, हमारे मन मस्तिष्क में। वो जो चेंजेस होते हैं हम बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए जब भी हम बाहर कदम निकालते हैं, जैसे कि 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हों या फिर कॉलेज में जाते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर इतनी असहज होते हैं कि सामने वाला उस असहजता को भांप लेता है और कुछ चीज़ें कह देता है। और जैसे ही वो कहता है हमारे मन में, तो वो बात होती है, वो और कहते हैं उसकी गहराई ज़्यादा हो जाती है और हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लगता है कि अरे ये मेरे साथ क्यों होता है, आखिर भगवान ने हमारी किस्मत ऐसे कैसे लिख दी। किस्मत लिखी नहीं गई है, किस्मत तो लिखी जाती है। लिखी गई और लिखे जाने में फ़र्क है। आज स्टूडियो में मेरे साथ दिव्या, आयुष, जुगेश, अभिषेक और स्मृति हैं। ये पांचों आपको, साथ में मैं भी हूँ, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में ले चलते हैं, वहाँ जहाँ पे छींटाकशी होती है, जहाँ पे आपके शारीरिक अवस्थाओं पर प्रश्न किए जाते हैं, जहाँ एक लड़की घबराती है, जहाँ एक लड़का अगर बहुत हेल्दी है या बहुत दुबला है उस पर भी प्रश्न उठते हैं। जो ये पांचों हैं उन चीज़ों को हर रोज देखते हैं, कैसे डील किया जाना चाहिए। चलते हैं इस खूबसूरत सफर पे। ओह माय यूथ ब्रिगेड, कैसे हो भाई?
4: एकदम बढ़िया
5: मैम। मैम, अभी आपने इतने अच्छे से यूथ लाइफस्टाइल को बताया और मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आज कहना चाहूंगी।
3: बिल्कुल।
5: कि भगवान ने एक लड़के और एक लड़की में कुछ फर्क किए हैं और वो फर्क मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत है, लेकिन फर्क करना और फर्क होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो फर्क करते हैं ये बहुत गलत होता है। मैम, मेरे घर में भी भाई हैं और मेरे काफी अच्छे दोस्त लोग भी हैं, तो कभी वो मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, दिव्या तुम मुझे बताओ। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हारे सामने कोई लड़की हो, तुम भले उसके लिए टेबल ना खींचो, भले ही तुम उसके लिए डोर ना ओपन करो, लेकिन जब कभी किसी लड़की को तुम्हारी जरूरत हो, तुम देख रहे हो तुम्हारे आंखों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो तुम बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए वहां जरूर जाओ।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा जुगेश, कई बार जैसे दिव्या ने कहा कि एक बहन अपने भाई को समझा रही है कि एक बॉय को कैसा होना चाहिए, बॉय का रोल क्या है सोसाइटी में, है ना। अब जैसे एक बड़े सारे बंदे होते हैं भाई सोसाइटी में, कॉलेज में, कुछ जिद्दी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, अनुशासनहीन भी होते हैं, दिव्या जो कह रही है उसके उलट वो व्यवहार करते हैं, क्यों करते होंगे वो ऐसा?
4: मेरे साथ ऐसा हुआ है मैम। मैं बताता हूँ कि जब मैं पीजी कर रहा था तो मेरे कई सारे दोस्त थे, वो मुझे अक्सर देखते थे, तो बहुत लोगों की हिम्मत तो नहीं होती थी सब कुछ कहने की, लेकिन वो पूछते थे कि यार तुम्हारे साथ लड़कियाँ सहज चल पाती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो मैंने एक बार उनको बताया कि देखिए उनको मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जब मेरे साथ होती हैं तो उनको लगता है कि मैं इसके साथ हूँ और मुझे इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे साथ बहुत सहज हैं, मैं किसी भी तरह की उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, बल्कि आए समय में जो भी इधर से कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं देखता हूँ तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि इन पर लड़कों को क्या रिएक्शन होना चाहिए, लड़कियों की ही भागीदारी है या वो जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वही उसको डिफेंड करें, इसमें लड़कों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको किस तरह से डिफेंड करें और उनके सपोर्ट में वो खड़े हों।
3: बिल्कुल अभिषेक, जैसे ये एक और चीज, मैं जब आयुष को देखती हूँ तो एक बड़े शालीन लड़के की छवि नजर आती है, बहुत ही शालीन, कि ये किसी को हर्ट नहीं करेगा आयुष, ये देख के लगता है। क्या ये फैमिली से भी होता है क्या कि भाई परिवार में जैसे माँ हो, बहने हो, दादी हो या पिता हो, ये उनका व्यवहार कभी वल्गर नहीं हुआ किसी भी इंसान के प्रति, तो वो बच्चा भी उसी तरह देख के बड़ा हो रहा होता है?
6: बिल्कुल मैम, ये बात तो जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव इतना सरल और सहज है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पारिवारिक छवि भी नजर आती है, किन संस्कारों में उसकी परवरिश हुई है ये बात साफ जाहिर होती है। तो ऐसे में हम पता लगा सकते हैं कि वाकई में उसका जो बैकग्राउंड है उस व्यक्ति का वो कैसा रहा होगा।

0: तो ये बहुत सरल बात है कि आयुष जैसा व्यक्ति अगर इतना शांत और शालीन है तो ये बात उसके स्वभाव में कैसे आई। और कई बार ये भी होता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस स्कूल में परिवेश में हम पल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उसका भी असर हो जाता है कि हम किस संगति में हैं, कैसे नेचर के साथ हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम बहुत अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, इसका भी असर पड़ता है कि हम बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के हो जाते हैं।
1: अच्छा स्मृति, कभी ये हुआ तुम्हारे साथ बेटा, जब अपने युवावस्था से लेकर के अभी तक के सफर में, कि कभी कोई घबराहट हुई हो, कभी लगा हो कि नहीं मैं जा रही हूं तो शायद सामने वाला कुछ बोल ना दे, फिर वो काम ना किया हो, वो फीलिंग कैसी थी?
2: अगर डेली बेसिस पे बात करें मैम, तो ये अक्सर लड़कियों को फेस करना पड़ता है। और मुद्दा ये है कि लड़कियां उस पे बात करना चाहती हैं खुल के या नहीं करना चाहती हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मुद्दा है, इस पे बात करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ताकि हम लोग समझ सकें चीज़ें क्या हैं। और आज की यूथ को, खासकर लड़कों को, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो कम है, या मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं है। और अक्सर जैसे आपने कहा कि ये जाते आते वक्त ऐसा हुआ हो, अक्सर रास्ते में होता है, कभी गाड़ी चलाते वक्त लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई क्या, सामने जाता हुआ इंसान क्यों ऐसे देखा, तो एक बार खुद को चेकआउट करना पड़ता है कि क्या कुछ दिक्कत है आज, मतलब मैं सही हूं ना, ऐसा मतलब कई बार होता है।
1: अभिषेक कुछ कहना चाह रहे?
0: हाँ मैम, ये स्मृति ने जो बात कही ये बात बिल्कुल सही है कि एक लड़की की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इसके लिए कि अगर सड़क पर कोई लड़की चल रही है तो उसके साथ सामने वाले को कैसा व्यवहार करना है, या किसी भी चलते फिरते इंसान को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक इतनी सी जिम्मेदारी उस लड़की की भी बनती है कि अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो कम से कम वो उसका प्रखर रूप से विरोध करे,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और अगर वो ऐसा करती है तो सामने वाले व्यक्ति में कम से कम एक डर जरूर पैदा होगा कि नहीं, ज्यादा कुछ बोलना या कोई ऐसा काम करना खतरे से खाली नहीं होगा।
3: जुकेश। मेरे पास इसका एक उदाहरण है। मेरी एक फ्रेंड है, एक बार उसने मुझे कॉल किया कि बोली भैया मुझे एक लड़का बार बार कॉल करता है, मैं उसको ब्लॉक करती हूँ तो दोबारा मुझे नए नंबर से कॉल करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर कुछ करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो कर दूंगा, लेकिन तुम बताओ कि मैं इस तरह से तुम्हारी हेल्प कितनी बार करूंगा, तुम खुद इसके लिए क्यों आगे नहीं आती हो, तुम उससे बात करो, वो तो तुम्हें ऐसे परेशान क्यों कर रहा है, और तुम उसको साफ साफ बताओ बात क्या है। तो जब उसने अपने से पहल किया तो वो मामला ज्यादा सही हुआ, अगर कूदता शायद तो उसमें कुछ हिंसात्मक बात हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि तुम अपने तरह से हैंडल करो, अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद बताओ, तो फिर मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। और फिर उसने किया और उसका
1: बढ़िया,
3: रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया।
1: पॉजिटिव है। दिव्या कुछ कहना चाहती हूँ?
2: जैसे अभी अभिषेक ने भी बताया कि एक लड़के की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको डिफेंड करे, सामने अगर खड़ी कोई लड़की है तो उसको डिफेंड करें, और जुकेश जी ने भी बताया। लेकिन एक घटना है, कुछ लड़कियां आ रही थी हम लोग, और बगल से एक धक्का मारते हुए एक व्यक्ति निकले, तो हम लोगों ने लगा कि शायद भीड़ होगी इसलिए धक्का लग गया। वही व्यक्ति पलट कर फिर आता है और फिर धक्का लगा के चला जाता है। हम लोगों ने एक बार फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी बार फिर से धक्का लगा, इस बार हम लोग ने इग्नोर नहीं किया। कोई हमारे लिए आए चाहे ना आए, देख 100 लोग रहे थे वहां, बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम 10-12 लड़कियां थी, हम सब इकट्ठा हुए, वहीं पूछने लगे कि आपको दिक्कत क्या है। तो बोले अरे गलती से लग गया, अरे भीड़ थी इसलिए लग गया। तो हमने बोला कि एक बार लग सकता है, 3 बार आपने क्यों धक्का मारा। वहीं पूछना शुरू किया, पूछताछ की। जब हम खुद अपने लिए आगे आए, जब हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट, हम लड़कियां एक दूसरे का सपोर्ट करना शुरू कर दी, हम सब एक हो गए, एक साथ बोलने लगे,
1: बिल्कुल
2: या
1: क्या
2: हमें कोई
1: बात
2: कमी
1: है।
2: लग रही है आप हमको बताइए, आपने धक्का क्यों मारा, आप टेढ़े चल रहे हो, हमको ये बताओ कि आपके हाथ पांव में कोई दिक्कत है, हमको बताइए।
1: स्मृति,
2: यस मैम,
1: इस तरह की जरूरत है एक्चुअली।
2: बिल्कुल, ये जैसे भी दिव्या ने बोला ना, तो कई सारे इंसिडेंट मतलब मेरी आंखों के सामने से गुजर गए हैं। मैं अपनी बात करूं या अपने आसपास की लड़कियों की बात करूं, तो ऐसी कई कहानियां किस्से याद आ गए हैं। खासकर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सड़क पर ऐसा होता है, अगर हम पब्लिक प्लेस की बात करें, ऐसा अक्सर मंदिरों में होता है,
1: मंदिर में भी
2: बिल्कुल भीड़ भाड़ का फायदा उठाया
3: बसों में
2: जाता है।
3: होता है
2: मैं
3: मैम,
2: बता रही हूँ,
3: ट्रेनों में।
2: मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ मंदिर का। हम लोग काशी विश्वनाथ जी गए थे घूमने, बहुत भीड़ थी, और शिवरात्रि का वो रात थी, इतनी ज्यादा भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, तो उस भीड़ में भी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये चीजें हो रही हैं, वास्तविकता में हो रही हैं।
1: आयुष क्यों लगता है अभी

0: के बारे में हमने भी कुछ बोला, अभिषेक ने बोला कि बहुत शालीन हो। अब इस शालीन व्यक्ति से उन जो शालीनी उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो दिव्या ने बोला कि लोग धक्का मारते हैं जानबूझकर, क्यों करते होंगे वैसा? क्या चलता होगा दिमाग में? मतलब गर्ल को देख के क्या बौखलाहट हो जाती है, इस तरह की बात होती है उनके मन मस्तिष्क में?
1: मैम, सबसे पहले तो इतनी तारीफें सुनने की मेरी आदत थी नहीं लेकिन हाँ, सच में। और जो भी ऐसे इंसान हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जिनके लिए लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि उन्हें सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, उनकी ये जो कुत्सित विचारधारा है, उनके लिए इस बात का मूल्य नहीं है कि उनके भी घर में कोई परिवार के सदस्य हैं या जो लड़की उनके सामने है। क्योंकि मैम, सबसे बड़ी समस्या यही है, वो अपने अंदर की इच्छाओं को दबा नहीं पाते हैं, पहली चीज़। और ये बुरी इच्छाएं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शायद उनके मन में ऐसी ये मूल भावना दबी हुई है अंदर ही अंदर कि ये तो लड़की है, क्या ही कर लेगी। उनकी नज़र में, मुझे जहाँ तक लगता है, वो कई बार ऐसे लड़कियों को एक सामान की तौर पे ज़्यादा देखते हैं और इंसान कम देखते हैं। अब इसका वजह तो कई सारी हो सकती है लेकिन शायद यही भावना है कि वो ऐसी गलत हरकतें करते हैं।
0: जुकेश और अभिषेक दोनों से एक एक कॉमेंट, ठीक है? कॉलेज में जब लड़की क्रॉस कर रही होती है, अगर वो बहुत आउटस्पोकन और बोल्ड नहीं है और सामने जो कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा रहता है वो इस बात को भाप जानता है कि ये बोल्ड नहीं है, वो उसके साथ कई तरह की छेड़छाड़ होती हैं, तो उनको भय नहीं होता कि कुछ होगा नहीं? या फिर वो बोल्ड लड़की को क्यों नहीं उस तरह की हरकतें उनके साथ करते? मतलब ये सोचने वाली बात है ना।
2: बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैम वो देख के कई बार वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस लड़की को मैं छेड़ूंगा तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी या किसको छेड़ूंगा तो वो दूर तक इस मामले को ले जा सकती है, उसमें हमको खतरा हो सकता है। क्योंकि हरकतें करते हैं लड़के, वो कई बार आदत में आ जाते हैं और वो समझने लगते हैं, एक तरीके से उनको एक्सपीरियंस होने लगता है कि कौन सी लड़की रिएक्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इसका वो फ़ायदा लेते हैं। और ये आपकी बात एकदम सही है कि हर लड़की प्रतिकार नहीं कर पाती है क्योंकि उनको अंदर से कॉन्फिडेंस होता नहीं है कि मेरे विरोध करने से कुछ हो भी पाएगा या नहीं होगा, या कई बार विरोध करने से बातें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं।
0: अभिषेक, क्या किया जाना चाहिए? जैसे घबराहट है भाई, लड़की को भी तो अपने सपने पूरे करने हैं, उसको भी अधिकारी बनना है, उसको भी बिजनेस वूमन बनना है, उसको भी उसने जो सपने देखे हैं उसे पूरा करना है। ये छेड़छाड़ की घटनाएं और ये जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना है कि कोई मुझे छू देगा, कोई मेरे दुपट्टे को खींच लेगा, इस डर से बाहर आना होगा। लेकिन ये जो डर से बाहर आने का कोई और नायाब नुस्खा है कि लड़की वो अपना काम भी कर ले और जो उन लड़कों का ग्रुप है जो बहुत शालीन नहीं है उनसे भी बचा जा सके?
3: मैम, शुरू में हमने बात करी थी कि जब हम स्कूल लाइफ से कॉलेज डेज में आते हैं तो चेहरे से ये जाहिर होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है या अभी उसका इस कैंपस में कैसा माहौल है, तो उसके चेहरे में वो बात दिखने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस लड़की के साथ जो इतनी सुंदर नहीं है या उसका कद कुछ ऐसा है तो उससे लोग ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं।
0: क्यों?
3: शायद वो इस स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगी, जैसा कि जुगेश ने बताया। और जो एक खूबसूरत लड़की होती है उसका जो फ्रेंड सर्किल होता है कुछ ज्यादा अच्छा होता है, उस लड़की के आसपास या उस लड़की से कुछ ज्यादा लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि लड़के ज्यादा दोस्त होते हैं, तो एक चीज ये भी है कि अगर उस लड़की के साथ कोई बातचीत होती है तो जो छेड़छाड़ कर रहा है उसके लिए भारी पड़ सकता है।
0: दिव्या, मुझे जुगेश, आयुष, अभिषेक की बातों से ये भी बात निकल करके आ रही है कि गर्ल को गर्ल के साथ होना होगा और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस कि कोई कुछ कर सकता है वो अपने आप को थोड़ा ग्रूम अप भी करना होगा, है ना? और ये ग्रूम अप एक दिन में नहीं होता
4: नहीं।
0: क्योंकि घबराहट ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप सब्जी काट ले और बका लिए और खा लिए, क्योंकि इसमें वक्त लगता है, क्योंकि ये आपको अपने शरीर को तो मजबूत बनाना है, मन को बहुत मजबूत बनाना होगा।
3: मैम, ये बात ठीक है कि गर्ल को गर्ल के साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो सोसाइटी में या कैंपस में जो अच्छे लड़के हैं जो इस चीज को समझते हैं उनको भी ऐसी लड़कियों से दोस्ती बनानी होगी, उनके फ्रेंडली जोन में जाना होगा उनको कि उसको लगे कि वो अकेली नहीं है। इस भावना को वो लड़की सोच ही ना पाए, महसूस ही ना कर पाए कि वो इस कैंपस में अकेली है। तो लड़कों को लड़कियों को बराबर उसका साथ देने की जरूरत होती है।
0: बढ़िया, जुगेश कुछ कह रहे थे।
2: मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, अगर इसका मैं सलूशन देखूँ, मैं देख पाता हूँ, कई सारे क्लास में लड़के अलग बैठाए जाते हैं, लड़कियाँ अलग बैठाई जाती हैं, तो वो लड़कों के अंदर और लड़कियों के भी अंदर एक होती है बेचैनी अलग अलग जेंडर को लेके कि क्या हो सकता है जब हम साथ में बैठेंगे। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं

0: अध्यापक हैं उनको भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, उन्हें क्लास में इस तरह के भेद नहीं करने चाहिए। जिनका जहां मन हो वो वहां बैठे, इससे क्या होगा कि उनके आसपास रहने, एक साथ बैठने से सहजता आएगी एक दूसरे को लेके। हमारे घर में लड़कों और लड़कियों को लेके जो भेद होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है कि लड़की कमज़ोर है, इसको सिर्फ घर में रहना है या इसको चुप रहना है, कुछ इस तरह से। ये हमारे माँ बाप का भी एक दायित्व होता है कि हम अपने लड़कियों को जितना संस्कार और जितने भी इस तरीके की बातें बताते हैं वो अपने बच्चों को भी बताएं, अपने बच्चों पे भी नज़र रखें कि वो किसी दूसरी महिला या लड़की का उनको कितना सम्मान करना चाहिए।
1: स्मृति, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम फैमिली से ही कुछ चीज़ें सीखते हैं। पहला जो हमारा स्कूल होता है वहीं से शुरू होता है। और एक बात मैंने नोटिस की है कि लड़के जो होते हैं अपनी माँ के ज्यादा क्लोज होते हैं, मुझे लगता है उनसे ज्यादा सहज रहते हैं बातें करने में। तो मुझे लगता है एक माँ की ड्यूटी बहुत ज्यादा है उन्हें ये समझाने में कि उनकी इज्जत तो वो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, समाज में जो और लड़कियां हैं उनकी वैल्यू समझना है, उनकी इज्जत करना है। तो ये सबसे पहले हमारी घर की ड्यूटी है, घर वालों की, हमारे पेरेंट्स का सबसे पहला कर्तव्य है कि उन्हें सिखाएं, सिर्फ लड़कियों को ना सिखाएं आप।
2: अब जैसा कि स्मृति ने कहा कि घर वालों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई अच्छे घरों से आने के बावजूद लड़के हैं या लड़कियां हैं उनका व्यवहार समाज के बीच में वो उतना अच्छा नहीं होता, वो आइडियल नहीं होता। मैम, इसके लिए मुझे यही लगता है कि आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं या आपका परिवार जो भी है, मुझे लगता है कि एक काफ़ी लंबे समय तक इस बात का हर एक सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेटा है या बेटी है वो कैसा व्यवहार कर रहा है अपने दोस्तों के बीच में। आपको ये ध्यान देना होगा कि स्कूल में वो कैसे उसके दोस्त हैं, ये जानना अलग बात होती है, पर हर एक बच्चा अपना वो पहलू छुपा के रखता है। वो नहीं बताता मैं किसके साथ मैच खेलने जा रहा हूँ, वो नहीं बताता वहाँ पर मैं मैच खेलता हूँ तो कैसी बातें होती हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, कोई लड़का नहीं बताता। और घर वाले अधिकतर इसमें खुश हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, एग्जाम में 80% आ गए, सिर्फ 2 घंटे खेलने जाता है, हम उसको ज़्यादा निकलने नहीं देते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक उम्र तक, खासकर जब वो किशोर से युवा बन रहे हैं तब तक आपको वो कितनी देर जा रहा है और क्या कर रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस समय में कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसके मन में क्या बातें हैं जो वो आपसे कहता नहीं है, तो इसका पता लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, तभी वो आगे जाके सही और गलत का फ़र्क समझ पाता है।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सबक। प्रतिभागी थी नेहा गुप्ता, दिव्या द्विवेदी, आयुष उपाध्याय और जुगेश गुप्ता। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम समाप्त करने का हो चला है समय। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में $10 अरब का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई

सुनेंगे राधेश्याम निषाद और साथियों की आवाज में लोकगीत, रमेश कुमार मिश्र से नीति वचन और रेणु वर्मा से अनिल कुमार यादव की बातचीत, ई मार्केटिंग से किसानों को लाभ। 7:31 पर किस्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कहानी ताई इसरी का दूसरा भाग। लेखक कृष्ण चंदर, स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आस्था सिंह से भजन सुनिएगा शाम 7:45 पर।

20वीं एशियाई खेलों की दैनिक झलकी आप सुनेंगे रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र हमारे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विनोवर शर्मा से अनिल यादव की बातचीत। विषय होगा इस पखवाड़े के कृषि कार्य। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता सुनिएगा, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर कमला बोस का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर पंडित जसराज का ख्याल गायन। कल सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर और कल शाम 7:45 पर नीरज शुक्ला से भजन। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा भरतलाल और साथियों से, नीलम शर्मा, रामप्रसाद और साथियों की आवाज में। 11:30 पर किस्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी ताई इसरी का दूसरा भाग सुनिएगा, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर आपकी पसंद प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बहनें सुनेंगी सरोज सिंह से लोकगीत, नम्रता श्रीवास्तव से की गई बातचीत मानसिक शांति में सकारात्मक सोच, और रसोई घर से जानेंगी मटर की भरवा पूरी कैसे बनाएं।

2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, शाम 5:15 युववाणी, कल शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम प्रसाद और साथियों से लोकगीत और उषा कुमारी से दीपक राय की बातचीत। विषय होगा समावेशी फसल बीमा योजना। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, कल रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। 10:20 पर फिल्म संगीत। ये थी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना दे दें। सूर्य प्रकाश द्विवेदी पुत्र श्यामा द्विवेदी सूचित करते हैं कि इनके भाई कृष्णदेव द्विवेदी उर्फ शुभम, उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, चेहरा गोल, रंग गोरा, आंखें काली। ये 13 जुलाई 2026 से चंदेलन का पूरा पूरब नारा होलागढ़ प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने स्लेटी कलर का शर्ट, नीली जीन्स और सफेद जूता पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8318550385। नंबर एक बार फिर से सुन लें 8318550385। एक और सूचना सुनिए। अर्जुन यादव सूचित करते हैं, सूरज यादव पुत्र अर्जुन यादव सूचित करते हैं कि इनके पिता अर्जुन यादव, उम्र 45 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, आंखें सामान्य हैं। ये 11 जुलाई 2026 से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने काले रंग का हाफ पैंट और भूरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें 246 G/2 A/1 ओम गायत्री नगर कर्नलगंज प्रयागराज। फोन नंबर लिख लें 8887539647। नंबर एक बार फिर से सुन लें 8887539647। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: व्यसन मुक्ता विधास्यते इति केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ब्रूते। अपि च एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे भारतीय धनुर्धरैः स्वर्ण पदकानां हैट्रिक इति त्रयो विजयः समासादितः। मुष्टिद्वन्द्वे च मिश्रित ट्रैम्प दलेन स्वर्ण कमलं विकसितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य आर्थिक कार्य मंत्री मंडलीय समित्या प्रवर्तमान वित्तीय वर्षस्य कृते सर्वेषामपि राबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्येषु श्लाघ्या वृद्धिः समनुमोदिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः व्यजिज्ञापत् यत् कृषक हित रक्षणार्थम् असौ निर्णयः समाश्रितः। अनेन कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 570 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13400, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मानतः परिवर्धनं विहितम्।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: मंत्रिणा प्रोदीरितं यत् समित्या नवदिल्ली आरक्षी बलैः 80+7,00,000,00,000 व्ययेन प्रवर्तमाना प्राज्ञ यातायात प्रबंधन प्रणाली योजना अपि स्वीकृता।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: एतदतिरिच्य मंत्रिमण्डलेन हरित ऊर्जा वीथी इत्यस्य तृतीय चरणम् अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35+100 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतीय प्रशासनस्य ऊर्जा मंत्रालयेन देशे समुपलब्ध यात्रीवाहनानां इंधन संरक्षण दक्षताम अभिलक्ष्य नूतना CAAFE इति संस्थागत मध्यमान इंधन दक्षता मानदंड नियमाः सम्यक् अधिसूचिताः। एते नूतनाः मानदंडाः 27+2000 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् समारभ्य 33+2000 मार्च मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। ये च पूर्व प्रवर्तितानां मानदंडानां स्थानम् अलंकरिष्यन्ति। एतद्विधानं भारते विक्रयार्थम् उत्पादितानां अथवा आयातितानां वा सर्वेषामपि नूतन यात्रीवाहनानाम् उपरि समानभावेन नियमस्यते। इयं हि नियमरचना वाहननिर्माण उद्योगस्य कृते महतीं नीतिस्थिरतां, कार्यसुगमतां, नियमन स्पष्टतां च प्रदास्यति। योजनेयं प्रौद्योगिकी नवोन्मेषं समेधयन्ती भारतस्य वाहन क्षेत्रम् उत्तरोत्तरं ऊर्जा दक्षतां न्यून इंधन व्ययं च प्रतिनेष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन दोहा नगरे कतार व्यवसायिभ्यः भारतेन सह वाणिज्य निवेश संबंधान सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवती। सा भारतस्य द्रुत विकासं प्रवर्तनान् वर्षस्य 94.5 बिलियन डॉलर मितं कीर्तिमयं प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशं FDI इति, तथा हि जापान क्रेडिट रेटिंग संस्थया भारतस्य ऋण क्षमता निर्धारणे कृताम् उन्नतिम् उक्तवती। वित्तमंत्रिणा होमोर्स जल संधौ अबाधित सामुद्रिक वाणिज्यं पुरस्कृत्य गल्फ देशैः सह व्यापार पुनरुद्धारस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। उपवेशनेऽस्मिन् कतार देशस्य 10 बिलियन डॉलर मितस्य निवेश संकल्पस्य कार्यान्वयनं, भारते तस्य कार्यालय स्थापना अथ

0: पक्षीय निवेश संधि संबद्धा वार्ता द्रुत गत्या चालयितुं सहमतिः जाता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य जालंधर नगरे समाहूतां मादकद्रव्य मुक्त पंजाब महाभियानं असंभ्रमं संबोध्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः व्यजिज्ञपत् यत् नवविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य समाप्तिं यावत् पंजाब राज्यं व्यसन मुक्तं विधास्यते। तेन निगदितं यत् भारतीय जनता दलं अंगीकृत संकल्पान् सर्वदा परिपूरयति। गृहमंत्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तर राज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः। सम्प्रति च पंजाब राज्यस्य व्यसन मुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। शहीद भगत सिंह उद्धम सिंहादि पंजाब भूमेः वीर हुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धांजलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्य कृषि समृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदं अधुना वर्धमानेन मादकद्रव्य व्यसनेन संतप्यते। अद्य नवदिल्ल्यां ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनं सम्बोध्य केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटन क्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमण विनोद विश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुख स्रोतत्वेन संवृत्तम्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटनक्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदात्री सूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते। असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेन कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात्। जापान देशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीय दलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि। भारतीय धनुर्धरैः कंपाउंड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हैट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्। एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम् इति वार्ताः।
1: छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: जो राम राम का हो सुरेमन भाई, का होत बा हो खेती किसानी में?
1: अवधु भैया देखा, खेती किसानी के काम धाम तो ठीक है ठाक बा। मुल्ला भैया देखा, ई टेम जौन धान के अपन फसल बा वो बढ़िया बा। भैया देखा, जौन अगवन वाली धान के जौन किसान भैया बहनी है अपन जौन है रोपाई केन रहे, तो कतहूं कतहूं भैया देखा ई जौन पिछली बयार बही बा एमा देखा कुछ जौन है नुकसानो हुई गया है। तो किसान भैया बहनी हरिन से तो हम तो यह कहब हो कि भैया देखा, खेती किसानी में नुकसानो भी होत है और साथ ही साथ सरकार के ओर से भैया नुकसान के भरपायु भी होत है।
0: अरे बिल्कुल हो सुरेमन भाई, कह गया ना देखा वो राम अभिलाख भैया रहे ना, तो भैया देखा उनका जौन धान गिरा रहे पहले से भैया देखा सचेत रहे तो अपन फसल बीमा कराई दे रहे हो। और भैया देखा हम तो कहब जे भी प्रगतिशील किसान बा, चलाक चतुर बा, तो भैया पहले से जौन है अपने खेती किसानी में कौने फसल के देखा खेती करत बे ओकर भैया का सुरक्षा व्यवस्था कर लेते हैं।
1: ये तो बहुत नीक बात बताया हो।
0: और साथ ही साथ ही एक बात और कहा वो,
1: हाँ हाँ बताओ।
0: देखा भैया जे भी किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाई हरे बनवावत है ना,
1: हाँ हाँ
0: देखा ओहू का जौन है बीमा हो जात है।
1: हाँ हाँ
0: तो भैया जौन है किसान भैया हरिन के चाहिए ये सब चीज के जानकारी लेवे के चाहिए हो।
1: हाँ हाँ
0: और कौनो भी देखा सरकार के तरफ से ना भैया एक टोल फ्री नंबर जौन बा किसान कॉल सेंटर इहो भैया देखा बनावा ग बा। एमन किसान भैया अपन कौन खेती बाड़ी से कौन भी समस्या आवत है, चाहे भैया देखा रोग व्याधि को हो बीमारी को हो, चाहे फसल में कौनो कीड़ा मकोड़ा लागत है,
1: यानी कि जौनो भी कौनो तरह के रोग व्याधि अगर हो
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: किसान भैया बहनी हरिन भैया देखा जौन टोल फ्री नंबर बतावत रहे हो तो तनी बतावा हो।
0: बिल्कुल हो सुरेमन भाई, देखा टोल फ्री नंबर बाटा है 1800-1501। तो भैया
1: हाँ
0: देखा ये अपन टोल फ्री नंबर बा भैया, यह पर जौन है कौनो भी खेती बाड़ी से समस्या बा तो भैया यह पर किसान भैया हरे अपन फोन कई के जौन है पर
1: हाँ
0: जानकारी और समाधान मिल जाए
1: ये तो
0: उनका।
1: बहुत नीक बात बताया हो। किसान भैया बहनी देखा जो नंबर बताया हो ये नंबर का अपन देखा लिख पढ़ लिया है।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: साथ ही साथ भैया टेम टेम पर अपन जो है किसान कॉल सेंटर पर जरूर फोन लगावत रहें और ताकि अपन खेती किसानी में कोनो तरह के समस्या ना आवे।
0: बिल्कुल हो। और साथ ही साथ एक बात और कहा
1: हाँ हाँ
0: भैया,
1: बतावा।
0: देखा हो खेती किसानी तो होते रहत है,
1: हाँ हाँ
0: मुला हम कहा भैया देखा अपने स्वास्थ्य बदे साफ सफाई भी जरूरी बा।
1: कही गया कही गया।
0: अब भैया देखा ये स्वच्छता पखवाड़ा भी चलत बे,
1: हाँ
0: तो काहे न भैया जौन है हमन साफ सफाई अपने आसपास घरे दुआरे के देखा साफ सफाई करें।
1: कही गया।
0: और साथ ही साथ देखा बरखा का मौसम रहा न हो तो जगह जगह भैया देखा घास पात जामी आई बे,
1: कही गया।
0: तो ओहू को भैया देखा साफ सफाई कर देंगे जो नाली नूली बा न हो ओका साफ सफाई भैया कर दी है तो मच्छर न पली है।
1: ये तो बहुत नीक बात बताया हो अवधु भाई। अब देखा जौन साफ सफाई वाली बात बताया तो ये सब भैया देखा ये सब अपन जौन है ये कर्तव्य बा
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: भैया देखा सरकार के ओर से तरह तरह के स्वच्छता अभियान चलावा जा रहा हुआ। मुला देखा अपन सरकार के तरफ से तो जौन योजना चलावे जात बा वो तो साफ सफाई होते बा।
0: बिल्कुल
1: मुला
0: बिल्कुल
1: भैया देखा हमका सबका देखा अपने गांव गिराव में रहा का है
0: हाँ हाँ हाँ
1: नाली नाला बहुन गड़वा गोची तरह तरह देखा अभी बरसात भाई
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पानी के जल भराव भा तरह तरह के कीट पतंगा रोग तरह तरह के मच्छर मलेरिया होत है। तो ये रोग व्याधि से बचाव खातिर तो हम तो यही कहब कि लड़का गदेला शहीद भैया हो देखा अपन अगल बगल साफ सफाई बिल्कुल सब चकाचक रखें
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: साथ साथ भैया जौन आताई पताई जौन होय ये तो देखा अपना बढ़िया गड़बा बना ले वही में सब पताई देखा सब डाल दे बढ़िया खाद तैयार हो जाए।
0: बिल्कुल हो सही कह गया सुरेमन भाई, मुला हम तो कहब देखा बात बत कही तो होत रहे,
1: हाँ हाँ
0: मुला आज अपने पंचायती में का किसान भैया हरिन के लई के आए बैठे हैं तनी ओके बतावा।
1: हाँ हो तो भैया ये तो बहुत नेक बात बताया हो। देखा आज किसान भैया बहनी हरिन का भैया एक तो बहुत नीक बातचीत बा वो बा ई की ई मार्केटिंग से कृषकों का जोन लाभ बा बहनी रेणु वर्मा से अपने देखा अनिल कुमार भैया के जोन है बात बत कही बा तो ये तो सुनवावा जाई। मुला भैया देख

0: था अपने टेम टेम से किसान भैया बहनी है इनका, देखा आज गुरुवार के दिन बा, तो नीति बचन जौन है अपने किसान भैया बहनी है इनका सुनवावा जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया देखा पहले जौन है आवा लोक गीत जौन है राधे श्याम निषाद और संघातिन का भैया गीत गौन ही हुई है।
0: हाँ हाँ
1: ओकरे बाद फिर जौन है आगे कार्यक्रम होत रहे।
0: हाँ हाँ तो सुनवाए दिया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया, देखा हो विकास गीत रही जोन है राधे श्याम निषाद और संघातिन के।
2: हाँ।
1: एक साथे साथे देखा सनेश भी होइगे।
2: हाँ।
1: अब हम कहा देखा जोन कहत रहने की नीति वचन है आज।
2: हाँ।
1: तो भैया देखा आवा रमेश कुमार मिश्र का जोन है, तुहु सुना पंच भैया रे भी सुने।
2: हाँ हाँ, सुनवा दिया।

महाराज, समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, हमारे भारतवर्ष में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत प्रवर कबीरदास जी महाराज, महान पथ प्रदर्शक श्री रहीमदास जी, महान नीतज्ञ श्री चाणक्य जी, श्री विदुर जी महाराज जैसे संतों ने अवतार धारण कर समाज में कुरीति और अंधविश्वास, अत्याचार जैसे घोर अंधकार के बीच इन संतों ने अपनी पीयूष वर्षणी वाणी से जो प्रकाश दिया, उसे नीति वचन कहते हैं। प्रिय पंचो, इस वैज्ञानिक युग में समाज तथा जीवन में विद्या का अत्यंत महत्व है। विद्या प्राप्त कैसे होती है, मनुष्य स्मृति में इसका विशद वर्णन है। अभी

बलम। माता पिता गुरुजनों के श्री चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करने से, बड़े बूढ़ों की निष्कपट निश्चल सेवा करने से आयु विद्या यश और बल ये चारों चीजें निश्चित प्राप्त होती हैं। विद्या वो धन है जो प्रतिदिन बढ़ने के साथ साथ कभी घटता नहीं, कोई छीन नहीं सकता। विद्या वो आभूषण है जो उत्तरोत्तर चमक के साथ साथ सतत शाश्वत भी है, जिसके लिए महान नीतिज्ञ चाणक्य ने अपने नीति में विस्तार से वर्णन किया है। ये

चरंती। जिन व्यक्तियों के पास विद्या, दान, सील, तप व गुण नहीं है, वे व्यक्ति पृथ्वी पर भार स्वरूप पशु के समान ही जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात मनुष्य रूप में वे केवल हिरण के समान विचरण करते हैं। जिनमें उक्त गुणों का अभाव है वे पशु तुल्य हैं। चाणक्य के कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन की सफलता विद्वान, तपस्वी, दानी, सीलवान, गुणवान अथवा धर्मात्मा होने में है। इनमें से किसी भी गुण के अभाव में वह व्यक्ति मनुष्य नहीं, पशु तुल्य है। हमारे जीवन में अगर विद्या नहीं है तो हम कोई भी काम विचार और विवेक से नहीं कर सकते। कबीरदास जी कहते

हसाए। संत की वाणी है कि जो भी कार्य करो उसे विचार कर करो, जिससे समाज में सम्मान बना रहेगा। अगर कोई काम बिना विचारे करेंगे तो पश्चाताप भी करना पड़ेगा और संसार में हंसी के पात्र भी बनेंगे। इसलिए महान नीतिज्ञ चाणक्य जी का कहना है

सर्ववस्तुषु। जिस किसी के पास विद्या रूपी धन है तो उसे सभी धन प्राप्त होते हैं। सभी धनों में विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। यदि धनवान होते हुए भी किसी के पास विद्या रूपी धन नहीं है तो उसे दीन समझना चाहिए। और जिस मनुष्य के पास धन ना हो लेकिन उसके पास विद्या रूपी धन है तो उसे दीन नहीं समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि तुच्छता का आधार धनहीनता ना होकर विद्याहीनता है। अतः हर मनुष्य को धन की अपेक्षा विद्या प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि विद्याहीन व्यक्ति धन को भी खो बैठता है, जबकि विद्वान अपनी विद्या की शक्ति से पर्याप्त धन एकत्रित कर लेता है। गुणों

श्रीयते धनम। किसी भी व्यक्ति का सुंदर होना अच्छा है, किंतु यदि वह सुंदर के साथ साथ गुणवान भी है तो उसकी सुंदरता दोगुनी बढ़ जाती है, उसकी हर तरफ सराहना होगी। कुल वंश अच्छा होने के साथ यदि वह स्वभाव से शीलवान व व्यवहार कुशल हो तो कुलीन होने का फल कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अतः सुंदरता के साथ गुणवान, उच्च कुल के साथ शील स्वभाव, ज्ञान के साथ सिद्धि व संचित धन का सदुपयोग, इन चारों से संपन्न व्यक्ति का जीवन बहुत ही प्रशंसनीय होता है। ऐसे सदपुरुषों की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम दुष्कुलं चापि विदुषो दैवरपि स पूज्यते। चाणक्य जी अपने नीति वचन में कहते हैं कि उच्च कुल व धनी घराने में पैदा होकर भी विद्याहीन व्यक्ति से किसी को क्या लाभ हो सकता है। सत्य तो यह है कि छोटे कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि विद्वान है तो वह अपनी विद्वता द्वारा अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए देवताओं द्वारा भी पूजित हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि महत्व विद्या का है, वंश का नहीं। विद्या संपन्न व्यक्ति ही वांछित है। विद्वान

पूज्यते। इस संसार में विद्वान का आदर सर्वत्र होता है, विद्वान की चहू ओर पूजा होती है, संसार में यश भी चारों ओर से प्राप्त होता है। अतः विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्ति को भी कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वस्तुतः विद्या में संसार की सभी वस्तुएं, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, वैभवशाली जीवन प्राप्त हो सकता है। अतः विद्या ही वांछनीय है।

कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्याहीन व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता, वह समाज में कभी इज्जत नहीं पाते। जिस तरह गंध रहित ढाक और टेसू के फूल कभी सुशोभित नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें ना तो सुगंध होती है और ना ही वह किसी और कार्य में आते हैं, वह देखने में भी आकर्षक नहीं लगते, इसलिए उन्हें भगवान के चरणों में भी अर्पित नहीं किया जा सकता। कामधे

गुप्ते धनम स्मृतम। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या समस्त फल देने वाली काम धेनु गाय के समान होती है। काम धेनु के बारे में चर्चित ही है कि वह सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली सभी फलों की दाता थी। आज के युग में विद्या ही काम धेनु के समान है। आचार्य चाणक्य विद्या को गुप्त धन बताते हैं, जो न दिखाई पड़ती है ना ही उसका कोई विभाजन कर सकता है और उसका हरण भी संभव नहीं है। प्रवास के समय यही विद्या व्यक्ति की सहायक होती है, जो कि माँ के समान होती है। वह कहते हैं कि विद्या सा आभूषण इस संपूर्ण पृथ्वी पर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम विद्यार्जन पर ही बल देना चाहिए। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या धन ही ऐसा धन है जो अनजाने देश विदेश में भी विद्वान को सच्चा सहारा देता है, मित्र बनता है। नारी का सतीत्व ही घर में उसके आदर का कारण बना रहता है। रोगी का सच्चा मित्र उसकी औषधि होती है और मृत्यु के बाद आत्मा को सदगति देने वाला मनुष्य का सच्चा मित्र केवल धर्म है। काम क्रो

0: हष्ट वर्जयेत। विद्याधन कर रहे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अति निद्रा और अति सेवा, इन आठों चीजों का त्याग कर देना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम सौन निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये पांच लक्षण बताए गए हैं। कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला चतुर, बगुले की तरह ध्यान रखने वाला, कुत्ते की तरह झट से उखड़ जाने वाली नींद, कम भोग विलासी, कम आहार लेने वाला और भौतिक संसाधनों से दूरी रखने वाला एक अच्छे और सच्चे विद्यार्थी के पांच लक्षण हैं। अस्तु प्रिय पंचों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म होते हुए भी गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन किए और विद्या को सर्वोपरि रखते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: हाँ भैया, हो देखा हो नीति भजन रमेश कुमार मिश्रा भैया के कितना बढ़िया से फरियाई के जौन है बताएन हो।
2: कहिया
1: और साथे साथे देखा अब जौन आगे के बात बत कही रही न हो। देखा किसान भैया हरन के खेती किसानी करत हैं तो भैया उनके उपज जौन बा भैया देखा ओकर अच्छी तरह से बाजार होए, अच्छा मूल्य मिले, ये सब का भैया देखा जानकारी देवे बदे जौन है आज एक ठे बात बत कही बाटे।
2: हाँ हा।
1: कि ई मार्केटिंग से किसानों को लाभ है।
2: हाँ।
1: ई का बाटे भैया, ई मार्केटिंग का है, एकरे बारे में रेणु वर्मा से अनिल कुमार यादव भैया बतियान हैं।
2: हाँ।
1: हम तो कह भैया आवा तो हम सुना, पंच भैया रे भी सुने।
2: हाँ हाँ, सुनवा दे।
1: देखा भैया, खेती किसानी में किसान भैया हरे अपन फसल उगावत हैं, वह फसल के उचित मूल्य मिले एक बदे जौन है उनका बाजार चाहिए, और बाजार में जौन बाटे वो अपन फसल के उपज कैसे बेचें जौन से उनके चार पैसा के आमदनी हो, तो एक अपन सरकार चलाए बा योजना की ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का बाटे यही पे जानकारी देवे बदे आज हमरे बीचे में रेणु वर्मा जी आए हैं जौन की मंडी सचिव मुडेरा इलाहाबाद में भैया कार्यरत हैं। तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। ये बतावें कि ई मार्केटिंग ई का बाटे, ऐसे किसान के का फायदा बाटे, ये जौन सरकार चलाए बे।
3: सभी कृषक भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम है। ई मार्केटिंग योजना जो है वो एक, अभी आप किसान भाई लोग जानते होंगे कि इंटरनेट का यूज सभी लोग करते आ रहे हैं और किसान भाई भी अब मोबाइल का प्रयोग करके खेती की

0: किसानी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: जी
0: तो खेती किसानी को एक तरह से इंटरनेट से जोड़ना, ये है ई मार्केटिंग, और बाजार का एक तरह से डिजिटीकरण कर देना, किसानों के हित को उनके संरक्षण के लिए काम करना, और उनको आज जो 21वीं सदी में डिजिटल युग आ रहा है उससे किसानों को जोड़ देना, जिससे किसान अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी उपज का सीधा सीधा और अच्छा उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
1: जी जी
0: इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में एक महत्वाकांक्षी योजना किसान भाइयों के हित में लाई गई है, जिसे राष्ट्रीय कृषि बाजार, संक्षिप्त शब्दों में कहें तो ई नैम, ये
1: जी
0: हिंदी
1: जी
0: का है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट,
1: जी जी
0: तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना शुरू
1: जी
0: की गई
1: जी
0: है। ये योजना जो है वो कृषक भाइयों के लिए पूर्णतया समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर किसान, हमारे देश का हर अन्नदाता खुशहाल हो, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिले और वो जीवन में खुशहाली की तरफ बढ़ता चले।
1: जी
0: इसी योजना के मद्देनजर 14 अप्रैल 2016 को इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसमें पूरे भारत की मंडियों को एक रूपता में, एक साथ, एक मंच पे लाते हुए 22 मंडियों का चयन किया गया, जिसमें यूपी की 6 मंडियां शामिल की गईं
1: जी जी
0: प्रारंभिक चरण में।
1: जी जी
0: अभी वर्तमान में 445 मंडियां जुड़ चुकी हैं इससे, और यूपी की लगभग सबसे ज्यादा मंडियां जो हैं वो 100 मंडियां हैं,
1: जी
0: और जो यूपी के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे हर किसान भाई के लिए गौरव की बात है।
1: जी जी
0: यूपी के अभी तक 25 लाख किसान इस योजना के अंदर पंजीकृत हो चुके हैं, और ई नैम योजना पूर्णतया किसानों को समर्पित है और किसानों के लिए ही है। इसमें जितने भी, जैसे आप लोग, गेहूं है, धान है, चना है, आलू है, प्याज है, इस तरह से टोटल 69 जिनसें को शामिल किया गया है। आगे भी हमारी प्रक्रिया है, भारत सरकार की प्रक्रिया है कि और भी जिनसों को इसमें शामिल करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को दिया जा सके।
1: जी जी तो जवाने ई आप बतावत हैं कि ई राष्ट्रीय बाजार जवन है
0: जी,
1: ई खेती किसानी से जुड़ा बाटे, तो इसे किसान कैसे लाभान्वित तो हो सकत हैं।
0: ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है
1: जी
0: जिसमें किसान जो हैं और उसमें जो आपकी मंडियां हैं और भारत की दूसरी अन्य मंडियां हैं
1: जी
0: उनको एक नेटवर्क से जोड़ करके एक विशाल बाजार किसान के लिए तैयार किया जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई खेती के, मतलब धान आपको बेचना है, अभी आपका धान आने वाला है,
1: जी जी
0: आपको नहीं पता है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, हो सकता है कि पंजाब में ज्यादा अच्छा रेट चल रहा हो, यूपी का किसान पंजाब में कैसे अपनी जींस को बेचेगा, अपनी कृषि उपज को कैसे बेचेगा, तो
1: जी
0: इसलिए एक माध्यम ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया है, आप लोग को दिया गया है, जिससे आप उस अपनी फसल का उचित मूल्य जान सकें और जो आपके हितकर में हो उस पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए सीधे पंजाब के व्यापारी को अपना, या तेलंगाना का, या मध्य प्रदेश का, कोई भी जो व्यापारी आपकी फसल का उचित मूल्य दे
1: जी जी
0: और उसका बढ़िया आपको दाम दे, वो
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसे दे सकते हैं। तो ई नैम किसी भी किसान और व्यापारी को देश की किसी भी मंडी में खरीद फरोख्त के लिए, बेचने के लिए एक सर्वसुलभ अवसर प्रदान करता है।
1: यानी कि किसान जौन है अब हर मंडी से जौन है ये मतलब जानकारी ले सकत
0: ले
1: हैं
0: सकता है जी,
1: ये
0: बिल्कुल,
1: रजिस्ट्रेशन के माध्यम से,
0: रजिस्ट्रेशन के माध्यम
1: और
0: से
1: अपन उपज जौन है
0: जी
1: चाहे यहाँ से दूसरे राज्य में भी अपन बेच
0: बेच
1: सकत
0: सकता है,
1: हैं।
0: बिल्कुल बेच सकता है
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: ई नाम जौन बटाई ई किसान भाई ई कहाँ संपर्क करें, कैसे एक जानकारी हो जैसे रजिस्ट्रेशन करावे
0: जी
1: चाहत
0: जी
1: हैं
0: जी
1: तो।
0: इसमें मैं कृषक भाइयों से कहना चाहूंगी कि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह का कोई आप उलझाव नहीं महसूस करें। आप अपने निकटतम मंडी समिति जहां पर ये योजना लागू है उसे संपर्क कर सकते हैं,
1: जी जी
0: मंडी सचिव और मंडी कार्यालय में स्थित जो भी स्टाफ है वो आपकी पूरी मदद करेगा, या क्षेत्र में है आप मंडी में नहीं आ सकते, मंडी का कोई कर्मचारी वहां तैनात है, तो आप उससे भी योजना के बारे में अधिक से
1: जी
0: अधिक
1: जी
0: जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका पंजीकरण करने की बेहद आसान प्रक्रिया है, आपका केवल किसान आधार नंबर लगेगा, आपका जो आधार कार्ड है, और दूसरा जो आपका अकाउंट नंबर है, इसकी सही सही जानकारी आप हमारे कार्यालय में आके दे दें, जिससे कि हम जान सके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर आपका रकबा है, कहाँ आपकी फसल है, कहाँ आपकी क्या है, आधार नंबर से जानेंगे। और अकाउंट नंबर की सही जानकारी देते हुए एक आपको चेक या जो भी है अपना नंबर, अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी भी आप ले आएंगे, तो उसे हम अपने यहाँ रख लेंगे, जिससे आपको भुगतान करते समय सीधे आपके अकाउंट में पैसा चला जाए, जिसमें भी कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। कई बार होता है व्यापारी आढ़ती, कहीं आप जाते हैं, कुछ आपसे दिक्कत हो जाती है, पैसा आपको नहीं मिल पाता है, आप घर जा रहे हैं, आपका अमाउंट ज्यादा है, तो
1: जी
0: छिनैती हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, आप मंडी में आए, अपना उत्पाद बेचा और अपने घर चले गए और सीधा अकाउंट में आपको पैसा मिल गया।
1: जी
0: ये एक
1: जी
0: पारदर्शिता और आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है।
1: जी जी
0: कोई भी कृषक अगर अपना कृषि उत्पाद

0: मंडी में लाता है, तो सभी कृषक भाई मंडी से बहुत अच्छे से परिचित हैं। मान लीजिए कोई कृषक भाई अपनी कृषि उत्पाद को लाता है, जैसे वो प्रवेश द्वार पे लाता है उसे एक प्रवेश पर्ची जारी की जाती है। उस पे प्रवेश पर्ची जारी करने के बाद में एक लॉट कोड जनरेट किया जाता है। उस पर्ची में किसान क्या लाया है, कितनी मात्रा में लाया है, किस वाहन ट्रैक्टर ट्राली है, कुछ भी है, उसका एक संक्षिप्त परिचय, उसके सहित उसके कृषि उत्पाद का एक संक्षिप्त परिचय उसमें लिख दिया जाता है।
1: जी
0: फिर इसके बाद वो नीलामी चबूतरे पे उसको ले जाएं,
1: जी
0: वहां पर कृषि विपणन निरीक्षक होते हैं जो उनके उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करते हैं। तो कृषक भाई जैसे परिचित है परखी वगैरह रहती है,
1: जी जी
0: या कोई अपना एक इंस्ट्रूमेंट एक यंत्र होता है जिससे वो अपना उससे कृषि उत्पाद में से थोड़ी सी मात्रा जो निर्धारित मात्रा है
1: जी जी
0: उसी समय आपको वापस भी कर दिया जाएगा टेस्ट के बाद में,
1: जी
0: उसकी फिर लैब में ला करके जांच की जाती है। मंडी कार्यालय परिसर में ही वो स्थित रहती है लैब, वहां ला करके उस कृषि के जो उपज है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। उसके लिए कई मानक निर्धारित हैं। ये जो उपज का जो गुणवत्ता जांच की जाती है वो DMI द्वारा की जाती है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो
1: जी
0: भारत सरकार का एक उपक्रम है जो काफी विश्वसनीय है और पारदर्शिता है। इसमें कृषक के साथ कोई धोखेबाजी नहीं होती है, उसको बिल्कुल स्वच्छ और अच्छी पारदर्शी प्रक्रिया बताई जाती है। आप जैसे ले जाते होंगे बोलते होंगे अरे ये तो केला खराब है, ये तो आलू
1: जी
0: खराब है,
1: जी
0: ठीक है ना, और फिर अरे नहीं तो ये सड़ रहा है, तो आपको औने पौने दाम दे करके भेज दिया जाता है। इस
1: जी
0: प्रक्रिया को अपनाने से कृषक भाई को लाभ ये होगा कि जो उसकी उत्पाद है उसको संतुष्ट कर दिया जाएगा कि ये ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है, और फिर उस हिसाब से उसकी मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। तो
1: जी
0: जब
1: जी
0: कृषक भाई ले जाते हैं पूरे यंत्रों के साथ में, उसको निरीक्षण करने के बाद में उसको ग्रेडिंग दी जाती है, आ श्रेणी, ब श्रेणी और सा श्रेणी। आ श्रेणी का मतलब है कि आपका उत्पाद सर्वोत्तम क्वालिटी का है,
1: बढ़िया
0: बहुत बढ़िया है,
1: जी जी
0: और बी ग्रेड का मतलब उससे कम है, सी ग्रेड का मतलब उससे, और अगर खराब है कि बहुत ज्यादा सड़ रहा है या गल रहा है तो उसको सबसे निम्नतम श्रेणी डी श्रेणी में दे
1: तो यानी
0: देंगे,
1: कि मूल्य भी वही हिसाब से
0: उसी
1: निर्धारित
0: हिसाब
1: होते
0: से
1: हैं।
0: करेंगे।
1: जी
0: देन
1: जी
0: इसके बाद आपका सारी चीजें हैं, तो एक लॉटिंग असेइंग के बाद में, इन सब प्रक्रिया को असेइंग कहते हैं, असेइंग के बाद में आपकी एक असेइंग रिपोर्ट आ जाती है जिसको हमने अभी आपको बताया,
1: जी
0: ठीक है। इसके बाद इसको ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे जो अंदर ईनैम के जो साथी आपके बैठे रहे हैं, आपके सहयोगी बैठे
1: जी
0: रहते हैं,
1: जी
0: कृषक के सामने ही उसको डाल देते हैं ऑनलाइन, और फिर उसकी ई बिडिंग, ई ऑक्शन, ई टेंडर शुरू हो जाता है। मान लीजिए उसको हमने सारी सूचनाएं इंटरनेट पे डाल दी, फिर अब पंजाब का भी व्यापारी देख रहा है कि आपका ए ग्रेड का क्वालिटी है और ये तो बहुत अच्छा माल है, उसने और अच्छा दाम लगाया। फिर आंध्र प्रदेश को लगा नहीं ये तो बहुत अच्छे मानक के अनुरूप है और ए ग्रेड का है तो हम इसको 1400 नहीं 1500 देंगे। पता चला पंजाब वाला देखा तो उसने कहा कि नहीं ये तो और अच्छी माल है, हम इसका 1600 देंगे। अगर यहाँ मंडी में लाता उसका मार्केट बिल्कुल सीमित होता, उसका बाजार, तो उसको जो 1400 1500 जो भी रेट होता वो मिल जाता। इस
1: जी
0: तरह उसके उपज का एक सार्वजनिक बोली होती है जो कि बहुत ही पारदर्शितापूर्ण होती है, और उसकी उपज का उसका निर्धारण करते हुए मूल्य का एक अच्छा दाम किसान को मिलता है। अगर
1: जी
0: किसान उस पर सहमत होता है कि हाँ भाई हम आंध्र प्रदेश वाले या अपनी किसी बगल की मंडी, मान लीजिए कि प्रतापगढ़ का कोई व्यापारी लेना चाह रहा, उसने बहुत अच्छा दाम लगा दिया इलाहाबाद से,
1: जी जी
0: तो वो कहेगा कि हाँ हम सहमत हैं, तो जो सर्वाधिक बोली किसान के हित में लगाता है उस पर बोली डन कर दी जाती है।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: किसान से उससे पूछा जाता है क्या आप अपना कृषि उत्पाद इतने रुपए में फलाना ट्रेडर को बेचना चाहते हैं या व्यापारी को देना चाहते हैं। अगर वो सहमति देता है तो ही उसकी आगे की प्रक्रिया करके उसको भुगतान सीधे व्यापारी के माध्यम से वहीं बैठे बैठे
1: जी
0: आपके खाते में करवा दिया जाता है। ये
1: जी
0: पूरी ई नैम की आपकी प्रक्रिया है
1: तो जौन ये आप ई नैम की प्रक्रिया बतावत हैं, ये
0: जी
1: तो किसान भाई हरन के लिए बहुत बढ़िया प्रक्रिया बाटे कि ये
0: जी
1: उनका वहीं से आपने माल का जौन उनका उपज बाटे यानी
0: जी
1: ओकर उचित मूल्य मिल सकत है
0: जी
1: अगर ये प्रक्रिया से किसान भाई रहे जुड़े। तो जैसे आप बताओ थे तो किसान के लिए व्यापारी के लिए का सुविधा बाटे?
0: के लिए भी रजिस्ट्रेशन करने की बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, जो कि वो मंडी में है या मंडी के बाहर के हैं उनको तुरंत जानकारी मंडी कार्यालय से हो सकती है। उसके लिए भी इन्हें भी दो तीन चीजें लानी है, अपना आधार का नंबर लाना है, अपना अकाउंट नंबर देना है, देन एक उनको कैंसिल चेक देना है जिससे कि
1: जी
0: वो किसानों को भुगतान तत्काल कराया जाए। तो उसकी कुछ अपने नॉर्म्स और कंडीशंस हैं और वो आ करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अभी भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन और इन सब चीजों को देखते हुए एक ई नैम ऐप जारी किया है जो केवल व्यापारियों के लिए है। वो
1: जी
0: अपने गूगल प्ले स्टोर में जा करके, आजकल सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं, ई नैम डालेंगे वैसे ही उसका एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप ये जान सकते हैं कि पूरे भारत में कौन सी जींस ऑनलाइन है। जैसे मान लीजिए किसी को कपास खरीदना, अपने यूपी में कपास नहीं होता है
1: जी
0: और उसको कपास की जरूरत है, तो महाराष्ट्र के किसी भी किसान से सीधे संपर्क कर

0: सकता है। और
1: जी
0: कपास का क्या रेट चल रहा है, क्या दाम चल रहा है, और सब जगहों से कितना कितना दाम दूसरे व्यापारी लगा रहे हैं, एक स्वस्थ और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उन्हें भी एक अच्छा मूल्य किसान से करार करने के लिए मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो सभी व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लें कि वो किसी भी वक्त, जरूरी नहीं कि वो मंडी में आकर के कृषि का मतलब उपज का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही उसका लगाएं, वो
1: जी
0: किसी का
1: जी
0: भी लगाना चाहें, अपने यहाँ बैठा और ग्रेडिंग देख लिया कि ग्रेडिंग क्या है, बी श्रेणी का है, ए श्रेणी का है, उसी के अनुसार उसने अपना दाम उसका लगा दिया, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
1: तो जैसे ये जो दूर दराज से हैं किसान भाई
0: जी
1: जो है,
0: जी
1: उनके लिए मंडी में का सुविधा बा, एक बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: जी कृषकों के लिए मंडी में अगर ई नैम के संदर्भ में आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आकर के मंडी कार्यालय में कभी भी सचिव से या उसके स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, आपके जो भी चीज़ें हैं जहां आपको समझ में नहीं है आपको बताया जाएगा। दूसरा,
1: जी
0: इसके हम लोग ने अभी प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन, बसेज में और जगह जगह पोस्टर बैनर लगा करके काफ़ी योजना का प्रसार प्रसार किया है। मंडी समिति आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। आप सभी कृषक भाइयों से निवेदन है कि आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक जानकारी अपने निकटतम मंडी समिति कार्यालय से अवश्य लें।
1: ब्लॉक स्तर कोनो कार्यक्रम आपका चलत बा इसमें का?
0: हाँ, अगर ब्लॉक स्तर पे कोई रहता, कोई कृषक गोष्ठी होती है तो उसमें हम लोग जाते हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: कृषकों को इस बारे में जानकारी अवश्य देते हैं।
1: तो जैसे ये समय मान लें धान का सीजन अब
0: जी
1: आवत
0: जी
1: है
0: जी
1: कि
0: जी
1: धान किसान का उपज होए,
0: जी जी
1: तो धान का उपज जैसे अपन बेचे बदे किसान के का सुविधा बा आपके यहाँ, थोड़ा सा बताओ इसे।
0: जी इस समय राज्य सरकार ने धान खरीद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इस बार कृषक भाई जो भी अपनी धान की फसल लेकर के आएंगे, जो वो क्रय केंद्रों पे जाते हैं उनको देते हैं और जो चीज़ें प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे पहले उन्हें एक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एक वेबसाइट है जो सरकार ने दी है,
1: जी,
0: उसको ifcs.gov.in है, उसमें किसान जा करके बहुत ही सरलतम तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वो मंडी समिति कार्यालय या कहीं से भी आकर के संपर्क कर सकते हैं कि वो किसी भी जगह पर जाएं, ऑनलाइन पोर्टल खोलें, उसमें किसान पंजीकरण की 4 या 5 चरण दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही किसान अपना खाता बही नंबर डाल दें, अपना आधार नंबर डाल दें, अपना पैन नंबर, जो भी उनके पास सुविधा अनुसार हो वो उसमें डाल करके पंजीकरण अपना करवा लें। कोई अगर प्रक्रिया उनसे रह जाती कि अरे हमने तो खसरा नंबर डाला ही नहीं, हमने अपना रकबा डाला ही नहीं, तो उसमें फिर से वो लॉग इन करके अपना मोबाइल नंबर या अपना अकाउंट नंबर डाल करके उसको संशोधित कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसको जांचते रहें कि कोई चीज गलत नहीं हो, क्योंकि जैसे ही वो अपने कृषि उत्पाद को ले जाएंगे क्रय केंद्र पर, अगर उनका रजिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं हुआ रहेगा तो उनका जो उत्पाद है वो क्रय केंद्र पर लिया नहीं जाएगा, इससे किसानों को भी असुविधा होगी। अगर उन्हें कोई पंजीकरण में प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कभी भी मंडी समिति कार्यालय से अपने निकटतम साइबर कैफे में जानकारी प्राप्त कर
1: जी
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल सही आप बताएं रेणु वर्मा जी, आप आएं और किसान भाइन के बताएं कि ई मार्केटिंग से का इन्हें लाभ होता है, कैसे अपने उपज के अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, एक सब जानकारी देवे दे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ हो अवधु भैया, देखा बातचीत रही भाई कि ई मार्केटिंग से कृषकों को लाभ, भैया विषय पर रेणु वर्मा से अनिल कुमार यादव भैया देखा वह फरियाए की जानकारी लीन, और किसान भैया बहनी हरें देखा अपने पंचायती के माध्यम से जब उन्हें सुनिन गुनाए और लाभ उठावें, और
1: बिल्कुल
2: हम तो
1: बिल्कुल
2: यह कहा भैया हो कि अब वो जमाना देखा बदल गया, अब भैया ई मार्केटिंग के जमाना बा, तो किसान भैया बहनी हरें जौनबूर जौन है अपन ध्यान रखें, और अपन जौन है बीच बीच अपन देखा समाचार सब देखा सुनत रहें, और अपन ई मार्केटिंग के लाभ उठावें, 4 पैसा की आमदनी बढ़ावें।
1: बिल्कुल वो सही कह गया भैया। देखा खेती किसानी में तो ये भैया उपज आपन जोन बा
2: हाँ
1: पैदा तो होत है, मूला ओकर अच्छी कीमत बढ़िया कीमत कैसे मिले,
2: हाँ
1: ये सब के भैया देखा जानकारी रखे के
2: कही
1: पाई
2: गए। अब देखा
1: भैया।
2: मेहनत मशक्कत तो किसान भैया बहनी हरिन करते हैं
1: बिल्कुल
2: भैया,
1: बिल्कुल
2: देखा चाहे साग सब्जी के देखा फसल हो, चाहे देखा अनाज के फसल हो, अब देखा अपन मेहनत पसीना लगाए कि किसान भैया बहनी उगाहत हैं, और साथ ही साथ भैया अगर आमदनी बढ़िया ना मिली हो अवधू भाई, तो भैया देखा फिर कैसे आगे का काम चली हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह गया हो। और एक बात और बा
2: हाँ हाँ
1: कि
2: बताओ।
1: देखा हो अब जोन है अपन जोन खेती और बारी,
2: हाँ
1: अनि खेती के साथे साथे बारी

0: पशुपालन।
1: हाँ
0: तो भैया जो ना अपन पशु प्राणी हैं भैया, देखा ये समय उन्हों का देख रेख, स्वच्छ पानी, अस्वस्थ भोजन, तो भैया देखा ये सब हमार तो हर जिम्मेदारी बा हो। जौन अपन गोरु चौवा है ना,
1: हाँ
0: उन्हों का समय समय पे जौन है देख रेख करब जरूरी बा।
1: ये हो अधू भाई, देखा जौन अपन पशुअन की बात बताया हो तो देखा ये टेम जौन है, चाहे गाय होए, भैंस होए, भेड़ होए, बकरी होए, भैया तरह तरह के जौन अपन पशुपालक भैया जौन है पालत पोसत हैं भैया, उनका देखा ये बरसाती के महीना बा, तरह तरह के भैया देखा रोग बेरामी घेरत है, जैसे खुरपका रोग है, मुंहपका रोग है, साथे साथ देखा बहुत देखा जौन है बुखार आ जात है शरीर में, तरह तरह के छोट छोट देखा फुंसी फोड़ा देखा निकल आवत है। तो हम तो यह कहबो कि अपने किसान भैया बहनी हरन अपने पशुओं का ध्यान रखें, साफ सुरक्षा बढ़िया साफ साफ पानी पिलावें
0: बिल्कुल
1: भैया,
0: बिल्कुल।
1: देखा अपना साफ सुथरा जौन है चारा दें, और ध्यान रखें कि कौनो तरह के भैया अगल बगल कौनो तरह के देखा मासी मच्छर जौन है ना काट खाएं, काहे कि मासी मच्छर से ही तरह तरह के रोग बिरामी घेरत हैं हो।
0: बिल्कुल सही कही गया। देखा एक बात हम कहा,
1: हाँ हाँ
0: देखा
1: बतावा।
0: कौनों भी अगर बीमारी आवत है तो
1: हाँ
0: भैया ओकर लक्षण जैसे दिखाए भैया ने, देखा अपने बलाके में जाए के वहाँ भैया पशु डॉक्टर भैया बैठे थे,
1: हाँ हाँ
0: उनसे सलाह जरूर लें।
1: कही गया।
0: बिना सलाह के भैया कोनो दवा न खियावे के चाहिए जानवर के जौन है। अगर सलाह ली है तो अच्छी दवा मिले, और
1: हाँ
0: साथे साथे हम तो कहब अपने जानवर को भैया दिखाई देवे के चाहिए।
1: कही गया।
0: और अपन जौन है देखा एक बात हम और कहब
1: हाँ
0: कि
1: बतावा।
0: अपने पंचायती के जौन कार्यक्रम बाटे न,
1: हाँ
0: एक भैया जौन है हमारे किसान भैया हरे सुनत हैं, और एकरे बारे में उनका और का जानकारी चाहत हैं, ए पर
1: हाँ
0: भैया प्रतिक्रिया दे सकत हैं, तो
1: हाँ
0: एक हमारा व्हाट्सएप नंबर बाटे,
1: हाँ
0: वो हम
1: बतावा।
0: अपने पंच भैया हरिन के बताए दी। तो भैया देखा व्हाट्सएप नंबर बाटे 8004926250।
1: हाँ उधू भाई, हम तो समझते थे एक दार और हो सुना देता हो।
0: हाँ बिल्कुल भाई, देखा हो 8004926250।
1: हाँ उधू भाई, ये तो देखा अपन किसान भैया बहनी हरेन सुनिन, और देखा ये नंबर का अपन जरूर देखा अपन लिख पढ़ लें, और
0: बिल्कुल
1: अपन
0: बिल्कुल।
1: टेम टेम से अपन जो है जानकारी लेते रहें, और अपन देखा पंचायती सुनत रहें, और ये हो हम हरेक काम टेम टेम से निक लागत है, वो पंचायती से विदा लेकर बेला भवा हो तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्षमा कीजिएगा, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुसुम के लिए MSP में सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए

0: एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
1: कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी की रिकमेंडेशन आई और जो रबी सीजन के 6 बड़े क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड और सफ्लावर, इनके जो कमिटमेंट है कॉस्ट से मिनिमम 50% अधिक होना, उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये नए एमएसपी आज अप्रूव हुए हैं।
0: केंद्रीय कैबिनेट के रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के फैसले पर जौनपुर के किसान राजेश ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2: लगभग सभी प्रकार की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों के जीवन स्तर और कृषि का जो विकास होगा उससे भारत का गांव, गरीब और किसान लाभान्वित हो। मैं मोदी सरकार और उनके समस्त मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ।
0: मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का ट्रांसमिशन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और लाभकारी मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 5,547 करोड़ 99 लाख रुपए को मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,992 करोड़ 57 लाख रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,937 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन अरहर और 54 करोड़ 87 लाख रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग शामिल है। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 509 दिव्यांगजन को 664 सहायक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 लाख से अधिक दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को मजबूत किया है।
4: 17 लाख से अधिक जो दिव्यांग जन है उनकी डिजिटल पहचान को मजबूत करने का कार्य किया है और इन्हें उनका कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हमारा प्रयास है कि 2026-27 को इस जो वर्ष है इस वर्ष में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग जनों को पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के लिए शिविर लग सके।
0: प्रदेश के 9 केंद्रों पर आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में वर्षा के कारण बदलाव किया गया है। पहली अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार जिन 9 केंद्रों पर परीक्षा की तारीख बदली गई है उनमें 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली, 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर, 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएससी आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर शामिल है। पहली अक्टूबर के स्थान पर 8 अक्टूबर को परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने आज लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार

0: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर देना है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए।
1: सीतापुर के ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति व्यवहारिक, कौशल आधारित और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली है।
3: इस नई शिक्षा नीति से कौशल विकास के कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
0: बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी में घाघरा और बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 बाढ़ चौकियां और 16 राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
4: जहाँ पर ऐसा था कि नदी और बंधे के बीच में लोग बसे हुए हैं, तो बंधे पर ले जाया गया है। बाढ़ शरणालय स्थल जो है ले जाया गया, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है। लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी नहीं आई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्नदाता की खुशहाली सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने भरा पर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किस्सा गोई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी ताई इसरी का दूसरा भाग। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।
6: दोस्तों नमस्कार। वंदना जी नमस्कार।
7: नमस्कार दोस्तों, और नेहा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
6: वंदना जी, देखिए पिछली बार जो हम लोगों ने कृष्णचंद्र साहब की लिखी हुई कहानी ताई इसरी अपने दोस्तों को सुनवाई है, उसका पहला हिस्सा उन्होंने पिछले बुधवार को सुना
7: और लोगों ने बहुत पसंद किया है। नेहा जी,
6: ये तो जरा नवाजी है और कृष्णचंद्र साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
7: हाँ, उनकी लेखनी का ये जादू था। और नेहा जी, लेकिन अब

0: हमारे जो दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगला जो हम ये भाग लेकर आए हैं, जो कि अंतिम भाग है, उसमें क्या कुछ होगा। ताई इसरी की जो कहानी है किस किस मोड़ से गुजरेगी,
1: जी,
0: अब वो वहाँ तक चलने का समय हमारा भी आ गया है।
1: तो चलिए बिना देर किए हम कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। कलकत्ता से MBBS करने के बाद मैंने वही एक बंगाली लड़की से शादी कर ली और धर्मतल्ले में प्रैक्टिस करने लगा। कई साल कोशिश करता रहा मगर प्रैक्टिस न चली। चुनांचे में अपने बड़े भाई के इसरार पर लाहौर चला आया। भाई साहब ने कूचा ठाकुरदास के नुक्कड़ पर मुझे दुकान खोल दी और मैं अपने घर में यानी अपने मोहल्ले में अपनी बिरादरी ही के सहारे प्रैक्टिस चलाने लगा। कलकत्ता में मैं बिल्कुल अनाड़ी था। यहाँ आकर जब 8-10 बरसों में ग्राहक को फंसाने की तरकीब समझ में आई तो प्रैक्टिस खुद बखुद चल निकली। अब दिन रात मसरूफ रहता था, बच्चे भी हो गए थे, इसलिए जिंदगी सूत की अंटी की तरह एक ही मदार पर चक्कर खाने लगी। अब तो कई बरस से ताई इसरी का मुंह न देखा था। हाँ, मगर इतना सुन रखा था कि ताई इसरी इस मोहल्ला वंजारा में रहती हैं और ताया युधराज शाही मोहल्ले में उसी लक्ष्मी के मकान में रहते हैं। एक रोज में सुबह के वक्त मरीजों की भीड़ में बैठा नुस्खे तजवीज कर रहा था कि मोहल्ला वंजारा के एक आदमी ने आकर कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहिब, ताई इसरी मर रही है।
0: मैं उस वक्त सब काम छोड़ छाड़ कर उस आदमी के साथ हो लिया। मोहल्ला वंजारा के बिल्कुल उस आखिरी सिरे पर ताई इसरी का मकान था। जब मैं आहनी सलाखों वाले मोखे से गुजरकर उनके नीम तारीख कमरे में दाखिल हुआ तो वो बड़े बड़े तकियों का सहारा लिए पलंग से लगी बैठी थी। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी और उन्होंने बड़े जोर से अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ गोया अपने दिल को पकड़ रखा था। मुझे देखकर ही वो फूले फूले सांसों में मुस्कुराने लगी, बोली,
2: तू आ गया पुत्र, अब मैं बच जाऊंगी।
0: क्या तकलीफ हो गई है ताई?
2: होता क्या, मौत का बुलावा आ गया था। 2 दिन मुझे सख्त कस रही, फिर एकाएकी जिस्म ठंडा होने लगा। पहले टांगों से जान गई और जब मेरी जान ऊपर से भी निकलने लगी तो मैंने जोर से अपने कलेजे को पकड़ लिया। अरे कोई है तो जाए, जय कृष्ण के बेटे राधा कृष्ण को बुला के लाए, वही मुझे ठीक कर सकता है। अब तुम आ गए हो, अब मैं बच जाऊंगी बेटा, अब मैं बच जाऊंगी बेटा।
0: ताई जरा अपना ये हाथ इधर करो, तुम्हारी नब्ज देखूं।
2: वे तुम कैसे डॉक्टर हो, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि इस हाथ से तो मैंने अपनी जान पकड़ रखी है, इस हाथ की नब्ज तुझे कैसे दिखा सकती हूँ।
0: ताई चंद हफ्तों में अच्छी हो गई, उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जब वो जाती रही तो फिर उठकर घूमने लगी, लेकिन जब वो अच्छी हुई तो उसके चंद माह बाद हमारे ताया युधराज का इंतकाल हो गया। वहीं लक्ष्मी के घर शाही मोहल्ले में उनका इंतकाल हुआ, वहीं से उनकी अर्थी उठी क्योंकि ताई ने उनकी लाश को घर लाने की इजाज़त नहीं दी थी। ताई न अर्थी के साथ गई, न उन्होंने शमशान घाट का रुख किया, न उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक निकला था। उन्होंने खामोशी से अपने सुहाग की चूड़ियां तोड़ डाली, रंगीन कपड़े उतार कर सफेद धोती पहन ली और माथे का सिंदूर पोंछकर चूल्हे की राख अपने माथे पर लगा ली।
1: मगर उनके धर्म कर्म में और किसी तरह का फर्क न आया, बल्कि अपने सफेद बालों से

0: वो अब इस सफ़ेद धोती में और भी अच्छी लग रही थी। चंद बरस और गुजर गए। अब मेरी प्रैक्टिस इस कदर चमक उठी थी कि मैंने मोहल्ला ठाकुरदास के शाह आलमी गेट के अंदर कूचा कर्मा और वछोवाली के चौक में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जिंदगी कुछ इस नहज से गुजर रही थी कि ताई इसरी को देखे हुए डेढ़ डेढ़ दो दो बरस गुजर जाते थे। ताया युधराज ने अपने बैंक का रुपया भी लक्ष्मी को सौंप दिया था, मगर जालंधर की दुकान और मकान ताई इसरी के नाम लिख गए थे। उनसे हर माह ताई इसरी को 150 रुपया किराया आ जाता था। वो बदस्तूर उसी तरह मोहल्ला वंजारा में रहती थी और दिन रात अपने धर्म कर्म में डूबी रहती थी।
1: एक रोज इत्तेफाक से जब मैं शाही मोहल्ले में एक मरीज को देखकर लौट रहा था तो मुझे ताया युधराज की याद आ गई और उनकी याद से लक्ष्मी की याद आ गई, क्योंकि लक्ष्मी भी तो उसी शाही मोहल्ले में कहीं रहती थी। और जब लक्ष्मी की याद आई तो मेरा जहन फौरन ताई इसरी की तरफ मुंतकिल हो गया। मेरा जमीर मुझे मलामत करने लगा। खालिबन 12-15 महीनों से मैं ताई इसरी को देखने ना गया था। मैंने सोचा मैं कल या परसों पहली फुर्सत ही में ताई इसरी को देखने जाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि शाही मोहल्ले की एक गली से मैंने ताई इसरी को निकलते देखा। किरमिजी शाही के बजाय अब वो स्याह शाही का घाघरा पहने थी, जिस पर ना गोटा था ना लचका। कमीज भी सफेद रंग की थी और सर पर उन्होंने सफेद मलमल का दोहरा दुपट्टा ले रखा था, जिसमें उनका गोल मटोल चेहरा बिल्कुल मैडोना की तरह मासूम और पुर असरार नजर आ रहा था। जिस लम्हा मैंने उन्हें देखा उसी लम्हा उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे देखते ही वो शर्मा सी गई और फौरन मुझसे कतरा कर वापस गली में जाने लगी कि मैंने उन्हें फौरन आवाज दे दी, ताई इसरी, ताई, मैंने चिल्ला कर कहा। फिर मैंने आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो पलट आई, सामने आकर एक गुनहगार मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। मैंने कुछ हैरत और कुछ गुस्से में कहा, ताई इसरी, तुम यहां क्या करने आई हो?
0: वे पुत्र, क्या बताऊं, वो मैंने सुना था कि लक्ष्मी बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। मैंने सोचा उसे देख आऊं।
1: तुम यहां लक्ष्मी को देखने आई थी, उस बज़ात जिसने
0: ना काका, उसको कुछ ना कहो, मरने वाले की यही एक निशानी रह गई थी, आज वो भी चल बसी। सन 1947 के फसादात में हम लोग लाहौर छोड़कर जालंधर में पनाह गजीन हुए, क्योंकि यहाँ पर ताई इसरी का घर था। खासा खुला दो मंजिला घर था। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रिश्तेदार पनाह गजीनों को दे डाली थी, निचली मंजिल में वो खुद रहा करती थी। हर रोज़ वो रिफ्यूजी कैंपों में सेवा करने जाती और कभी कभार दो एक यतीम बच्चे उठा लाती। 4-5 माह में ही उन्होंने 4 लड़के और 3 लड़कियां अपने पास रख ली, क्योंकि उनके माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता था। होते होते एक अच्छा खासा घर सराय में तब्दील हो गया। वो अपने घर में भी बाहर से इस तरह आती थी जैसे वो घर उनका ना हो, उन पनाह गजीनों का हो। औरतों में शख्सी जायदाद के हिस बहुत तेज होती है, मगर मैंने औरतों में तो क्या, मर्दों में भी ऐसा कोई फर्द मुश्किल से ही देखा होगा जिसे ताई इसरी की तरह शख्सी जायदाद का इस कदर कम एहसास हो।
1: कुदरत ने उनके दिमाग में शायद ये खाना खाली रखा था। उनके पास जो कुछ था दूसरों के लिए वक्फ था। जालंधर आकर वो सिर्फ एक वक्त खाना खा

0: आने लगी थी। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ता था क्योंकि मैंने अपनी कीमती प्रैक्टिस लाहौर में खो दी थी। मेरी मॉडल टाउन वाली कोठी भी वहीं रह गई थी और अब मेरे पास सर छुपाने को कहीं जगह न थी। मेरे पास न ढंग के कपड़े थे, न रुपया पैसा था। जो मिला खा लिया, जब मिला खा लिया, ना मिला तो भूखे रह गए। उन्हीं दिनों मुझे खूनी बवासीर लाहक हो गई। दवाएं तो मैंने तरह तरह की इस्तेमाल की क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मगर बेसरो सामानी में इलाज के साथ परहेज जरूरी है, वो कहाँ से होता। नतीजा हुआ कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। कुछ रोज तक तो मैंने ताई से अपनी हालत को छुपाए रखा, मगर एक दिन उन्हें पता चल ही गया। फौरन घबराई घबराई मेरे पास पहुंची।
1: काका, मैं तुमसे कहती हूँ, ये खूनी बवासीर है, ये डॉक्टरी इलाज से न ठीक होगी। तुम ऐसा करो, किराया मुझसे लो और सीधे गुंजरावाला चले जाओ। वहाँ मोहल्ला सुनियारा में चाचा करीम बख्श जर्राह रहता है। उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। तेरे ताया को भी आज से 20 साल पहले ये तकलीफ हो गई थी और चाचा करीम बख्श ही ने ठीक कर दिया था।
0: ताई, मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं गुजरांवाला नहीं जा सकता।
1: क्यों नहीं जा सकता? टिकट के पैसे मैं देती हूँ। मैं
0: टिकट का सवाल नहीं है ताई, गुजरांवाला अब पाकिस्तान में है।
1: पाकिस्तान में है तो क्या हुआ? क्या अब हम दवा दारू के लिए वहां नहीं जा सकते? वहां अपना चाचा करीम बख्श।
0: ताई, तुझे कुछ मालूम तो है नहीं, खामखा उल्टी सीधी बातें करती हो। अब ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी।
1: पासपोर्ट? क्या उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है?
0: हाँ हाँ, उसके लिए कचहरी जाना पड़ता है।
1: ना बेटा, ना, कोर्ट जाना तो अच्छा नहीं है। शरीफों के बेटे कभी कचहरी नहीं जाते। मगर वो चाचा करीम बख्श,
0: भाड़ में जाए चाचा करीम बख्श, 20 साल पहले की बात करती हो। जानी वो तुम्हारा चाचा करीम बख्श आज जिंदा भी है या मर गया।
1: ताई रोती हुई वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे अपनी तुनक मिजाजी पर बेहद अफसोस हुआ। क्यों मैंने मासूम औरत का दिल दुखाया? अगर ताई आज की जिंदगी की बहुत सारी दुश्वारियों को नहीं समझ सकती है तो इसमें उनका क्या कसूर है? कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर इनकलाब की बातें करता था, फिर जब जिंदगी ने मुझे कामरानी बख्शी और मेरी प्रैक्टिस चल निकली तो इनकलाब का जोश सर्द पड़ गया। अब जालंधर आकर जो ये उफ्ताद पड़ी तो मेरे दिल में फिर से इनकलाब के ख्याल ने खरबट ली और मैं अपनी तरह के चंद जोशीले और लुटे पिटे लोगों की सोहबत में बैठकर फिर से उसी तलखी और तेजी और तुंदी से इनकलाब की बातें करने लगा।
0: ये सब लोग अक्सर ताई इसरी की दूसरी मंजिल में मेरे कमरे में मिलते। चाय का दौर चलता और दुनिया जहान की बातें होती और मैं जोश में अपना मुक्का हवा में लहरा कर कहता, हमसे इंसाफ नहीं हो रहा और उन लोगों से इंसाफ की तवक्को भी नहीं है। यकीनन इस मुल्क में फिर एक इनकलाब आएगा और जरूर आकर रहेगा वो इनकलाब। एक दिन ताई इसरी ने हमारी बातें सुन ली तो घबराई घबराई अंदर आई और बोली,
1: बेटा क्या मुसलमान यहाँ फिर आएंगे?
0: नहीं नहीं ताई, तुमसे किसने कहा?
1: तो तुम यहाँ किस इनकलाब का जिक्र कर रहे हो जो यहाँ आएगा?
0: ताई ने इनकलाब को मुसलमान समझा था। जब ये बात हमारी समझ में आई तो हम सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। कितनी भोली है हमारी ताई। अरे ताई, हम तो उस इनकलाब का जिक्र कर रहे हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो सबका इनकलाब है। हम तो उस इनकलाब को लाना चाहते हैं।
1: अच्छा अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं सबके लिए

0: बना लाती हूँ।
1: ताई ने मेरी मदद के लिए अपना 16 तोले का एक गोखरू बेच दिया। उस रकम को लेकर मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गया, क्योंकि जालंधर में अफरा तफरी थी और गैर यकीनी सी हालत हर वक्त छाई रहती थी। दिल्ली आकर मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं अखरोल बाग में प्रैक्टिस करता था और अखरोल बाग लाहौर के बहुत से रिफ्यूजियों से भरा पड़ा था। हौले हौले मैंने अपना अड्डा ठीक से जमा लिया, प्रैक्टिस चमक उठी। 10 साल में मैंने अखरोल बाग में अपनी कोठी खड़ी कर ली, गाड़ी भी खरीद ली। अब अखरोल बाग के सरकर्दह अफराद में मेरा शुमार होता था।
2: 13 साल के बाद मार्च में मुझे एक अजीज की शादी में जालंधर जाना पड़ा। इस 13 साल के अरसे में मैं ताई इसरी को भूल भाल गया था। रिश्तेदार तो उस वक्त याद आते हैं जब मरीज ना हो, लेकिन जालंधर पहुंचते ही मुझे ताई इसरी की याद आ गई, उनके एहसानात याद आए, वो सोने का गोखरू याद आया जिसे बेचकर मेरी प्रैक्टिस चलाने की रकम बहम पहुंचाई गई थी, और वो रकम मैंने आज तक ताई इसरी को अदा नहीं की थी। जालंधर स्टेशन पर उतरते ही मैं सीधा ताई इसरी के घर चला गया। घर में उस वक्त ताई के सिवा कोई न था। वो अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाए फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर वापस घूम रही थी। उन्होंने मेरी आहट पाकर पूछा,
0: कौन है?
2: मैं हूँ, मैंने कमरे में कदम बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। ताई 2 कदम आगे बढ़ी मगर मुझे पहचान न सकी। 13 बरस का अरसा भी एक अरसा होता है। इस अरसे में वो बेहद नहीफो नजार हो गई थी, उनका चेहरा भी दुबला हो गया था और वो हौले हौले कदम उठाती थी। ताई, मैं राधा किशन हूँ।
0: जय किशन दा काका,
2: ताई की आवाज भर्रा गई।
0: इतने दिन कहाँ रहे बेटा, अपनी ताई को भी भूल गए?
2: इंतहाई शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह ना सका। ताई ने मेरी परेशानी को फौरन भांप लिया, जल्दी से फूले फूले सांसों में उखड़े उखड़े लहजे में बोली,
0: सरोज राजी खुशी है ना?
2: हाँ ताई।
0: और वो वट्टा काका?
2: डॉक्टरी में पढ़ता है।
0: और निका?
2: वो कॉलेज में पढ़ता है।
0: और शहनो बिट्टू?
2: वो दोनों भी कॉलेज में पढ़ती हैं ताई।
0: मैंने भी सावित्री की शादी कर दी है, पूरन अब रुड़की में पढ़ता है। निम्मी और बन्नी के माँ बाप मिल गए थे, वो आकर उनको 6 साल बाद ले गए थे। मेरे पास तो अब सिर्फ गोपी रह गया है, अगले साल वो भी रेलवे वर्कशॉप में काम सीखने के लिए चला जाएगा।
2: ये ताई के उन यतीम बच्चों की दास्तान थी जो उन्होंने फसाद में लेकर पाले थे। मैंने नाखून से अपनी ठोड़ी खुजाते खुजाते कहा, ताई वो तेरा कर्जा मुझ पर बाकी है। कैसे बताऊं, कितना शर्मिंदा हूं, अब तक न भेज सका, अब दिल्ली जाते ही भेज दूंगा ताई।
0: कैसा कर्जा बेटा?
2: वही गोखरू वाला ताई।
0: अच्छा, वो तो तेरा कर्जा था बेटा जो मैंने चुका दिया।
2: मेरा कर्जा कैसा था ताई?
0: ये जिंदगी दूसरों का कर्जा है बेटा, उसे चुकाते रहना चाहिए। तू क्या इस संसार में खुद पैदा हुआ था? नहीं नहीं, तुझे तेरे माँ बाप ने जिंदगी दी थी, तो फिर तेरी जिंदगी किसी दूसरे का कर्जा हुई कि नहीं? फिर ये कर्जा हम नहीं चुकाएंगे तो ये दुनिया आगे कैसे चलेगी?

0: प्रलय आ जाएगी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ मैंने तेरा अखर्जा चुकाया है, तू किसी दूसरे का अखर्जा चुका दे। हर दम चुकाते रहना जीवन का धर्म है।
1: ताई इतनी लंबी बात करके हांफने लगी, मैं क्या कहता, रोशनी से साया कह भी क्या सकता है, इसीलिए मैं सब कुछ सुनकर चुप हो गया। वो भी चुप हो गई, फिर आहिस्ते से बोली,
0: अब मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, वरना तेरे लिए खाना पकाती। अब गोपी आएगा तो खाना बनाएगा तेरे लिए, खाना खाकर जाना।
1: नहीं ताई, इसकी जरूरत नहीं, वहां भी तेरा ही दिया खाते हैं, मैंने आहिस्ते से कहा। मैं यहाँ तेजपाल की शादी पर आया था, स्टेशन से सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अब शादी वाले घर जाऊंगा ताई।
0: बुलावा तो मुझे भी आया है, मगर दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। शगुन मैंने भेज दिया था, तुम मेरी तरफ से तेजपाल के सर पर प्यार देना।
1: बहुत अच्छा ताई, ये कहकर मैं ताई के चरणों में झुका, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया, मेरे सर पर हाथ फेर कर सौ सौ दुआएं देकर बोली,
0: बेटा बेटा मेरा एक काम करोगे?
1: हुक्म करो ताई।
0: क्या कल तुम सुबह आ सकते हो?
1: क्या बात है ताई, अब मैं तुमसे मिलके तो जा रहा हूँ।
0: मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, रात में मुझे कुछ नजर नहीं आता, ऐसा जन्म जला अंधेरा छाया है कि कुछ नजर नहीं आता। बेटा किसी वक्त दिन में आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूंगी, 13 साल से तुझे नहीं देखा काका।
1: मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने गुलूकीर लहजे में कहा, आ जाऊंगा ताई। दूसरे दिन बारात के लोग कुछ आने वाले थे, सुबह ही हम लोगों को पेशवाई के लिए स्टेशन पर जाना था, वहां से लौटते वक्त मुझे याद आया, मैं उन लोगों से माजरत करके ताई इसरी के घर की तरफ हो लिया।
0: मकान की निचली मंजिल पर मुझे और बहुत सारे लोग रोते हुए मिले, मालूम हुआ आज सुबह ताई इसरी की मौत वाकई हो गई। अंदर कमरे में उनकी लाश पड़ी थी, एक सफेद चादर में मलबूस, चेहरा खुला रहने दिया गया था, कमरे में कपूर और लोबान की खुशबू थी और एक पंडित हौले हौले वेद मंत्र पढ़ रहा था। ताई इसरी की आंखें बंद थी और उनका मासूम भूरा भूरा चेहरा पुरसुकून खामोश और गहरे ख्वाबों में खोया हुआ, ऐसा मालूम होता था जैसे वो ताई इसरी का चेहरा ना हो, धरती का फैला हुआ लामुतनाही चेहरा हो, जिसकी आंखों से नदियां बहती हैं, जिसकी हर शिकन में लाखों वादियां इंसानी बस्तियों को अपनी आगोश में लिए मुस्कुराती है, जिसके अंग अंग से बेगर्ज प्यार की महक फूटती है, जिसकी मासूमियत में तख्लीक की पाखीजगी छलकती है, जिसके दिल में दूसरों के लिए वो बेपनाह ममता जागती है, जिसका मजा कोई कोख रखने वाली हस्ती ही पहचान सकती है।
1: मैं उनके पांव के करीब खड़ा उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, यकायक किसी ने आहिस्ते से मेरे शाने पर हाथ रखा, मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक 22-23 बरस का नौजवान खड़ा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मालूम होता था कि अभी रोई हैं, अभी रो देंगी।

0: उसने आहिस्ते से कहा, मैं गोपीनाथ हूँ। मैं देशपाल के घर आपको ढूंढने गया था, मगर आप स्टेशन पर गए हुए थे। सुबह ताई ने आपको बहुत याद किया था, उन्हें मालूम था कि आप आने वाले हैं, इसलिए वो मरते मरते भी आपका इंतजार करती रही। आखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि मरने का वक्त आन पहुंचा और आप नहीं आएंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरा बेटा राधा किशन आए तो उसे ये दे देना। ये कहकर गोपी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरी हथेली पर एक चवन्नी रख दी। चवन्नी देखकर मैं रोने लगा। मुझे नहीं मालूम आज ताई इसरी कहाँ है, लेकिन अगर वो स्वर्ग में है तो वो उस वक्त भी यकीनन एक रंगीन पीढ़ी पर बैठी अपनी पुच्छी सामने खोलकर बड़े इत्मीनान से देवताओं के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें चवन्नियां ही बांट रही होंगी।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी ताई इसरी। कृष्णचंद्र साहब की लिखी हुई ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली है। मेरे जहन में भी कुछ बातें उभर रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो बेकनार आँखें बहुत कम लोगों की होती हैं, जिसमें अथाह प्रेम हो, करुणा हो, जिसमें कहीं कोई किनारा ना हो, वो खुदा की नेमत ही थी। तो इस कहानी ने सच में दिल में एक अलग तरह का स्थान बनाया है। हम लोगों ने आज इस कहानी को अपने स्टूडियो में पढ़ा और न जाने कितने लोग पढ़ते रहे हैं और पढ़ते रहेंगे और कहानियों से प्रेरणा लेते रहेंगे। और फेवरेट जो शख्सियतें जहन में बसती हैं, ताई इसरी मेरे जहन में तो बस गई है
2: और यकीनन हमारे श्रोताओं के दिलो दिमाग में भी जरूर उन्होंने बसेरा कर लिया होगा। और अब विदा की बारी आ गई है नेहा जी।
1: बिल्कुल, तो अब हम विदा लेते हैं और कहते हैं
2: नमस्कार।
3: किस्सा गोई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी ताई इसरी का दूसरा भाग। स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
5: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ईशा अग्रवाल से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। विषय है ठहराव की आवश्यकता, कर्ता से दृष्टा की ओर।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी जो आज की जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ और गलत नहीं भी हूँ, वो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम खुद से दूर हो जाएं, खुद से दूर होते जा रहे हैं। कितना ज़रूरी है जीवन में ठहराव होना। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर्फ बन कर के ज़िंदगी की गज़ल में बैठो, खुद को तैयार करो, खुद के अमल में बैठो, सिर्फ बैठे ना दिखो यार, असल में बैठो। खुद से मिलना है अगर खुद के बगल में बैठो, और ये बैठना ही ठहराव है। आज हम बात करेंगे ठहराव की, क्यों ज़रूरी है जीवन में इतना ठहराव, जब हम कहते हैं कि जीवन ही चलते रहने का नाम है। और इस बड़े आध्यात्मिक से विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ईशा अग्रवाल जी को। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। ईशा जी, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जब सब कुछ चल रहा है, समय भी चल रहा है, तो ठहराव क्यों जरूरी है?
2: आपने इतना सुंदर बोला अभी, मैं मंत्रमुग्ध थी, बट हर शब्द के बीच में भी एक ठहराव था। आपके बोलने से जो अर्थ हम समझ पाए वो शायद इसी कारण था कि देयर वाज अ साइलेंस बिटवीन एवरी सिंगल वर्ड एंड दैट एडेड मीनिंग टू इट। ठहराव इज नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर अस, बट वी मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। हम सोचते हैं कि शायद हम 60-65 साल के हो जाएं, ऋषिकेश की किन्हीं पहाड़ियों में किसी आश्रम में शायद कोई गुरु मंत्र मिले और जो मेरा आध्यात्मिक पार लगा दे, बट ऐसा होगा नहीं।
1: क्यों?
2: क्योंकि जिस ठहराव की हम बात कर रहे हैं वो अभी है, आज है, इस ही क्षण में है, वो कहीं बाहर नहीं है। और ये सारी बातें हम जानते समझते हुए भी कभी उसको अपने जीवन में नहीं उतारते।
1: कितनी देर का ठहराव जरूरी?
2: दो शब्दों के बीच का मौन अपने आप में ही काफी लंबा है, अगर हम उसे समझने का प्रयास करें, उस मौन की भाषा को वो तवज्जो दें जो हम नहीं देते। हमें लगता है अगर मैं आपकी कोई बात सुन रही हूँ तो मेरा ध्यान इस पे होता है कि मैं आपको जवाब क्या दूंगी, और ये अधिकांश ऐसे ही सभी करते आ रहे हैं
1: जी।
2: बट कितनी देर का, देयर इज नॉट, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, देयर इज नो फिक्स रूल, बट ये कभी भी कहीं भी पूरे बेहोशी में, पूरे होश में, किसी भी तरीके से मुमकिन है।
1: जब हम बात करते हैं ठहराव की तो आमतौर पर जो एक दिमाग में चीज़ प्रतिध्वनित होती है, साउंड करती है, वो है कि रुक जाना, सारे काम धाम छोड़कर कहीं दूर सुदूर हिमालय में चले जाना, थोड़ी देर के लिए तपस्या करना, ध्यान करना, योग करना। क्या यही ठहराव है या ये घर पर रह कर के भी किया जा सकता है?
2: आपने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया, करने तो चले जाते हैं सब, फिर वापस आते हैं, और शायद 2-3-4 दिन तक ही वो कंटिन्यू हो पाता है, फिर आप वापस अपने दैनिक दिनचर्या पे आ जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पे हमें भी पता है, ट्रिप्स हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि हम ठीक ठाक पैसा खर्च करते हैं। वापस तो घर ही आया आप भूल के, द राइट वे टू से सुबह का भूला शाम को घर आया। तो हमने सेरेमोनियल जो बना दिया है कि नहीं कुछ करके ही होगा, बिना कुछ करे भी तो देख सकते हैं, जो हमेशा एक कर्ता भाव बहुत प्रगाढ़ है हमारे अंदर कि मैं मौन हो जाऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे ये प्रयास करके ऐसा करना है, उसे दृष्टा की ओर जा पाना, देख पाना कि देयर इज अ डांस ऑफ नेचर दैट्स हैपनिंग ऑल द टाइम, बट आई हैव नेवर एवर पॉज्ड इनफ टू विटनेस इट।
1: ये जो आप जितनी आसानी से कह रही हैं ईशा जी, ये इतना आसान है क्या? थोड़े और आसान शब्दों में आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर कुछ बताना चाहें।
2: आसान शब्दों में सर, ऐसा अक्सर होता है कि हम बहुत सारी ऐसी स्थितियों में फंसते हैं जहाँ एक बैकग्राउंड कॉमेंट्री लगातार हमारे दिमाग में चल रही है। हम अपने साथ एकांत में दो क्षण भी नहीं बिता सकते। अधिकांश लोगों का कहना है कि भाई मुझे मेरे साथ अकेला मत छोड़ो, कुछ भी करा लो, अकेला मत छोड़ो वरना मेरा दिमाग मुझे पागल कर देगा। इन सबके बीच में जो बैकग्राउंड कॉमेंट्री चल रही है, पहले तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे एक्नॉलेज करें कि विचारहीन होना तो मुमकिन नहीं है अगर आप भौतिक जगत में हैं। तो यदि नहीं है तो क्या हम इन विचारों को देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये विचार किसी ना किसी डेटा से ही सोर्स्ड हैं? और अगर हम इन्हें पावर ना दें तो जरूरी नहीं है, जैसे आप हाईवे के किनारे बैठे।
1: मैं आपको रुकना चाहूंगा ईशा जी, दो चीजें हैं, एक विचारहीन होना, एक है विचार शून्य होना, मतलब अपने आप को थोड़ी देर के लिए विचारों से खाली कर देना। क्या इसी को आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव या ठहराव कह रही हैं?
2: शायद हाँ भी और शायद नहीं भी, क्योंकि फिर जैसा मैंने कहा ना सर, अभी आपने कहा कि कर्ता मैं कर पाऊंगा, आप विचार

0: उन्हें खुद को कर सकते हैं क्या,
1: जी
0: ये भी विचारणीय है।
1: बिल्कुल सही बात है, ये भी विचारणीय है। और अभी जो आपने बात कही कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, कुछ वाक्य चलते रहते हैं, भले वो बाहर ना सुनाई पड़े लेकिन अंदर हमको खुद को सुनाई पड़ते रहते हैं, ये इस तरह की बातें या कुछ बीती हुई बातों को दोहराना या सबके जीवन में चलता रहता है, आमतौर पर कोई एक्सप्रेस नहीं करता या जाहिर नहीं करता, ये किस तरह से प्रभावित करता है जीवन को?
0: एक्सप्रेस नहीं करता, दबाता रहता है, सप्रेस ज़रूर करता है और मान के चलता है कि अरे मैं तो इनसे प्रभावित नहीं हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। आप जितना चाहेंगे मैं आपसे कहूँ कि आप इस बारे में मत सोचिए, मैंने कहा आप एक बंदर के बारे में मत सोचिए, तो सबसे पहले आप बंदर के बारे में ही सोचेंगे, शायद आपको मेरे चेहरे पे एक बंदर जैसा ही रूप दिखे।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है।
0: तो अगेन एज आई सेड, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज एज सिंपल एज ट्राइंग टू सी एवरीथिंग फॉर व्हाट इट इज। थॉट्स हैं, डेटा है तो रहेंगे, पहले तो माने कि उनका होना स्वाभाविक है और मैं उन विचारों को बनते, उनका तांडव होते और उनको जाते भी देख सकता हूँ, ये मेरी समझ में दृष्टा भाव है। इसके प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बहुत चणिक है, मे बी फॉर आउट ऑफ 10 times मे बी 1 time ओनली, 9 times इट विल नॉट हैपन, बट इवन इफ फॉर वंस इट हैपन्स इट वर्क वंडर्स। इसलिए भी क्योंकि दृष्टा बनना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, आपको लगे कि भाई आप एसेटिक हो गए हैं, नो, इफ यू विल नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम योर थॉट्स, सरप्राइजिंगली फॉर मी इट वर्क्स दैट योर प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वो नैरेटिव जो पीछे लगातार चल रहा है आप उससे दूरी बना पा रहे हैं और उस क्षण जो करना है आप वो कर पा रहे हैं।
1: आप विद्यार्थियों के बीच में काफी रही हैं, काफी समय आपने बताया है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भी आप बहुत करीब से जानती हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एक रेस्टलेसनेस है, एक जो अजीब सी चिंता, चिंता तो नहीं कहेंगे, व्याकुलता है आजकल के जो यूथ में देखी जा रही है, और फिर से मैं कहूँगा कई बार, ज़्यादातर बार या शायद हर बार कई मामलों में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या जाहिर नहीं कर पाते, ये किस तरह से एक भविष्य को, एक युवा को या एक पूरी की पूरी अपने आप में अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है या कर सकता है?
0: प्रभावित तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्थिति है अगर मैं सच बोलूँ तो। मैंने जितना भी इंटरेक्ट किया बच्चों से, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत प्रेशर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, प्योर है, आप और मैं मिलेनियल्स हो सकते हैं, हम एक अलग समय में पैदा हुए, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी समझी, बट जेंजी बोल के जिन बच्चों को हम टारगेट करते हैं, वी शुड बी वेरी एक्नॉलेजिंग टू द फैक्ट दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट। बहुत कुछ उन बच्चों ने वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुए हैं, दे नो व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। इन सबके बीच में जो आज एक एस्पिरेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट स्कोर्स आ रहे हैं बच्चों के, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो द लूप रिमेन्स द सेम, दैट एक्सपेक्टेशंस आर देयर नॉट जस्ट फ्रॉम योर फैमिली बट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम एवरीवन। तो मेरा जितना भी इंटरेक्शन रहा सर, मैं प्रयास कर पाई कि शायद 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बस मौन बैठें, कुछ नहीं करें, कुछ देर, थोड़ी सी देर बस मौन बैठ के ठहर के ये जाने कि जो भी बाहर कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे हैं वो मिला ही हुआ है। एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स कल के लिए जी रहे हैं और आज तो हम उन बच्चों को देख ही नहीं पा रहे हैं जब तक उनकी AIR 1 नहीं होगी।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि मौन जरूरी है, मौन अभिव्यक्ति की एक मुखर अभिव्यंजना है, लेकिन आपने बात की जेन जी की, वो क्यों ठहरे, अगर वो नहीं ठहरेंगे तो क्या छूट जाएगा उनसे, क्या बिछड़ जाएगा, क्यों जरूरी है? सब कुछ तो आजकल जल्दी हो रहा है, इवन AI के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, हम सब कुछ तुरंत हमारे पास होता है, कल्चर ऑफ इंस्टेंट एवरीथिंग, तो वो क्यों ठहरे?
0: बिल्कुल, बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन है, क्योंकि आप और मैं जो कुछ सालों पहले 20 घंटों में काम करते थे वो आज 20 सेकंड में हो जाता है। AI टूल्स की होड़ है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर एक डायमेंशन है मगर जो हमने हमेशा आखिर में एक्सप्लोर करने के लिए रखा है, हमारा अंतर्व, जो हमारा अंतर्मन है, उस ओर तो हम कभी नहीं मुड़ते। ठहरना इसीलिए कि इन सारे शोर, इन सारी दौड़, इन सारे कॉम्पिटिशन के बीच आपको सम्मिलित होना है, you have to be there a part of the race and even win it sometime, but with an awareness that this is something that's constantly happening in the outside world and even keep on witnessing that as well. To Gen Z jinke paas aaj bahut kuch hai, bahut competition hai, we know as a matter of scientific fact Gen Alpha jo ab

0: पैदा हो रही हैं या हो चुकी हैं कुछ 2-3 साल पहले, दी IQ लेवल्स आर वेरी लो. हम सबको ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट पता है, हमें पता है रील्स हमारे साथ क्या कर रही हैं. वो मिनी डोपामाइन्स एड्रेनालिन्स के चक्कर में हम कब 5 से 2.5-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करते चले जाते हैं, होश में रह के भी बेहोश रहते हैं. ये सब सब जान रहे हैं.
1: बिल्कुल. आपको क्या लगता है, मैं ये प्रश्न पूछने ही वाला था, कि जब स्कूलिंग शुरू होती है तो क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसको आप सेल्फ हीलिंग कह सकते हैं या एक आत्मावलोकन कह सकते हैं या यो साधारण और साधारण भाषा में योग जैसी चीज़ें, ध्यान जैसी चीज़ें, प्राणायाम जैसी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ज़रूरी है?
0: बिल्कुल होना चाहिए. आपको अगर मैं इसे ऐड ऑन करूँ तो मैं खुद एक शोध छात्रा भी हूँ अभी. आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स और अभी मेरा शोध भी इसी विषय पे है. मैं उपनिषदों को पढ़ रही हूँ और मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना जान रही हूँ कि कितने ज़्यादा शैक्षिक सिद्धांत हमेशा से उनमें प्रतिष्ठापित थे, मगर हमने हमेशा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चलते ये माना कि जो हमें बताया गया है वही पूर्णतया सत्य है, जो कि नहीं है. तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. वो जो गुरु शिष्य संवाद हुए हैं वो खूबसूरत हैं, बहुत सरल हैं, मगर हम तक कभी पहुँचे नहीं. मेरी भी स्कूलिंग एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से हुई है
1: जी.
0: मगर ये सच है कि मुझे गायत्री मंत्र के अलावा शायद और कुछ नहीं आता था, बट आई न्यू हाउ टू से आवर फादर इन हेवन.
1: आपको लगता है कि उन जड़ों की ओर लौटना
0: बहुत
1: ये
0: बहुत ज्यादा जरूरी है? भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहे हैं, इतना जरूरी है कि, और बच्चे, मुझे जहां तक लगता है बच्चे इसमें अब प्राइड लेना भी शुरू कर रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है. मैं खुद भी बहुत नजदीकी तौर पे इन सब चीजों से जुड़ी हूँ तो मुझे पता है कि ठीक ठीक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बच्चे समझ भी रहे हैं. एक प्रॉपर जो एक रेवोल्यूशन होना चाहिए एजुकेशन में, वो शुरुआत हो चुकी है.
1: जब आपने कहा काम हो रहा है तो जो सबसे पहले दिमाग में एक दृश्य बनता है कि कोई संगठित प्रयास शायद कभी कहीं चल रहा हो. इस तरह की किसी प्रयास, किसी पहल से आप परिचित हैं? अगर हैं तो हमारे श्रोताओं को भी बताएं. या इसमें एक मैं प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा कि शुरू कहाँ से करें अगर कोई करना चाहे तो?
0: शुरुआत बहुत सरल है सर. अभी आप और हम बातचीत कर रहे हैं, आप चाहें तो इस सत्र के दौरान ही बिना आंख बंद करे, बिना अपना पोस्चर सही किए 2 मिनट ठहर सकते हैं और बस दृष्टा बन के देखें.
1: ये बहुत अच्छी बात कही है आपने. और खासकर जब हम बात करते हैं भारत जैसे देश की, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत में पाए जाते हैं. आज जब ठहराव की बात हम कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसके दुष्परिणामों पर भी एक नजर डालें, इसके अभावों के दुष्परिणामों पर. आजकल डिप्रेशन या अवसाद जिसे हम कहते हैं, या नशे की लत में फंसने वाली जो एक प्रवृत्ति होती है, वो बहुत आम हो गई है युवाओं में. समय हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है. अंत में चलते चलते कोई एक छोटा सा प्रयोग या कोई एक ऐसी केस स्टडी या कुछ एक ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं से, हमारे माध्यम से साझा करना चाहें या कोई अपील करना चाहें?
0: मैं खुद एक छोटे से प्रयास की संस्थापिका हूँ और बहुत सरल है, उसी नाम पे है जो मैंने आपसे जिक्र करा, अंतर्व के नाम पे है. हम कोशिश यही कर रहे हैं, हम जितने लोगों से, जैसे भी लोगों से, जहाँ जहाँ बात कर पाए सबसे जाके यही बोल रहे हैं, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि वो बहुत थोड़े हमें लगते हैं, बट जब मौन बैठें, खुद के साथ बैठें, एकांत बैठें, तो वो 1 घंटे के जैसे ही अनुभव में आते हैं. और शायद पहली बार तब रुक के, ठहर के जाने कि हाँ, ये देखने योग्य तो है, काम करने योग्य तो है और प्रयास चाहिए, छोटा सा प्रयास. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके सब छोड़ छाड़ के बैठें, बस वो जाग लाने की, वो होश लाने का प्रयास करें कि विचार हैं, ठीक है, मेरा प्रभावित होना उनसे हमेशा ज़रूरी नहीं है. अभी इसी वक्त, भूत और भविष्य के अलावा, इस वर्तमान में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो करूँ.
1: बिल्कुल, इस वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, हम वो करें, क्योंकि हमें एक सीख, एक मील का पत्थर स्थापित करना होगा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है आने वाली पीढ़ियों के लिए. एक संक्रमण काल था जो हम गुजार चुके हैं, गुजार रहे हैं. बहरहाल, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही. हमारे साथी ईशा अग्रवाल, हम बात कर रहे थे जीवन में ठहराव के ऊपर. अगली बार इसी कार्यक्रम में फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे. तब तक के लिए मुझे, यानी अभिनव प्रज्ञा पांडे को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ईशा अग्रवाल से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत. विषय था ठहराव की आवश्यकता, कर्ता से दृष्टा की ओर.

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम आज और कल। संगीत दिया है रवि ने, शब्द रचना साहिर की।

0: है तुम्हें ये वादियां ये फिजाएं।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म का ये गाना, संगीत है एस डी बर्मन का, शब्द रचना मजरूह की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, कभी कभी फिल्म से। संगीत है खयाम का, शब्द रचना साहिर की।

श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इसे गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

पर संगत की है आरुष मिश्र ने, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल ने, ऑर्गन पर व्यंकटेश मिश्र, ऑक्टोपेड पर आशीष भट्ट। तो लीजिए सुनिए आस्था सिंह की आवाज में कबीर दास की रचना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आस्था सिंह की आवाज में ये भजन। आपके साथ तबले

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आस्था सिंह की आवाज में भजन। आपके साथ तबले पर संगत की थी आरुष मिश्र ने, हारमोनियम पर महेश्वर दयाल ने, ऑर्गन पर व्यंकटेश मिश्र ने, ऑक्टोपैड पर आशीष भट्ट ने। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390

0: रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इसे ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों

0: पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन

0: कोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया, वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में तलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28. Clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intrastate power transmission network. Also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136.

0: capable and resilient economy to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. With Dipendra Kumar, Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
1: The government has advised Indian nationals against voluntarily giving up their Indian citizenship to join the Russian armed forces. In a statement, the Ministry of External Affairs advised Indian nationals travelling to Russia to exercise caution when pursuing job opportunities there. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Gangas and Kapil Pokharia finishing on the podium today. Later in the day, wrestler Sunil Kumar won bronze in the men's 87-kilogram Greco-Roman event, beating the Philippines' Callum Johnston-Roberts 9-0. In women's hockey, India defeated South Korea 2-0 this evening to reach the final. Ishika Chaudhary and captain Salima Tete scored for India. In squash, Indian men's and women's teams advanced to the semi-finals, assuring 2 more medals. The top-seeded and defending champion men's team beat Kuwait 2-0. In men's cricket, chasing a target of 406 runs set by West Indies, India were 307 for 1 in 30.2 overs in the second ODI of the 3-match series in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupee procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5,548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गई। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार के मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपए फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रुपए

0: फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रुपए फी क्विंटल, जो कि कीमत में 136 रुपए फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रुपए फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत MSP को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्र करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस

0: मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत एमएसपी को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्र करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के निफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसमें टैक्स भी शामिल है।
0: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: दिल्ली में फिलहाल तकरीबन 71 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ITMS का मकसद सड़कों की मौजूदा गुंजाइश का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस निजाम के जरिए ट्रैफिक इंतजामिया को ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक मुतहरिक अंदाज में बरवक्त इकदामात करने में मदद मिलेगी। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
0: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: मरकज ने कीमत इमदादी स्कीम PSS के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत MSP पर 5,547.99 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजारत ज़राअत ने कहा है कि यह फैसला किसानों को मार्केट की कीमतों में कमी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी पैदावार के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वजीर आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। वजीर आज़म ने कहा कि इस फैसले से मुल्क भर के लाखों किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले से मुतालिक काबीना के फैसले का भी खैर मकदम किया। वजीर आज़म मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। UPSC के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद मनाने के लिए गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर से साल भर जारी रहने वाली सदसाला तकरीबात का आगाज किया गया था, जिसके इख्तिताम पर कल इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। UPSC का क्याम साल 1926 में अमल में आया था। वजीर आज़म मोदी इस प्रोग्राम में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। नीज एक किताब का इजरा भी करेंगे, जिसका उन्वान है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया। ये प्रोग्राम 2 रोजा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका इनेकाद UPSC की जानिब से आज और कल किया जा रहा है। वजीर आज़म मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर आज़म मोदी ने आज शाम अमरीकी सर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे आलमी स्ट्रेटेजिक شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर जाए है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन को मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह

0: में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है, और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे बीएलओ हो या आरओ के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गाँव हिसाब से दिखाया गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी। और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है, तो उनके पास बीएलओ जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, यह एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है। तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं करें हम?
1: कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ और मेरे परिवार में चार लोग हैं, चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
1: जी।
2: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे, फिर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में, तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया, उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ, जब बलराज मदोप उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए, जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल, विपक्षी दल खासतौर से, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई, तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है, जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें, जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो है ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
1: जी।
2: तो कहा गया नहीं, ये तो इन्होंने जानबूझ

0: कर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने, यानी कभी भी तुत भी मेरी पट भी मेरी। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है, विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथा कथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्ष दल नहीं आए हैं। यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अच्छा जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले, जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमिटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से, कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया
1: जी।
2: दूसरी बात है, राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने

0: राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से दो तीन बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों, ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है, जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपेंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं और भी शायद लेना आवश्यक है, तो लेंगे और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको, मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है और ऐसे भी लेना चाहिए, ये बात नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका की पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे सेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिए, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए, और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। और मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है, अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और

0: हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं। लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए, अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें? लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है महिलाओं का भागीदारी करने के लिए, रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़े और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है। लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोकने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोले, आज ऐसा यार नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था उसमें भी करना आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्गहन तो इसलिए बोला जाता है क्यों, एक बेस फिर से शुरू होता है। अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये SIR का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं हम और SIR के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं,
2: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जोड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको सबको जोड़ना चाहिए, और शायद आपने जैसे कहा उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप DO के पास जा सकते हैं, CO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है, अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
0: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आकर रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
1: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
0: नहीं, मैं समझता हूँ

0: कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी एसआईआर प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
1: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे एसआईआर और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का
6: आईजी नगोया।
7: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे, उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया। लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
8: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानीपार्थी और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानीपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
7: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ। मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का

0: चौथा स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
1: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का तीसरा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंप आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
0: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले काइनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
2: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
0: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया। पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज जन्नाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए, जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले। और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था, जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य। तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
1: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गयी। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के

0: रोहित भारद्वाज से।
1: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश यमुनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्ति ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
1: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
0: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
1: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय सिनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां

0: क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी चार क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में चार सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा।

0: और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से। संगीत है SD बर्मन का, शब्द रचना मजरूह की।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म का ये गाना। लिखा है मजरूह ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शिव कुमार शर्मा का राग मिश्रा शिवरंजनी में संतूर वादन। रचना मध्य लय और द्रुत लय में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिव कुमार शर्मा का राग मिश्र शिवरंजनी में संतूर वादन। रचना मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तानपुरा पर संगत की थी दुर्गा जसराज ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।

और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विनोवर शर्मा से अनिल यादव की बातचीत, विषय होगा इस पखवाड़े के कृषि कार्य। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता सुनिएगा, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव। 7 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर कमला बोस का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर पंडित जसराज का ख्याल गायन।

कल सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर नीरज शुक्ला से भजन। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा भरतलाल और साथियों से, नीलम शर्मा, रामप्रसाद और साथियों की आवाज में। 11:30 पर किस्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी सुनिएगा, इसरी ताई का दूसरा भाग, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 12:30 पर आपकी पसंद प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बहनें सुनेंगी सरोज सिंह से लोकगीत, नम्रता श्रीवास्तव से की गई बातचीत, मानसिक शांति में सकारात्मक सोच और रसोई घर से जाने

कल दिन में 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 5:15 युववाणी, 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम प्रसाद और साथियों से लोकगीत और उषा कुमारी से दीपक राय की बातचीत, विषय होगा समावेशी फसल बीमा योजना। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 GW गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त